0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने तथा अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में देशभर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। इस सम्मेलन में लोग इंटरनेट के माध्यम से भी शामिल हो सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रूपये की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज आंध्र प्रदेश के एलुरू जिले के मुसुनुरू गांव का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति मुसुनुरू में भारत के पहले गैर आनुवंशिक रूप से संशोधित जीएमओ उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का संकर बीज का विमोचन करेंगे। वे किसानों को सम्मानित भी करेंगे और कृषि क्षेत्र से जुड़े हितधारकों तथा अन्य प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 27 अगस्त तक 4 दिवसीय जापान दौरे पर रहेंगे। वे तोक्यो, नागोया और ओसाका की यात्रा करेंगे तथा जापान में भारत के अब तक के सबसे बड़े व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। प्रतिनिधि मंडल में विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और इस्पात से लेकर ऑटोमोटिव, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा और स्टार्टअप जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 200 से अधिक व्यावसायिक प्रतिनिधि शामिल हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में गडेरी नदी की तेज धारा में 9 लोग फंस गए, जिन्हें पुलिस, एसडीआरएफ और होमगार्ड की संयुक्त टीम ने सुरक्षित बचा लिया। एसडीआरएफ के जवान तेज धारा के बावजूद नदी में उतरे और सभी 9 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बचाव के बाद सभी की स्वास्थ्य जांच की गई और उन्हें सुरक्षित पाए जाने पर उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से 26 अगस्त तक कर्नाटक के मैसूरू में जनजातीय भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। ये सम्मेलन जनजातीय भाषाओं के प्रलेखन, संरक्षण और पुनरुद्धार पर राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देगा। इससे देश भर में जनजातीय संग्रहालयों और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों को मजबूती मिलेगी। ईरान ने कहा है कि होर्मुज जल

0: डमरू मध्य से गुजरने वाले अधिकृत देशों के जहाजों को अब तेहरान को सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि इस शुल्क में समुद्री पर्यावरण और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी कई तरह की सुविधाएं शामिल होंगी। भारतीय महिला टीम FIH हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने से चूक गई है। दूसरे दौर के अंतिम मैच में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार। आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, आज की गई मेहनत ही कल के भविष्य का निर्माण करती है। ये था आज का चिंतन। और आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा। अब से कुछ ही पलों में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 290। उसके बाद 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ताल प्रवाह। सुनिए इस श्रृंखला का 8वां भाग। कलाकार हैं तबला वादक पंडित कालीनाथ मिश्र, प्रस्तुति मनीषा जैन की। इसका पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज शाम 6:45 पर। 7 बजे सुनिए भूले बिसरे गीत हमेरा ही प्यार के 7:30 पर। 8:15 पर त्रिवेणी, आलेख और स्वर है राजेश झा का, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। 8:30 पर सुनिए चित्रलोक कार्यक्रम। 9:30 पर आप सुनेंगे आज के फनकार। कार्यक्रम केंद्रित है संगीतकार कल्याण जी पर, प्रस्तुति रमेश गोखले की। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज रात 9:30 पर। सुबह 10 बजे पिटारा में सुनिए उजाले उनकी यादों के, नाट्य निर्देशक शिक्षावत और राष्ट्रीय नाटक नाट्य विद्यालय यानी NST नई दिल्ली के पूर्व निर्देशक पद्मश्री वामन केंद्री से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। संपादन सहयोग है योगिता जाधव का, प्रस्तुति तेजश्री कामले की। 11 बजे सुनिए रंग तरंग कार्यक्रम। 12:05 से सजेगी यादों की महफिल। 1 बजे से तय करेंगे सुरीला सफर। 2:30 पर सुनिए सदा बहार नगमे। 3 बजे सखी सहेली। 4 बजे पिटारा में सुनिए सेहत नामा, बालों की समस्या और देखभाल। इस विषय पर डॉक्टर रचिता धुरत MD डर्मेटोलॉजिस्ट से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग, प्रस्तुति है तेजश्री कामले की। 5:30 पर आप सुनेंगे तराने नए पुराने।

6:35 पर सुनिए संध्या रंजन, 6:45 पर संगीत सरिता, 7 सुनेंगे जयमाला कार्यक्रम, 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए एक ही फिल्म से, आज की फिल्म है आई मिलन की रात, हवा महल में सुनिए नाटिका महाकवि तुक्कड़ की सगाई, लेखन है शारदा प्रसाद मुर्शिंदे की, निर्देशन है जयदेव शर्मा कमल का, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे आज रात 8:00। आठ बजकर 15 मिनट पर सुनिए रात्रि चित्रलोक, 9 सुनिए आपके लिए कार्यक्रम, 10 छाया गीत, आलेख और स्वर है सलमा सैयद का, प्रस्तुति राघवेंद्र नेगी की, 10:30 पर आप सुनेंगे ढलती जाए रात। ये था आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा।

लंका दहन करके पवनसुत हनुमान सीता जी का समाचार लेकर समुद्र के इस पार आ चुके हैं। प्रभु से निवेदन करते हैं, हे करुणानिधि, अशोक वाटिका में सीता माता का एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है, अतः शीघ्र ही चलकर दुष्टों का नाश करके उन्हें ले आइए। जनक नंदिनी के क्लेश का वर्णन सुनकर श्री राम की आंखों में अश्रु उमड़ आए। बोले, मन वचन और तन से जिसे केवल मेरा ही आसरा है, उस पर कोई विपत्ति नहीं आ सकती। हे पुत्र, तुम्हारे समान मेरा उपकार करने वाला कोई भी देव, मनुष्य अथवा अन्य तनधारी नहीं है। मैं तुमसे कभी उऋण नहीं हो सकता। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हनुमान उनके चरणों में आ गिरते हैं।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 290।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ताल प्रवाह। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध तबला वादक कालीनाथ मिश्र। आपसे बातचीत की है रामकृष्ण दास ने। आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की आठवीं कड़ी।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार दास बाबू।
1: मिश्रा जी, आज फिर हम उपस्थित हुए हैं इस ताल प्रवाह में। ताल प्रवाह में चौताल, तीन ताल, आड़ा चौताल, एक ताल, बहुत ताल
2: है। बहुत ताल है, अनगिनत ताल है।
1: तो आप हमें बताएं, आज हमारे श्रोताओं को कौन सा ताल आप सुनाएंगे?
2: आज मेरी इच्छा हुई कि मैं एक ताल बारह मात्रे का होता है, हम उसकी चर्चा करें।
1: और बहुत अच्छी बात है
2: जी दास बाबू। एक ताल एक ऐसा ताल है जो बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, तराना, इसके साथ बड़ा उपयोग किया जाता है
1: जी।
2: एक ताल, तीन ताल भी बजाते हैं, बट ये जो ताल है एक ताल, तराना के साथ, विलंबित ख्याल के साथ।
1: तो मैंने तो एक बार पंडित रविशंकर जी को एक ताल में झाला भी बजाते हुए।
2: हाँ जी, हाँ जी, करते हैं। हम सोलो भी बजाते हैं एक ताल में, उसके लिए हमें कम से कम अच्छा टाइम चाहिए। तो श्रोताओं को आज हम एक ताल के बारे में बात करते हैं। और एक ताल जब हम संगत करते हैं गायक के साथ, तो इसमें बहुत ठहराव होना चाहिए। पहले तो मैं बता दूं आपको कि तबला वादक एक ऐसा साधक होना चाहिए कि उसको चारों पट का तबला आना चाहिए। गाने के साथ बैठा दीजिए तो गाने के साथ संगत होना चाहिए, किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ बैठाई तो इंस्ट्रूमेंट का तबला बोलना चाहिए, नाच के साथ बजाए तो नाच वाला तबला होना चाहिए, और अगर वो सोलो बजा रहा है तबला वादक तो फिर सोलो वाला तबला होना चाहिए। तो चारों पट का तबला आना चाहिए। तो आज हम एक ताल की चर्चा करते हैं जो बारह मात्रे का होता है, उसमें छह विभाग होते हैं।
1: इसी सिलसिले में एक बात मैं ये पूछना चाहूंगा, कुछ कुछ ऐसी बंदिशें भी मिलती हैं जिसमें एक ताल तीन के छंद में जाता है
2: जी,
1: उसके बारे में थोड़ा बताइए
2: जी। उसका जो अंदाज है ना, अगर इंस्ट्रूमेंट में बज रहा है कि धिन धिन धागे

0: डा रा डा डा, तो वो तीन तीन का छंद आता है, वो है वही एक ताल बजाएगा लेकिन छंद जरा चाल उसकी दादरा की चलन हो जाती है
1: जी हाँ,
0: क्योंकि दादरा और बारह मात्रा आपस में संपर्क
1: का दुना।
0: हाँ, तो हम एक ताल में बारह मात्रा होता है उसमें छह विभाग होते हैं, चार ताली और दो खाली। दूसरी बात, बारह मात्रा का एक ताल और है जिसका नाम है चार ताल, जिसे हम चौताला कहते हैं
1: जी।
0: धा धा दिन ता कीट धा दिन ता तेटे का ता गजी गन धा धा,
1: पखावज में बस
0: पखावज कांग है ये
1: जी,
0: ये पखावज
1: के साथ।
0: हाँ जी हाँ जी, ये पखावज कांग है। और धन्यवाद देता हूँ मैं अपने गुरु जनों का जिन्होंने तबले को पखावज के अंदाज से भी बजाया है। तो प्रस्तुत करता हूँ एक ताल चढ़ी हुई गति।
1: वाह।

0: श्रोताओं को भी कहना चाहूंगा और तार प्रवाह और आप, ये बनारस का जो एक अंदाज है ना दास बाबू
1: जी,
0: उसमें कवित परन, बोल परन, गज परन, कविताओं की जो रचना जो हम पढ़ते हैं कविता, वो तबले से बजा के दिखाते हैं जैसे एक नर्तक भाव से दिखाता है
1: जी।
0: उसी हिसाब से ये हमें पूरा छूट है। तो एक पठन करता हूँ, नी रहता है नंद नंद नंद छोम छ न न न त छोम त छोम तत्तिग्धा दिग दिग थई लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गत त्रिभंग था खेलत भुज मिलत लपक झपक राधा ललिता चंद्रावली दियो बोर रंग बोर बो सर बोर बोर बनवारी हारी धाति धा धाति दिन। अब ये जो शब्द मैंने पढ़ा है तबला

0: बा जत डमरु शिव शक ये पठंत भी है। बा जत डमरु शिव शंकर की शोभित अंग में भभूति गले सर्प मुंडमान तीन नृत्य जटागंग है। चक्रधार अब ये शिव तांडव का एक अंदाज है
1: जी,
0: तो मैं इसको दो अंग से कोशिश करूंगा कि इसे अगर पार्वती करेंगे तो कैसे करेंगे और शिव करेंगे तो कैसे
1: क्या बात
0: करेंगे?
1: है
0: तो पार्वती ये बड़ा बेस ये तबला हो जाएगा
1: जी।
0: और बेस सुनिए श्रोता,

0: हमेशा गुरुजी बोलते थे हमारे
1: जी
0: थाप। तो एक मैंने एक अपना अपना एक अंदाज है, कत का बोल कैसे निकलेगा
1: जी।
0: मेरे गुरुजी मदन मिश्रा और हमारे शंभुनाथ मिश्रा जी ने बताया कि

बड़ा सुंदर अंदाज है, कैसे बोल निकलेगा?

0: हो गया
1: जी।
0: इसको पखावज के अंदाज से कैसे लेंगे
1: जी?
0: क्योंकि कुछ कलाकार भारत में ऐसे हुए हैं जिनके साथ हमने बहुत अच्छा काम किया है। पंडित अर्जुन सेजवाल
1: जी
0: पखावज, पंडित रामदास जी पखावज, पंडित भवानी शंकर
1: जी,
0: तो ऐसे लोगों के साथ मुझे

0: एक ताल बजाते बजाते मुझे बड़ा सुंदर गाना याद आ गया।
1: क्या बात?
0: आपको खुद पता है, वाह वाह फारूक भाई, कि फिल्मी जो गाने पहले बजाए जाते थे, अभी तो काफी चेंज हो गया, वरना हमेशा क्लासिकल बेस को लेके गाना बजाना ये सब होता था। तो मुझे एक गाना याद आया, लता दीदी गाई है उसमें, खास एक ताल उसमें बजा है
1: जी,
0: आपको याद है, शंकर जय किशन जी का म्यूजिक है उसमें, मन मोहना बड़े झूठे।
1: क्या कहने?

ताल प्रवाह। इस श्रृंखला की ये थी आठवीं कड़ी। जाने माने तबला वादक कालीनाथ मिश्र से बातचीत की रामकृष्ण दास ने। इस श्रृंखला में कालीनाथ मिश्रा जी को सारंगी पर लहरा दे रहे हैं उस्ताद फारूख लतीफ खान और हारमोनियम पर हैं विनोद पड़गे जी। तकनीकी सहयोग वंदना ठाकुर और निखिल धामापुरकर। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा।

0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।
1: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

नमस्कार। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम का पहला गाना सुनते हैं सम्राट चंद्रगुप्त। इस फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में भरत व्यास के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुम्हें बताए।
3: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
4: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
3: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
5: कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं छलिया फिल्म से, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में कमर जलालाबादी के बोल, और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

0: लोग इससे जुड़े हुए हैं, ये कल्चरल प्रोग्राम है, इसमें कई ऐसे टाइप के प्रोग्राम होते हैं, हर समाज का लोग इसमें जुड़ते हैं और इसमें टूरिज्म को बहुत ही प्रोत्साहन मिल रहा है।
1: राज्यभर में आज थी 27 ऑगस्ट सुधी एमबीबीएस बीडीएस 8755 जेटली बैठकों पर प्रवेश माटे आज चोइस फिलिंग की प्रक्रिया हाथ धराशे। जे विद्यार्थीओ नोंधणी करावी छे ते चोइस फिलिंग करी शकशे। 27 ऑगस्टे चोइस फिलिंग की प्रक्रिया पूर्ण थया बाद तेज दिवसे सांजे विद्यार्थीओ ने कॉलेज की फाळवणी करी देवाशे। आ तमाम प्रक्रिया बाद प्रवेश फाळवणी प्रक्रिया ऑल इंडिया की प्रक्रिया पूर्ण थया बाद करवामां आवशे। बास्केटबॉल में अमदावाद खाते आयोजित फीबा अंडर 18 एशिया कप 2026 फाइनल में ऑस्ट्रेलियाए चीन ने 89-79 हरा जीत मेळवी। हाफ टाइम में 44-42 आग रही अंतिम तबक्का में चीन ने पराजय आपने ऑस्ट्रेलियाए चैम्पियन खिताब जाळवी राख्यो। फीबा अंडर 18 एशिया कप 2026 परिणाम ऑस्ट्रेलिया चीन न्यूजीलैंड कोरियाए 2027 में योजना फीबा अंडर 19 विश्वकप क्वालिफाई कर्यु। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल अमेरिका प्रवास बाद हवे केनाडा में राउंड टेबल बैठकों दौर। अमदावाद एयरपोर्ट पर भावनगर की महिला तबीब 83 लाख सोना साथ झड़पाई। सरहदी जिला अरवली में पुलिस सघन चेकिंग हाथ धरायु। एमबीबीएस और बीडीएस अभ्यासक्रम में प्रवेश आज चोइस फिलिंग प्रक्रिया शुरू होने अमदावाद खाते संपन्न थे फीबा अंडर 18 एशिया कप बास्केटबॉल में चीन ने पराजय आप ऑस्ट्रेलिया चैम्पियन बनु। आकाशवाणी अमदावाद वडोदरा केन्द्र पर प्रादेशिक समाचार पूरा थया। हवे पछी आप 7:45 राष्ट्रीय समाचार सांभळी शकशो। नमस्कार।
2: आप हैं विविध भारती के साथ, आइए सुने भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का शेष भाग।
3: तिरछी नजर का भी अवार है, नाजुक सी अकेला गपार है।

0: पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
4: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती।
3: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
4: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
3: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
5: जी।
3: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
4: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
3: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
4: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: हेमंत कुमार और साथियों की आवाज में आप सुन रहे थे चंद्रसेना इस फिल्म से ये गाना, बोल पंडित मधुर के, संगीत कल्याण जी वीर जी शाह का। आइए सुनते हैं एक जरूरी सूचना।
1: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ, आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
2: वंदे
1: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
2: शस्य श्यामलां मातरं वंदे मातरं।
1: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष, प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
0: आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न होता है।
3: हल्दी के गुणों से भरा वीको टर्मरिक WSO क्रीम, जो आपके चेहरे के कील और मुहासे दूर करे और आपको दे प्राकृतिक सुंदरता,
4: अब सिर्फ 10 रुपए के स्पेशल पैक में भी।
5: वीको टर्मरिक WSO क्रीम।
6: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट। मशहूरों में जान तो दांतों की शान, यही है वीको की पहचान।
7: आप सुन रहे हैं विविध भारती, कुछ ही पलों में सुनेंगे हम है राही प्यार के।

अरे अरे अरे अरे कितने चली जुदाई है जहर जहर पिया नहीं जाए जुदाई है जहर जहर पिया

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आप सुन रहे थे कसौटी फिल्म से गाना कल्याण जी आनंद जी का संगीत।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर। एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
4: मिलो जो तुझे बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
5: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार रिद्धि ऊंधाड़ वांचे छे। सौप्रथम मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीए अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत ने वैश्विक प्रतिभानु केन्द्र बनावा हांकल करी। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नवमी राष्ट्रीय सुरक्षा व्यूहरचना परिषद योजाशे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज मॉस्को में भारत रशिया आंतर सरकारी आयोग की बैठक में भाग लेशे। होर्मुज समुद्र धुनी में पसार थता जहाजों पास थी ईरान हवे सेवा फी वसूल छे। चेस में भारत प्रणेश एम ए कानिजसा ओपन नो खिताब जीतियो। समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अंतरिक्ष क्षेत्र स्टार्टअप्स मुख्य कार्यकारी अधिकारी साथेनी मुलाकात दरमियान भारतीय स्टार्टअप्स की क्षमता और सरकार में तेमना विश्वास की प्रशंसा करी हती। तेमने स्टार्टअप्स ने सतत प्रयत्न करता रहेवा और मजबूत अंतरिक्ष क्षेत्र इकोसिस्टम विकसावा आह्वान कर्युं। श्री मोदीए कह्यु कि भारत में एवं सक्षम और अनुकूल वातावरण उभू करवू जोईए कि ज्यां विश्वभरनी प्रतिभा भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में कारकिर्दी और भविष्य घड़वा माटेना प्रथम पसंदगी स्थल तरीके जुए।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: नवी दिल्ली में योजेली आ बैठक में आंतरिक क्षेत्र 20 स्टार्टअप्स सीईओ और स्थापक भाग लीधो हतो। पीएम मोदी स्टार्टअप्स ने वैश्विक स्तरे विस्तरण करवा तेमज अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी उपयोग ने लोकोना जीवन ने वधु सरल अने बेहतर बनावना क्षेत्रों में विस्तारवा पण प्रोत्साहित कर्या। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज आंध्रप्रदेश एलूर जिल्ला मुसुनुरु गामनी मुलाकात दरमियान भारतना प्रथम बिन आनुवंशिक रीते संशोधित उच्च उपज संभवित पॉपकॉर्न मकाई हाइब्रिड बीजन लॉन्चिंग करशे। खेडूतोनुं सन्मान करशे अने कृषि क्षेत्रना हिस्सेदारों अने अन्य सहभागीओने संबोधित करशे। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज नवी दिल्ली में नवमी राष्ट्रीय सुरक्षा व्यूहरचना परिषद में हाजरी आपशे। बे दिवसीय परिषद भौतिक और वर्च्युअली बने रीते योजाशे। देशभरना विविध सुरक्षा और पोलिस दलों 850 वधु अधिकारी परिषद दरमियान राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित विविध समकालीन मुद्दाओं पड़कारों पर चर्चा करशे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज मॉस्को में भारत रशिया आंतर सरकारी आयोग की 27वीं बैठक में सहअध्यक्ष तरीके भाग लेशे। तेओ रशियाना प्रथम नायब प्रधानमंत्री डेनिस मेंड्यूरोव साथे बैठक की अध्यक्षता करशे। आ बैठक बन्ने देशों वच्चेना वेपार आर्थिक विज्ञान टेक्नोलॉजी और सांस्कृतिक सहयोग अंगे चर्चा करवामां आवशे। श्री जयशंकर रशियाना विदेशमंत्री सर्गे लावरोव साथे पण मुलाकात करशे। बन्ने नेताओ प्रादेशिक और वैश्विक मुद्दाओं अंगे चर्चा करशे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज जापान की 4 दिवस की मुलाकाते जशे। टोक्यो नागोया और ओसाका की मुलाकात लेशे। तेमनी साथे भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल पण जापान जई रह्यु छे। आ प्रतिनिधिमंडल में 200 थी वधु व्यापारी प्रतिनिधि

0: ઇશ્ક વિશ્ક ફિલ્મનું આ ગીત હતું અલકા યાજ્ઞિકના સ્વરમાં, સંગીત અનુ મલિકનું, ગીતકાર સમીર. આ ગીતનું પ્રસારણ વિવિધ ભારતી વડોદરા પરથી કરવામાં આવ્યું. મિત્રો, થોડી જ વારમાં સાંભળશો હિન્દીમાં સમાચાર.
1: નમસ્કાર, આકાશવાણી સે સમાચાર પ્રભાત કે સાથ મેં વિશાલ શર્મા. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया. गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे. विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सहअध्यक्षता करेंगे. ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर सेवा शुल्क लगाने का निर्णय लिया. मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया. और शतरंज में भारत के ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने हंगरी में कनिजा ओपन खिताब जीता. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया है. श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने तथा अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की.
2: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है. बहुत लोगों को हमें जोड़ना है. हमें ऐसा एक औरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ. मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें. प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की. गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे. 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा. देशभर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सहअध्यक्षता करेंगे. श्री जयशंकर अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 27 अगस्त तक जापान दौरे पर रहेंगे. वे टोक्यो, नागोया और ओसाका की यात्रा करेंगे और जापान में भारत के अब तक के सबसे बड़े व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे. इस प्रतिनिधिमंडल में 200

0: से अधिक व्यावसायिक प्रतिनिधि शामिल हैं। ये प्रतिनिधि विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और इस्पात से लेकर ऑटोमोटिव, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा और स्टार्टअप जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 18वें ब्रिक्स अकादमी मंच का शुभारंभ कल लखनऊ में हुआ और मंगलवार तक ये विचार विमर्श जारी रहेगा। लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आकर प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज और लखनऊ विश्वविद्यालय के सहयोग से इस फोरम का आयोजन हो रहा है। नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आएंगे और प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। साथ ही सहयोग को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक और नीति संबंधी रास्ते तलाशेंगे। इस फोरम को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में सचिव और ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलेला भी संबोधित करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से बुधवार तक कर्नाटक के मैसूरु में आदिवासी भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। ये सम्मेलन आदिवासी भाषाओं के प्रलेखन, संरक्षण और पुनरुद्धार पर राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ईरान ने कहा है कि अधिकृत देशों के जहाजों को हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए अब सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि ये शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और रसद संबंधी कई सेवाओं को कवर करेगा। इससे पहले प्रवक्ता मोहसिन रेजाई ने कहा था कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। दूसरी ओर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को नए अमरीकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमरीकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य मौजूदा टकराव का केंद्र बिंदु बना हुआ है। ईरान का कहना है कि यह महत्वपूर्ण मार्ग बंद है और अनधिकृत टैंकर यातायात के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भारत के युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर सृजित करना विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की संयुक्त सचिव मानसी सहाय ठाकुर और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मुख्य परिचालन अधिकारी प्रशांत सिन्हा शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली ने कल अपने 11वें संडे बर्ड वॉक के साथ ट्री वॉक एट NZP का दूसरा संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित किया। ये कार्यक्रम चिड़ियाघर की चल रही नागरिक विज्ञान पहल का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य जैव विविधता के प्रलेखन, निगरानी और संरक्षण जागरूकता में जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। प्रकृति प्रेमियों, छात्रों, वन्यजीव फोटोग्राफरों, जैव विविधता शोधकर्ताओं, इंटर्न और स्वयंसेवकों के साथ प्रकृति और संरक्षण में रुचि रखने वाले नागरिकों ने कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया। नीलसन IQ और वर्ल्ड डेटा लैब ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में भारत में 2036 तक 10 करोड़ 80 लाख धनी उपभोक्ता होने का अनुमान व्यक्त किया है। चीन में ये संख्या 10 करोड़ 30 लाख है। रिपोर्ट में प्रतिदिन $90 से अधिक खर्च करने वाले लोगों को धनी उपभोक्ताओं के रूप में परिभाषित किया गया है। 2026 में भारत में लगभग 2 करोड़ 60 लाख धनी उपभोक्ता होने का अनुमान है। अगले दशक में इनकी संख्या में 8 करोड़ 20 लाख की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में बढ़ती आबादी और मध्यम वर्ग के आधार पर भारत को मात्रा वृद्धि वाला बाजार बताया गया है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना जताई है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है।

0: मध्य प्रदेश में लगातार बारिश से कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। प्रशासन ने बारिश और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में डिंडोरी और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं विदिशा, सागर, रायसेन समेत 20 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा भोपाल समेत प्रदेश के कई जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हो सकती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल शाम दिल्ली से रीवा पहुंचकर अतिवृष्टि और राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने और राहत शिविरों में जरूरी इंतजाम के निर्देश दिए। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सच्ची खुशी करुणा, आत्मसम्मान और संतोष से मिलती है। उन्होंने सोशल मीडिया पर संस्कृत का सुभाषितम साझा करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि ये भावना समाज में सहयोग और सद्भाव के बंधन को मजबूत करती है। उन्होंने कहा कि करुणा आत्मसम्मान को बढ़ावा देती है, जबकि संतोष इच्छाओं की पूर्ति की ओर ले जाता है। महाराष्ट्र में आज सुबह अमरावती जिला महिला अस्पताल की विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई में आग लगने की घटना में 3 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इकाई में समय से पहले जन्मे और गंभीर रूप से बीमार शिशुओं सहित लगभग 50 से 60 शिशुओं का इलाज चल रहा था। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में लिपुलेख दर्रे के रास्ते से पूरी होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 कल सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। 4 जुलाई को शुरू हुई इस यात्रा में 10 जत्थों में कुल 477 तीर्थयात्रियों ने कैलाश पर्वत और मानसरोवर के दर्शन किए। और अब खेल खबरों के साथ है वीरेंद्र कौशिक।
2: भारत आज कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी में 5 विकेट पर 300 रन के स्कोर से आगे खेलेगा। इस पारी में देवदत्त पड्डीकल का लगातार दूसरा टेस्ट शतक और कप्तान शुभमन गिल का अर्धशतक शामिल है। श्रीलंका के असिथा फर्नांडो ने 3 विकेट लिए। भारत 2 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। बात शतरंज की। भारत के 19 वर्षीय ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने प्रतिष्ठित कनिजा ओपन 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्रुप ए का खिताब अपने नाम किया। हंगरी के नागी कनिजा में आयोजित टूर्नामेंट 9वें और अंतिम दौर में प्रणेश ने सफेद मोहरों से खेलते हुए जर्मनी के वादिम पेट्रोवस्की को हराया। तमिलनाडु के कराई कुडी के इस खिलाड़ी ने इजराइल के और ब्रॉनस्टीन, यूक्रेन के आंद्रेई वोलोकितिन और भारत के कार्तिक वेंकटरमन के साथ बेहतर टाई ब्रेक के आधार पर खिताब जीता। हंगरी में भारतीय दूतावास ने प्रणेश को खिताब जीतने पर बधाई दी। हॉकी की बात करें तो भारतीय महिला टीम FIH हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने से चूक गई है। दूसरे दौर के अंतिम दौर में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। ऑस्ट्रेलिया ने अधिक गोल के आधार पर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और भारत पूल ई में तीसरे स्थान पर रहा। अब भारतीय टीम गुरुवार को वैगनर हॉकी स्टेडियम में 5वें स्थान के लिए प्लेऑफ खेलेगी।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भारतीय दिव्यांग पुरुष क्रिकेट टीम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि टीम भारत इंग्लैंड पुरुष मिश्रित दिव्यांगता T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज 2026 के लिए इंग्लैंड दौरे से लौट आई है। श्री शाह ने कहा कि देश के लिए गौरव हासिल करने के लिए टीम के प्रयास और दृढ़ संकल्प भारत के युवाओं को प्रेरित करते हैं। पवित्र श्रावण मास की अंतिम सोमवारी के पावन अवसर पर आज पूरा झारखंड शिव भक्ति के अनूठे रंग में डूबा हुआ है। एक रिपोर्ट।
3: हर हर महादेव।
4: देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर पहुंचे लाखों कांवड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। तड़के मंदिर के कपाट खुलते ही पारंपरिक सरकारी पूजा के बाद आम श्रद्धालुओं के लिए जलार्पण शुरू हुआ। अंतिम सोमवारी के विशेष महत्व को देखते हुए देवघर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए ड्रोन निगरानी, AI आधारित कैमरे और डिजिटल हेल्पलाइन जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं की हैं। इधर राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में भी मध्य रात्रि से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
3: हर हर महादेव।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
5: धन्यवाद विशाल। अंतरिक्ष क्षेत्र के 20 स्टार्टअप के संस्थापकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद आज के अधिकतर अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। स्टार्टअप्स प्रमुखों से प्रधानमंत्री की अपील जनसत्ता में है, अंतरिक्ष क्षेत्र में ऐसा माहौल बनाए कि दुनिया निवेश के लिए प्रेरित हो। वहीं अमर उजाला ने इसरो प्रमुख के हवाले से लिखा है, 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा, पृथ्वी की निचली कक्षा में चरणबद्ध तरीके से होगा स्थापित, रक्षा में अब किसी पर निर्भर नहीं रहेगा भारत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बयान पंजाब केसरी में है। पश्चिम बंगाल में 5 रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास

0: अवसर पर कहा, भारत में वैश्विक पोत निर्माण का केंद्र बनने की क्षमता। अगले महीने नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पर लोकसत्य का कहना है, पड़ोसियों पर भारत की नजर, आउटरीच सत्र के लिए नेपाल और बांग्लादेश को मिला न्योता। दोनों पड़ोसियों के साथ नई शुरुआत का बन सकता है अवसर। स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों के बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR का राहत भरा बयान दैनिक भास्कर में है, देश में H1N1 का कोई नया स्ट्रेन नहीं मिला। मोबाइल सिम पर आज से नए नियम, एक नाम पर 9 से ज्यादा कनेक्शन नहीं होंगे। नवभारत टाइम्स लिखता है, यूजर की पहचान का सत्यापन अब होगा जरूरी, सरकार ने पहचान का नया बायोमेट्रिक लॉक लगाया।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर सेवा शुल्क लगाने का निर्णय लिया। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और शतरंज में भारत के ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने हंगरी में कनिजा ओपन खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार दोस्तों, भारतीय नारी के 16 श्रृंगारों में पायल यानी पाजेब का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। कविगण नायिका के नक्श सौंदर्य वर्णन में पायल का वर्णन आलंकारिक और कोमल कांत शब्दावली में करते हैं। पायल की झनकार न सिर्फ वातावरण को अनुरागमय कर देती है, बल्कि मधुरता और स्नेह से भर देती है।
1: हमसे

संस्कृति में पायल की रुंझुन ध्वनि में नारी के सौंदर्य के साथ उसकी सरलता, लज्जा और गरिमा का भी समन्वय दिखाई देता है। पायल की मधुर झंकार प्रेम, सौंदर्य और संवेदनाओं को मर्यादित रूप में अभिव्यक्त करती है। नायिका के चरणों की गति की तीव्रता से आंदोलित होती पायल प्रिय मिलन की आशा तो जगाती है, किंतु लोकलाज से विचलित भी करती है। ऐसी भावना तो ब्रजवासिनी राधा के मन में भी उठती होगी।

0: पायल की छम छम वातावरण में ऐसी मधुरता भर देती है मानो प्रकृति भी स्वयं उस सौंदर्य का स्वागत कर रही हो। बिना कुछ बोले पायल की झंकार ही प्रियतम को अपने आगमन की पूर्व सूचना दे देता है। पायल की रुनझुन हृदय से हृदय के बीच का पत्राचार ही तो है।
1: छम छम।

पायल नारी सौंदर्य की अभिव्यक्ति में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। पायल सौंदर्य और प्रेम को कलात्मक एवं सौम्य रूप में व्यक्त करता है। तभी तो कवियों ने इसकी रुंझुन की तुलना वीणा के मधुर तानों से की है और इसे हृदय की मौन भाषा की भी संज्ञा दी है। आज त्रिवेणी का सफर आपने पूरा किया अपने दोस्त राजेश के साथ। नमस्कार।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।

सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम।

0: भारतीय देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में पेश करेंगे कार्यक्रम चित्रलोक।
1: श्रोता मित्रों, 93.9 मेगाहर्ट्ज पर आपी ट्यून कर्यु छे विविध भारतीनू वडोदरा केन्द्र। सवारे 8:30 लोकप्रिय हिंदी फिल्मी गीतोनो कार्यक्रम चित्रलोक, जेना प्रायोजक छे
2: अशोका द ग्रेट एक्सक्लूसिव एथनिक एंड दुल्हा कलेक्शन, वडोदरा नो आधुनिक शोरूम, नवरंग सिनेमा रोड, रावपुरा, वडोदरा।
1: एम के फर्निचर, पाचमाड नो भव्य शोरूम, प्रतापनगर ब्रिज नीचे, वडोदरा।
3: पूजा प्लस,
4: पूजा मॉनसून सेल मा फायदा नो वरसाद,
5: मेन्स गार्मेंट पर 50% सुधी डिस्काउंट।
4: पूजा प्लस, रावपुरा, वडोदरा।
3: सवारे 10 फोन इन तथा अन्य लोकप्रिय कार्यक्रमों, जेना प्रायोजक छे
2: आर्क ब्लाइंड, शिवाकृति बिल्डिंग, दांडिया बाजार, वडोदरा।
3: सेहत आपकी, सुरक्षा हमारी, अब नहीं रहेगी मच्छरों से परेशानी।
2: ये है आर के ब्लाइंड्स की जिम्मेदारी।

जिंदगी के हर एक पल को साहस के साथ, एक फ्री स्पिरिट के साथ सेलिब्रेट करना सिखाता है ये गाना। हाईवे फिल्म से आप सुन रहे थे। इस गाने को गाया है नूरन सिस्टर्स, यानी सुल्ताना नूरन और ज्योति नूरन ने। इस गाने को लिखा इरशाद कामिल ने और इसका संगीत तैयार किया।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की।
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
0: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
2: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
0: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता।
0: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
0: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
2: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के।
0: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
2: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास मैं।
0: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर, हर शनिवार शाम 4 बजे।

0: आप जो विविध भारती वडोदरा नि साथ है 93.9 मेगाहर्ट्ज पर सारा गणदेवी कर ज्वेलर्स टाइम अत्यारे सवारना 9 वाग्या छे। शुकननुं सोनू तो सारा गणदेवी करनुं ज, सारानुं सोनू सुख शांति अने समृद्धिनुं सोनू सारा गणदेवी कर ज्वेलर्स दांडिया बजार अने वाकोडिया रोड वडोदरा।
1: हर रोज सुबह 7 बजे सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, जिसके प्रायोजक है वीको वज्रदंती। मजेदार नहीं, असरदार, भारत का गम एक्सपर्ट।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आई हेट लव स्टोरीज, आइए सुनते हैं इस फिल्म से ये गाना विशाल ददलानी की आवाज में, अन्विता दत्त के बोल और म्यूजिक है विशाल शेखर का।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
4: मिलो जो तुझे बताए।
3: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
5: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
3: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

सलीम मर्चेंट और बनी दयाल की आवाज में आप सुन रहे थे बैंड बाजा बारात फिल्म से ये गाना, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और म्यूजिक सलीम सुलेमान का। अगला गाना कर सकता है आपको थिरकने पे मजबूर, सुनते हैं ट्यूबलाइट फिल्म से ये गाना। कमाल खान, देव नेगी, नक्श अजीज और तुषार जोशी की आवाजों में अमिताभ भट्टाचार्य के बोल।

0: अलीशा फिल्म से आप सुन रहे थे अनुष्का मनचंदा, न्यूमन पिंटो की आवाज में गाना जावेद अख्तर के बोल, अमित त्रिवेदी का संगीत।
1: रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

शंकर महादेवन और लॉय मेंडोसा की आवाज में लक बाय चांस इस फिल्म से एक गाना, जावेद अख्तर के बोल, शंकर एहसान लॉय का म्यूजिक।

पेश प्रोग्राम आज के फनकार। दोस्तों आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के आनंद जी पर।

0: शिखर।
1: दोस्तों, आनंद जी का जन्म 1932 में आज ही के दिन यानी 2 मार्च को हुआ है, कच्छ भूज के गांव कुंडरोडी में। वैसे दोस्तों, संगीतकार कल्याण जी और आनंद जी एक रूप हैं, तो केवल आनंद जी की बात नहीं होगी, साथ ही साथ कल्याण जी की भी बात होगी। कल्याण जी, आनंद जी फिल्म संगीत की दुनिया का एक ऐसा नाम है जिसे हम कह सकते हैं दो जिस्म एक जान। जी हाँ दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि कल्याण जी और आनंद जी दो भाइयों के नाम हैं, पर वो यूं याद किए जाते हैं।

0: पहुंचे।
1: वैसे वो दौर जुड़ीदार संगीतकारों का नहीं था, केवल शंकर जयकिशन ही एक नामी गिरामी जोड़ी उस दौर में थी। बाकी सारे संगीतकार जो थे, जो टॉप के संगीतकार थे, वो सब अकेले ही अपने संगीत का काम किया करते थे। हाँ, ये बात और है कि उनके साथ होते थे असिस्टेंट्स, अरेंजर्स वगैरह, पर कल्याण जी आनंद जी वो पहली जोड़ी थी जिसने ऐसे जोड़ीदार संगीतकारों के लिए राहें रोशन की।

दोस्तों, संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के पहले जो जोड़ी लोकप्रिय थी वो थी शंकर जयकिशन की। इनके अलावा इनके भी पहले जो संगीतकार जोड़ी थी वो पंडित हुसन लाल और पंडित भगत राम की। तो जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं, पहले कल्याण जी वीर जी शाह इस नाम से कल्याण जी भाई संगीत दिया करते थे। कल्याण जी का जन्म कच्छ भूज के गांव कुंडोड़ी में 30 जून 1928 को हुआ। कल्याण जी आनंद जी का संगीत सफर शुरू हुआ है मुंबई के गिरगांव से, जहां उनके पिता वीरजी भाई शाह कच्छ भूज के गांव कुंडोड़ी से आकर मुंबई के गिरगांव इलाके में किराना माल की दुकान चलाया करते थे। उनके एक ग्राहक ऐसे थे जो संगीत के मर्मज्ञ थे। उन्हीं से कल्याण जी भाई ने प्रथम संगीत की दीक्षा ग्रहण की। वही बात आनंद जी के साथ भी हुई। दोनों ही भाई एक ही गुरु से संगीत की शिक्षा पाते रहे। दोस्तों, मुंबई वैसे ही कला नगरी है और गिरगांव में संगीत की जानकारी रखने वाले कई माहिर उस दौर में रहा करते थे। इस जगह से थोड़ी ही दूरी पर संगीत का एक जाना माना घराना भी था, भेंडी बाजार घराना। कई संगीतकार यहाँ रहा करते थे। स्नेहल भाटकर, दत्ताराम वाडकर, ये नाम उल्लेखनीय हैं। तो कल्याण जी ने संगीत में करियर करने की ठान ली। शुरुआत के

दौर में बतौर सपोर्टिंग संगीतकार वो काम करते रहे। अपने जमाने के सुप्रसिद्ध संगीतकार हेमंत कुमार के लिए फिल्म नागिन में उन्होंने क्ले वायलिन पर जो धुन बजाई, जिससे उनका नाम सबकी जुबान पर आ गया।

0: कल्याण जी भाई ने इसी दौरान कल्याण जी, वीर जी और पार्टी नामक एक सांगीतिक ग्रुप भी बनाया था, जो संगीत का जीवंत शो यानी लाइव ऑर्केस्ट्रा किया करता था। ये इस प्रकार का पहला लाइव म्यूजिकल शो हुआ करता था। आनंद जी भाई जब विविध भारती के स्टूडियो पधारे थे तो उन्होंने जो बातें कही थी, सुनते हैं उन्हीं से उनके अपने विचार।
1: हर सिचुएशन जो है गाने की, उसके पीछे कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन कोई तो होगा। तो गिरगांव में हम रहते थे तो दत्तवन गुजराती लोग बनिए जो हैं वो दत्तवन करते हैं, तो दत्तवन लेने के लिए पिताजी ने मुझे भेजा। ये होता था कि दत्तवन जो अच्छे ले आता तो वो समझदार लड़का है, तो ये एक एग्जांपल होता था। तो दत्तवन लेने को भेजा मुझे, तो वहां पे दत्तवन काटने वाली लड़की जो है दत्तवन काट रही थी और उसके बीच में जो जहाँ पे ये होते हैं ना गठान, उनको काट के फेंक देती है। तो बैठे बैठे वो सामने वाले लड़के को मार रही थी, तो उसने भी फिर चिल्ला के बोला, ए क्या कर रही है तू, ये कर रही है। तो उसने बोला कि तेरे को मैं थोड़ी मना किया, तू भी मारना। तो एक मुखड़ा आ गया कि भाई देखो ये एंगल रोमांस का ये भी है, तो उसका भी उस भाषा में तो लिख नहीं सकते, तो कंकरिया मारे करके इशारे यूं करके रख दिया था कि भाई इसको कहीं आएगा तो बोलेंगे कि भाई डाल दो। जहाँ पे वो सिचुएशन आई कि मटके लेके निकल रही, तो मैं बोला ये ऐसे कोई डाल दो मटकी के साथ लिंक आ जाए, तो हमने बोला ये करो, तो वो गाना उसमें डाल दिया।

मेरे देश की धरती की इस देश की धरती, पहले लिखा गया था कि इस देश की धरती सोना उगले, उगले ही थी मूर्ति। तो मैं बोला एक तो उगले सब समझेंगे नहीं, तो बोले नहीं वहाँ तो समझते उगले, आपके वहाँ उगले नहीं समझते होंगे, लेकिन ठीक है। लेकिन मैं बोला जो आसान तरीका है, इस गाने में बंद हो जाता है और मेरे अपना लगता है, अपनेपन का एहसास होता है। तो इस पे बहस चल रही थी कि इस रखें कि मेरे रखें। तो इतने उसमें चार पांच दिन जब भी सिटिंग होती थी तो कि भाई क्या रखें, मेरे रखें कि इस रखें, इस रखें कि मेरे रखें। यूँ करते करते आखिर में मेरे देश की धरती और ये गाने ने

0: जाए।
1: यहाँ तक कल्याण जी भाई के साथ बतौर असिस्टेंट काम कर रहे थे आनंद जी भाई, पर जब इन्हें फिल्म सट्टा बाजार मिली तो पहली बार संगीतकार के रूप में पर्दे पर

अमोभरा कल्याण जी आनंद जी, इस जोड़ी के लिए और संगीत के चाहने वालों के लिए ये फिल्म एक यादगार फिल्म है। कल्याण जी आनंद जी को एक के बाद एक तीन फिल्में मिली जिनका संगीत लोगों के सर चढ़कर बोल रहा था। 1959 में मदारी और सट्टा बाजार।

1961 में आई थी फिल्म छलिया। फिल्म छलिया का निर्माण किया था सुभाष देसाई ने और इस फिल्म के निर्देशक थे मनमोहन देसाई। राज कपूर और नूतन की इसमें जोड़ी थी। छलिया में

0: जाना।
1: दोनों ही फिल्मों का संगीत जबरदस्त हिट रहा और कल्याण जी आनंद जी के जोड़ी का शुमार अव्वल दर्जे के संगीतकारों में होने लगा। इस जोड़ी ने फिल्म संगीत में जो वैरायटी दी है वो कमाल की है। देशभक्ति के जज्बे से लबरेज उपकार फिल्म का ये गाना देशगान के रूप में जैसे पूजा जाता है।

कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने कुल 250 के आसपास फिल्मों में संगीत दिया है दोस्तों, जिनमें से 17 फिल्में गोल्डन जुबली हिट हुई हैं और 39 फिल्में सिल्वर जुबली। मानवीय भावों को सशक्त रूप से अपनी रचनाओं में पिरोना बड़ा ही कठिन काम होता है। इसके लिए उच्च कोटि की सांगीतिक बुद्धि की तो आवश्यकता होती ही है, साथ ही अथक परिश्रम की भी जरूरत होती है, तब कहीं जाकर कोई रचना संगीत प्रेमियों के दिलो दिमाग पर छा जाती है। मुकेश के गाए कितने ही गमगीन गाने संगीत की महफिलों में आज भी गाए और गुनगुनाए जाते हैं।

लता मंगेशकर के लिए कल्याण जी आनंद जी ने 297 गाने बनाए हैं। दोस्तों, इसी संगीतकार द्वारा लता जी के लिए कंपोज करने का एक तरह का जो रिकॉर्ड है, ऐसा करने वालों में उनका नाम तीसरे नंबर पर आता है।

24 अगस्त सन 2000 में कल्याण जी भाई ने संगीत संसार को अलविदा कहा तो लगा जैसे भरी महफिल में कोई उठ के चला गया।

0: महफिल।
1: कल्याण जी भाई का जो सपना था नए उभरते कलाकारों को आगे बढ़ाने का, उसे पूरी शिद्दत के साथ पूरा करने में लगे हैं उनके अनुज आनंद जी भाई। उनके द्वारा स्थापित संस्था का नाम है लिटिल स्टार्स। दोस्तों, इस महान संगीतकार जोड़ी ने हमेशा ही सामाजिक सरोकार को प्रधानता दी है। कई एनजीओज के लिए चैरिटेबल शोज करना, समाज के लिए कुछ करते रहने की एक परंपरा सी इन्होंने चला रखी है। सामाजिक दायित्व को अपना उत्तरदायित्व मानते हुए आनंद जी भाई अथक प्रयास से अपने इस कार्य को कर रहे हैं। दोस्तों, कल्याण जी आनंद जी का संगीत सुर सागर है और इसमें से एक अंजुलि भर के ही इस छोटे से कार्यक्रम में हम पेश कर सकते हैं। तो इनके इस लंबे सफर को आधे घंटे में पूरा करना, ये एक असंभव सी बात है। हमारा ये एक छोटा सा प्रयास।

0: आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के आनंद जी पर। शोध आलेख और स्वर अशोक सोनावणे का, प्रस्तुति सहयोग रहा आकांक्षा सिंह का, और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने।
1: आज के फनकार।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और

0: 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में, बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
1: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर।
2: मेगाहर्ट्ज पर आप जो विविध भारती वडोदरा नी साथ है। गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स टाइम। अत्यारे सवारना 10 वाग्या छे। शुभ अवसरोमां सोनानी खरीदी माटे विश्वासपात्र नाम गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स, जेतलपुर ब्रिज पासे, अलकापुरी, वडोदरा। मित्रों, आवो रजू करिए फिल्मी नॉन फिल्मी गजलनो कार्यक्रम।

93.9 मेगाहर्ट्ज पर आप छो विविध भारती वडोदरा ने साथ है। नमस्कार प्रिय श्रोता मित्रों, आओ सांभळीए फिल्म संगीत कार्यक्रम जेमा आजे आपणे एक एवा विषय पर वात करवा जई रह्या छे जे थोड़ो असामान्य आश्चर्यजनक अने खरेखर रसप्रद छे। शुं तमे क्यारे कोई एवुं संगीत सांभळ्युं छे अने विचार्युं छे के आखरे हुं आ शुं सांभळी रह्यो छुं? कदाच तेमां विचित्र वाद्यों उपयोग थयो होय, कदाच तेनी लय के ताल एकदम अनोखा होय, अथवा कदाच तेना अवाजो एटला अलग होय के तमने समझातुं ज न होय के तमे संगीत सांभळी रह्या छो के पछी कोई प्रकारनो अवाज। तो आजे एज प्रकारना संगीतनी उजवणी करवानो खास दिवस छे। जी हाँ मित्रों, आजे छे इंटरनेशनल स्ट्रेन्ज म्यूजिक डे, एटले के आंतरराष्ट्रीय विचित्र संगीत दिवस। इंटरनेशनल स्ट्रेन्ज म्यूजिक डे नो मूळ विचार ए छे के आपणे आपणी सामान्य संगीतनी पसंदगीथी थोड़ू बहार निकळीए अने एवा अवाजो अने संगीतने सांभळवानो प्रयास करिए जे असामान्य, प्रयोगात्मक, परंपराथी अलग अथवा आपणने खरेखर विचित्र लागे। आ दिवस एवा संगीतने प्रोत्साहन आपवा माटे छे जे कदाच आपणे सामान्य रीते अवगणीए, एवुं संगीत जे આપણી સંગીત વિશેની ધારણાઓને પડકારે અને આપણને નવા વિચાર વિચારવા મજબૂર કરે કે ખરેખર સંગીત એટલે શું। તો આવો પ્રથમ માણીએ આ એક ગીત અને ત્યારબાદ વાત કરીશું વિચિત્ર અવાજો, અનોખા વાદ્યો અને પ્રયોગાત્મક સંગીત વિશે। સૌપ્રથમ સાંભળીએ હરે રામા હરે કૃષ્ણ ફિલ્મનું ગીત, જેને સ્વર આપ્યો આશા ભોંસલે અને સાથીઓએ, સંગીત આર ડી બર્મનનું, શબ્દરચના આનંદ બક્ષીની।

0: इसकी चाल तो देखो,
1: अरे रंग लगाया।
0: इसके बाल तो देखो,
1: अरे झूठे मूठे।
0: इसके दांत तो देखो।

है। अरे तो लो भैया, हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल, दबा लेगा दांतों तले उंगलियां लिया।

कई साल पहले की ये बात है। भयानक अंधेरी सिया रात में लिए अपनी बंदूक में हाथ में

0: जा रहा था नहीं आ रहा था नहीं नहीं जा रहा था।
1: उफ़ आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ नहीं भूलती उफ़ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो छपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ, मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाल दाल, मैं चुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ बचाओ, अरे भागो रे भागो, अरे भागो।
2: फिर क्या हुआ?
0: खुदा की कसम,

0: सेहत आपकी, सुरक्षा हमारी। अब नहीं रहेगी मच्छरों से परेशानी, क्योंकि एक मच्छर इंसान को सोने नहीं देता है। नई टेक्नोलॉजी की मच्छर जाली के लिए संपर्क करें 45 वर्ष से आपकी सेवा में उपस्थित आरके ब्लाइंड्स, डांडिया बाजार, 9825027525। सेहत आपकी, सुरक्षा हमारी। यह है आरके ब्लाइंड्स की जिम्मेदारी।
1: सारा गणदेविकल ज्वेलर्स, शुकर नु सोनू तो सारा गणदेविकल नुज। सारा नु सोनू सुख शांति अने समृद्धि नु सोनू। सारा गणदेविकल ज्वेलर्स, दांडिया बाजार अने वागोडिया रोड, वडोदरा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आंध्र प्रदेश की यात्रा पर हैं। वे आज एलोरा जिले के मुसुनूरू पहुंचे। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर और मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने उनका स्वागत किया। उपराष्ट्रपति कुछ ही देर में गवर्नमेंट पॉपकॉर्निका परिसर में भारत के पहले गैर जीएमओ उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज का अनावरण करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय

0: राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। दो दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री देनिस मांतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सहअध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार भी साझा करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज जापानी कंपनियों से भारत में अपने कारोबार का विस्तार करने और सुजुकी जैसी सफलता की कहानियां बनाने का आह्वान किया। जापान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जापान इंडिया बिजनेस कंसल्टेटिव कमेटी और भारतीय दूतावास के साथ एक बैठक को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत का युवा कार्यबल, बढ़ती अर्थव्यवस्था और दीर्घकालिक विकास की महत्वाकांक्षाएं जापानी व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 18वें ब्रिक्स अकादमी मंच का शुभारंभ कल लखनऊ में हुआ। ये मंगलवार तक रहेगा। लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। ईरान ने कहा है कि अधिकृत देशों के जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए अब सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रजाई ने बताया कि यह शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और लॉजिस्टिक संबंधी कई सेवाओं को सम्मिलित करेगा। इससे पहले ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रजाई ने कहा था कि होर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की आर्थिक कार्रवाई का समर्थन करने वाले किसी भी देश के कदम को युद्ध माना जाएगा। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को नए अमेरिकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमेरिकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। देश भर में श्रावण माह के चौथे और अंतिम सोमवार को भगवान शिव के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पूरा राज्य शिव भक्ति के रंग में डूबा हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: अंतिम सोमवार के विशेष महत्व को देखते हुए देवघर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए ड्रोन निगरानी, एआई आधारित कैमरे और डिजिटल हेल्पलाइन जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं की हैं। इधर राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में भी मध्य रात्रि से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: भारतीय वाणिज्य दूतावास ने न्यूयॉर्क स्थित ब्रुकलिन में हुई गोलीबारी की घटना में एक भारतीय नागरिक की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में वाणिज्य दूतावास ने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। दूतावास ने कहा कि वे परिवार के संपर्क में हैं और हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पटना, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। इसे देखते हुए बिहार सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार से फरक्का बराज के सभी गेट खोलने का अनुरोध किया है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच जारी है। चायकाल तक भारत ने 6 विकेट पर 419 रन बना लिए हैं। भारत ने आज 300 रन से आगे खेलना शुरू किया। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। साथियों, आज यादों की महफिल में हम और आप मिलकर याद करेंगे कल्याण जी आनंद जी जोड़ी के कल्याण जी को। आज उनकी याद का दिन है। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी का लिखा गीत। संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी। फिल्म का नाम है बैराग।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: साथियों, कार्यक्रम यादों की महफिल में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल पर जाने का।

अंतराल के बाद कार्यक्रम यादों की महफिल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज यादों की महफिल में हम याद कर रहे हैं कल्याण जी आनंद जी जोड़ी के कल्याण जी को। आज उनकी याद का दिन है। लीजिए सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद रफी को। नगमा निगार है इंदीवर, तर्ज है कल्याण जी आनंद जी की, फिल्म का नाम है कुर्बानी।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती
0: जुलवा में बहुत

0: ये थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती।
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
0: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
0: जी।
1: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
0: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
0: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मुकद्दर का सिकंदर, इस फिल्म का गीत सुनिए जिसे लिखा है अनजान ने, आवाज है किशोर कुमार की, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

साथियों, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी के संगीत से सजा अगला नगमा है मुकेश की आवाज में। गीतकार हैं इंदिवर, फिल्म का नाम है सफर।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और आज की ये महफिल सजी है कल्याण जी आनंद जी जोड़ी के कल्याण जी की यादों से। तो आइए आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में वो गीत जिसे लिखा है एम जी हशमत ने, फिल्म का नाम है कोरा कागज।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन, और कार्यक्रम चल रहा है यादों की महफिल। अगला गीत है

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करेक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कलाकार इस फिल्म का गीत सुनिए किशोर कुमार की आवाज में। गीत रचना है इंदिवर की, संगीत रचना है कल्याण जी आनंद जी की।

0: सुनहरी ख्वाबों वाली एक लड़की।
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
0: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
2: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
0: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
0: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
0: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
2: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के।
0: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
2: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास मैं।
0: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर हर शनिवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध

धर्मात्मा, इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं मुकेश और कंचन की आवाजों में। गीत को लिखा है इंदीवर ने, सुरों में ढाला है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है मुकेश की आवाज में। धुन है कल्याण जी आनंद जी की, गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और फिल्म का नाम है हिमालय की गोद में।

नमस्कार श्रोताओं, सुरीला सफर इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूं मंजू द्विवेदी। सबसे पहले आपको आज की जो इबारत है वो पढ़ के सुना देते हैं, जो आपने विविध भारती के फेसबुक पेज पर पोस्ट की है। आपने उसे पढ़ा भी है, बहुत सारी बातें आपने हमारे विषय के संदर्भ में लिखी है। पहले आपको इबारत पढ़ के सुना देते हैं। इबारत ये है कि एक सवाल एक जवाब, हर सवाल के जवाब से उठता है एक सवाल और चलता रहता है ये सवालों का सिलसिला। दुनिया जब सवाल करती है तो लगता है क्या जवाब दें, दिल की सुने या दिमाग की। मैंने उससे कहा, अगर मैं सवाल पूछूं तो क्या तुम जवाब दोगे? उसने कहा, मैं तुम्ही से पूछती हूं कि कौन हो तुम, कौन हो, ख्वाब हो या हकीकत हो। सवालों का सिलसिला एक जगह आकर ठहर जाता है, पर तभी उसने चांद से पूछ लिया, तुम छुपे हो कहाँ? चांद ने कहा, ये तो कहो कौन हो तुम। सवाल का जवाब मालूम ना हो तो हम निरुत्तर हो जाते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि सवाल का कोई जवाब नहीं है। जवाब तो है, तभी तो हम कहते हैं ये दिल की बाजी है, हम जीत ही लेंगे, खेल को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। सत्यता तो ये है कि ये सवाल और ये जवाब एक मरीचिका की तरह हमारे मन में बने रहने चाहिए। तो दिन में 1 बजे यानी कि इस वक्त अभी थोड़ी देर में सवालों का जो जवाब है वो आप जरूर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं सिलसिला। एक हमारी साथी की ये बात की कि मन में छिपे सवालों को न पूछने से असमंजस और गलतफहमियां बढ़ती हैं, जिससे मन अशांत रहता है और रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं। खुलकर बात करने से स्पष्टता आती है, मन का बोझ कम होता है और आपसी विश्वास मजबूत होता है। संवाद न करने से, बातों को मन में रखने से दूसरों के इरादों को लेकर गलत राय बन जाती है। सही समय पर सवाल पूछने से भ्रम दूर हो जाते हैं। पारदर्शिता से रिश्तों में अपनापन और नजदीकियां बढ़ती है। छोटे बच्चे कुछ सवाल कौतूहलवश या जिज्ञासा के लिए करते हैं। सही समय पर बच्चों को सही सवाल का जवाब देना चाहिए। ये बहुत मुद्दे की बात हमारे इन साथी ने लिखी है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि बच्चों ने अगर कोई सवाल किया तो हमें लगता है बच्चों की बातों का जवाब देना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन उतना ही जरूरी है, क्योंकि बच्चे का जो मन होता है बहुत सारी बातों को उस वक्त सीख रहा होता है, और यही कारण होता है कि उसके मन में सवालों का एक उबाल सा होता है। अगर उन सवालों का सही जवाब ना मिले तो बच्चे किसी गलत डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, इसलिए बच्चों के सवालों का सही जवाब देना बहुत जरूरी होता है। चलिए अब हम गीत सुनने का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला जो गीत है ये ससुराल फिल्म का गाना है, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ें, संगीत शंकर जयकिशन का है। गीतकार कौन है ये आप बताइए हमें।

एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो. जी हाँ, शैलेंद्र का लिखा हुआ ये गाना है जो जिसका जवाब आपने हमें दे दिया है. और अब हमारा सवाल ये है आपसे कि क्या आपने किसी से कोई सवाल किया है और आज तक उसके जवाब का इंतजार कर रहे हैं? जी हाँ, आपने कभी किसी से कोई सवाल किया और आज तक उसने आपके सवाल का जवाब नहीं दिया? ऐसा कोई उदाहरण आपके पास हो तो आप हमें जरूर बताइएगा. एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि सवाल और जवाब ही तो जिंदगी की आधी उलझन और आधा सुकून है. सवाल तलाश की आग है और जवाब उस आग पर ठहरा हुआ पानी है. हमें कभी कभी लगता है सवाल यानी मृत तृष्णा है, मगर वो भी तो एक दृष्टि भ्रम है. सवाल ही तो जिज्ञासा या मनुष्य की चेतना बढ़ाता है. जवाब यानी अनुभूति उस पर गहरी शांति देकर सवाल को जीत लेता है. जीवन का सफर यूं ही चलता रहे, यही रूह का असली बहाव है. और एक हमारे साथी ये लिख रहे हैं कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब नहीं हो सकता. एक गाना भी है, हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता मेरे प्यार का हिसाब, इस तरह के एक गाने का इन्होंने जिक्र किया है. और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आज की इबारत ने हमारा दिल छू लिया. सवालों के जवाब तो हमारे पास भी नहीं है, पर हम भी कहते हैं कि दिल की बाजी है, जीत ही लेंगे. चलिए, धन्यवाद आपका. हम आगे बढ़ रहे हैं. बहू बेगम फिल्म का गाना अब आपके लिए लेकर आए हैं. लता जी की आवाज है, साहिल लुधियानवी के बोल हैं, मीना कुमारी पर फिल्माया गया गाना है. संगीत किसका है ये बताइए. और हाँ, ये भी बताइएगा कि आपने कभी किसी से कोई सवाल किया और आज तक उसके जवाब का इंतजार कर रहे हैं.

दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दें। रोशन का संगीतबद्ध किया ये गाना आपने सुना, और सचमुच कुछ सवाल जो होते हैं बड़े लाजवाब होते हैं। ये हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि कुछ लाजवाब सवालों के जवाब भी लाजवाब होते हैं। जवाब देने वाले की बुद्धिमत्तापूर्ण जवाब सुनकर इंसान सोच में पड़ जाता है और मंत्रमुग्ध हो जाता है। दुनिया में सबसे ताकतवर चीज क्या है? जवाब, वक्त। ये वक्त कब राजा को भी रंक बना देता है। सवाल, सबसे बड़ा शिक्षक कौन है? जवाब, ठोकर और असफलता, जो इंसान को जीवन का असली पाठ पढ़ाती। यानी सवाल भी महत्वपूर्ण होते हैं और जवाब भी। एक साथी लिख रहे हैं कि सवाल पूछने का जवाब तो लोग घुमा फिरा कर दे देते हैं, लेकिन कुछ कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसका जवाब तुरंत नहीं दिया जा सकता है। मैं कह देती हूँ कि कुछ कुछ सवाल का जवाब वक्त भी देता है, इसलिए वक्त का इंतजार करो। एक साथी लिख रहे हैं कि सवाल और जवाब का यह सिलसिला कभी नहीं थमता। एक सवाल के बाद दूसरा और फिर अनगिनत सवाल खड़े हो जाते हैं। जब दुनिया सवाल करती है तो असमंजस होता है कि दिल की सुने या दिमाग की। मैंने उससे पूछा कि क्या वह मेरे सवालों का जवाब देगी, तो उसने मुझसे ही पूछ लिया कि तुम कौन हो। यानी इन्होंने इबारत में से कुछ जो बातें हैं या कुछ इनके हिसाब से जो गाने सुनवाए जाने हैं उसके बारे में इन्होंने लिखा है। चलिए, धन्यवाद आपका। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अनुपमा फिल्म का गाना आपके लिए लेकर आए हैं। आवाजें हेमंत कुमार की, कैफी आजमी के बोल, संगीत हेमंत कुमार का। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए। हमने आपसे पूछा कि क्या किसी से आपने कोई सवाल किया और अभी तक आप उसके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। और इसी के साथ हम ये भी पूछना चाहते हैं कि कोई आप व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा है जिनके जवाब देने का जो अंदाज है वो आपको बड़ा पसंद आता है, और वो जवाब अंदाज जो है वो कैसा है उसके बारे में भी आप हमें थोड़ा बताइएगा। चलिए, अनुपमा फिल्म का गाना सुनिए।

0: धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर पर फिल्म आया गया ये गाना। एक हमारे साथी की बात है कि दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दें, इसी सवाल जवाब में उलझे हुए हैं। कभी किसी को जवाब देने पर कोई उलझन न बन जाए। सवालों के जवाब कई तरह से दिए जा सकते हैं, कभी मौन रहकर आंखों से, हाव भाव से, कभी बगैर बोले भी बहुत कुछ कह दिया जाता है। उलझे हुए सवालों की परिस्थितियों पर छोड़ देते हैं, किसी न किसी तरह समय के साथ जवाब मिल जाएगा ये सोचकर सकारात्मकता ले आती है, फिर भी मन उलझा रहता है। एक साथी लिख रहे हैं कि जब लोग ऐसे अजीब और बहुत ज्यादा निजी सवाल पूछते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम पर कोई शक किया जा रहा हो या हमारा इम्तिहान लिया जा रहा हो। तब इंसान अपने को बहुत असहज महसूस करता है। लोग अक्सर अपनी उत्सुकता या नियंत्रण के चाहत में सीमाओं को भूल जाते हैं। हर सवाल का जवाब नहीं होता और कोई जरूरी
1: आकाशवाणी समाचार अंगिता मकवाणा वाचे छे। सौ प्रथम मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयले भारत में डेटा सेंटर्स उत्पादन और कृत्रिम बुद्धि जेवा क्षेत्रों में रोकाण माटे जापानना उद्योगकारों ने अपील करी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह नवी दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा व्यूहरचना परिषद उद्घाटन करशे। बिहार में परीक्षा पद्धति में सुधारणा माटे समिति की रचना करवा माटे जाहिरनामु प्रसिद्ध कर्यु। પાકિસ્તાનના વરિષ્ઠ નેતા મૌલાના ફઝલુર રહેમાને પાકિસ્તાનના આર્મી ચીફ મુનીરની ટીકા કરી। શેરબજારમાં આજે પ્રારંભિક ઉછાળા બાદ ઘટાડો અને શ્રીલંકા સામેની કોલંબો ટેસ્ટમાં ભારતની મજબૂત સ્થિતિ। સમાચાર વિગતવાર। કેન્દ્રીય વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રી પિયુષ ગોયલે આજે જાપાનના ઉદ્યોગકારોને સંબોધતા જણાવ્યું હતું કે ભારતમાં ડેટા સેન્ટર્સ ઉત્પાદન અને કૃત્રિમ બુદ્ધિ જેવા ક્ષેત્રોમાં રોકાણ માટે મોટી તકો છે, તે માટે રોકાણકારોએ અપીલ કરવા જીડીપીમાં 15 ટ્રિલિયન ડોલરનો હિસ્સો ધરાવનારા ઓછામાં ઓછા 8-9 દેશોના જૂથો અને વ્યક્તિગત રાષ્ટ્રો સાથે ભારત વાટાઘાટો કરી રહ્યું છે। શ્રી ગોયલે ઉમેર્યું હતું કે દેશના મુક્ત વેપાર કરારો આખરે વૈશ્વિક વેપારના લગભગ 75% ને આવરી લેશે અને ભારત

सी राम चंद्र का संगीतबद्ध किया ये गाना आपने सुना। एक साथी लिखते हैं कि आज की इबारत बहुत गहरी और मन को छू लेने वाली है। सवाल और जवाब के इस भंवर में शब्दों को बहुत खूबसूरती से पुरोया गया है। एक साथी लिख रहे हैं कि दिल और दिमाग के बीच चलने वाले द्वंद्व की विकट स्थिति का सामना हर इंसान को करना पड़ता है और ये स्थिति तब बनती है जब वो सवालों के जवाब में घिरा होता है। जीवन की इसी उधेड़बुन में निकलता है किसी को जवाब देकर किसी का सवाल सुनकर, पर सही में उसका सवाल सही है या जवाब उसको खुद ही नहीं मिल पाता है। कुछ सवालों के जवाब तो मिले ही नहीं, वो ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि कुछ जवाब ऐसे होते हैं जो सवालों से भी ज्यादा दर्द देते हैं। एक साथी ये लिख रहे हैं कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम किसी को याद करें किसी काम के लिए और उसी का फोन आ जाए और वो खुद ही उस सवाल का जवाब देते हैं जो हमने सोचा था, तो ऐसा भी होता है। चलिए एक सवाल हमने आपके लिए भी सोचा है कि क्या आपने कभी किसी से कोई सवाल किया और उसे सवाल ठीक से समझ में नहीं आया और उसने जवाब कुछ इस तरह का दिया, तो जो सवाल और जवाब का तालमेल जब नहीं बैठता है तो वातावरण में एक हंसी का ठहाका लग जाता है और हम बोलते हैं अरे हमने तो तुमसे ये बात पूछी थी, तुम तो जवाब कुछ और ही दे रहे हो। तो ऐसे भी कई बार परिस्थितियां आ जाती, तो ऐसा कोई वाकया आपको याद आता हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। चलिए अब तीन देवियां फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। किशोर कुमार और साथियों की इसमें आवाजें हैं, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, एस डी बर्मन का संगीत है। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए।

पे जिस तरह शाम का हो गुमा, सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, जुल्फों में एक चेहरा कुछ जाहिर।

देवानंद और सिमी गरेवाल पर फिल्माया गया ये गाना आपने सुना। एक साथी हमारी लिख रही है कि अभी तो बादलों से मैं पूछ रही हूँ कि कब बरसोगे, सिर्फ आसमान का मेकअप मत करो, बरस भी जाओ। और एक साथी लिख रहे हैं कि सवालों का सिलसिला जिंदगी में सबसे खूबसूरत आदत है, क्योंकि हर सवाल एक दरवाजा खोलता है और हर जवाब 10 नए रास्ते दिखाता है। बचपन में ये क्या है से शुरू होकर बड़े होने पर मैं कौन हूं तक पहुंचते पहुंचते हम सीखते हैं कि रुकना नहीं, जिज्ञासा बनाए रखना ही असली तरक्की है। सवाल हमें विनम्र बनाते हैं और हमें सुनना सिखाते हैं और हमें दूसरों की दुनिया में झांकने की हिम्मत देते हैं। बिना सवालों कि बातचीत बासी हो जाती है। जिस दिन मन से सवाल उठने बंद हो जाते हैं उसी दिन से समझ और जिज्ञासा भी नष्ट होने लगती है। इसलिए सवाल पूछते रहो, कोई सवाल करे तो उसके उचित जवाब देते चलो और आगे बढ़ते चलो। एक साथी लिख रहे हैं कि जिंदगी में कई सवाल बिना जवाब के रह जाते हैं, यही अधूरेपन का एहसास और खोज की ये बेचैनी ही हमारी यात्रा का मुख्य हिस्सा बन जाती है। जीवन के अनसुलझे पहलू, कुछ पहेलियां कभी नहीं सुलझती, उत्तर न मिलने पर भी जीना ही अनुभव है। जीवन में कुछ अनसुलझे सवालों के जवाब न तलाशना और अनिश्चितता को स्वीकार करना कई बार मानसिक शांति और आत्मिक सुकून बनाए

रखने का एक प्रभावी तरीका साबित होता है। धन्यवाद आपका। चलिए अब अब्दुल्ला फिल्म का गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। मोहम्मद रफी की आवाज़ या आनंद बख्शी के बोल, आर डी बर्मन का संगीत है। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बता सकते हैं?

संजय खान और जीनत अमान पर फिल्माया गया ये गाना आपने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि एक बार हमारे चाचा जी ने हमारे छोटे भाई से पूछा कि भैया, यानी ये भैया शब्द उन्होंने पिताजी के बारे में कहा था, कि भैया के विवाह में आपने डांस

किया था तो उसने अपने बड़े भैया के विवाह के संदर्भ में हाँ कहा और सब लोग हंस पड़े और इस तरह से एक हंसी का माहौल बन गया। एक साथी लिख रहे हैं कि बहुत बार ऐसा होता है जब कुछ और सोच रहे होते हैं और कोई सवाल करता है तो हम बिना उसकी बात समझे जवाब दे देते हैं, बात बाद में समझ में आता है कि अरे मैंने तो ये गलत जवाब दिया, फिर सॉरी बोलकर सही जवाब दे देते हैं और सबके जवाब भी कितने अलग होते हैं। और एक साथी ये लिख रहे हैं कि हिसाब के सवालों से डर लगता था, कभी गार्जियन कुछ कड़क की पूछे तो डर लगा, पर सबसे ज्यादा डर लगता था जब शादी के पहले लड़कियों से लोग मिलने जाते और तरह तरह के उटपटांग सवाल एक पर एक दाग देते हैं तो ये बड़ा अजीब लगता है। और एक साथी हमारे लिखते हैं कि कुछ लाजवाब सवालों के जवाब भी लाजवाब होते हैं, जवाब देने वाले की बुद्धिमत्तापूर्ण जवाब सुनकर इंसान सोच में पड़ जाता है और मंत्रमुग्ध हो जाता है। दुनिया में सबसे ताकतवर चीज क्या है? जवाब। वक्त, ये वक्त का राजा होता है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि जब लोग ऐसे अजीब और बहुत ज्यादा निजी सवाल पूछते हैं तो भी मतलब अच्छा नहीं लगता है। चलिए धन्यवाद आपका, और अब हम आपको नवरंग फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं। मन्ना डे और आशा भोसले की आवाजें, भरत व्यास के बोल, श्री रामचंद्र का संगीत, महीपाल और संध्या पर फिल्माया गया ये गाना है।

माया गया, ये गाना आपने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि सवाल जवाब ही संसार नहीं होते, पशु और पंछी जो कि बेजुबान होते हैं वो भी संसार में होते हैं। इनका कहने का मतलब ये कि बिना सवाल और बिना जवाब के भी संसार चलता रहता है। अब देखिए भाई, पशु और पंछियों की जहां तक बात है तो उनमें भी हो सकता है कई तरह के सवाल इशारों से होते हो जो हमें समझ में ना आते हो, ये भी हो सकता है। ये एक सवाल है, हो सकता है ऐसा। चलिए, एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि नए देश, नया परिवेश, नए दृश्य, अलग अलग रहन सहन पूछना ही पड़ता है। मैं बर्लिन में हूँ और बहुत कुछ नया देख रही हूँ और सवाल भी करती रहती हूँ कि ये क्या है, कैसे है, कहाँ है। इस तरह के सवाल मन में आते हैं और जवाब मिलता है। एक साथी लिख रहे हैं कि सवालों और जवाबों की मरीचिका जीवन में अंतहीन खोज, असंतोष और भ्रम का एहसास कराती है। जिस तरह रेगिस्तान में पानी की चमक देखकर इंसान भागता है पर वहां कुछ नहीं मिलता, वैसे ही जीवन में एक जवाब मिलते ही एक सवाल खड़े हो जाते हैं और जवाब अंतिम सत्य नहीं है मगर असल में एक नया सवाल होता है। जवाबों की खोज की तृष्णा है जो नए सवालों की जनक होती है। इस तरह की बात इन्होंने लिखी है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आशिक फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं। मुकेश की आवाज, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। मुख्य कलाकार कौन है फिल्म में ये बताइए।

कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना हम सुनेंगे। एक साथी की ये बात आपको पढ़कर सुना देते हैं कि नवरंग फिल्म का जो हमने गाना सुनवाया था उसके बारे में लिखा है कि इस गाने में शहनाई और बांसुरी बजाई संगीतकार रामलाल ने, जबकि फिल्म का संगीत दिया सी रामचंद्र ने। और एक साथी लिख रहे हैं कि हर सवाल का कोई न कोई जवाब होता ही है, चाहे मौन ही क्यों ना हो, अनुत्तर रहकर हम परिस्थितियों को संभाल सकते हैं। इंसान चाहे कि कोई उससे बात करे या उसके प्रश्न का उत्तर दे, क्योंकि लोग बात करना चाहते हैं पर अपने मन का बोझ हल्का करना चाहते हैं। धन्यवाद आपका। चलिए आगे हम बढ़ रहे हैं। अगला और अंतिम गाना शोला और शबनम फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ से, कैफी आजमी के बोल, संगीत किसका है ये आप बताइए।

शोला और शबनम इस फिल्म का गाना आपने सुना। संगीत खय्याम का एक साथी के इस बात के साथ कार्यक्रम का समापन करते हैं। लिखते हैं कि पक्षी भी अपनी भाषा में सवाल पूछते हैं। जी मेरे साथ हुआ था, बुलबुल पक्षी जो रोज दाना डालती थी, एक दिन व्यस्त थी काम में तो वो मेरे आसपास बार बार मंडरा रहा था और अलग सी उग्र सी बोली में मानो मुझसे सवाल पूछ रहा था कि आज अपुन का दाना किधर है। तो देखिए पशु पक्षियों की भी भाषा होती है। चलिए धन्यवाद इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, प्यारी प्यारी बातों के लिए। और गीतों को आपने ध्यान से सुना, उसके बारे में लिखा, सवालों के जवाब दिए, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार दोस्तों, भारतीय नारी के 16 श्रृंगारों में पायल यानी पाजेब का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। कविगण नायिका के नक्श सौंदर्य वर्णन में पायल का वर्णन आलंकारिक और कोमल कांत शब्दावली में करते हैं। पायल की झनकार न सिर्फ वातावरण को अनुरागमय कर देती है, बल्कि मधुरता और स्नेह से भर देती है।
1: हमसे

0: भारतीय संस्कृति में पायल की रुंझुन ध्वनि में नारी के सौंदर्य के साथ उसकी सरलता, लज्जा और गरिमा का भी समन्वय दिखाई देता है। पायल की मधुर झंकार प्रेम, सौंदर्य और संवेदनाओं को मर्यादित रूप में अभिव्यक्त करती है। नायिका के चरणों की गति की तीव्रता से आंदोलित होती पायल प्रिय मिलन की आशा तो जगाती है, किंतु लोकलाज से विचलित भी करती है। ऐसी भावना तो ब्रजवासिनी राधा के मन में भी उठती होगी।
1: झन झन

पायल की छम छम वातावरण में ऐसी मधुरता भर देती है मानो प्रकृति भी स्वयं उस सौंदर्य का स्वागत कर रही हो। बिना कुछ बोले पायल की झंकार ही प्रियतम को अपने आगमन की पूर्व सूचना दे देता है। पायल की रुनझुन हृदय से हृदय के बीच का पत्राचार ही तो है। छम छम।

पायल नारी सौंदर्य की अभिव्यक्ति में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। पायल सौंदर्य और प्रेम को कलात्मक एवं सौम्य रूप में अभिव्यक्त करता है। तभी तो कवियों ने इसकी रुंझुन की तुलना वीणा के मधुर तानों से की है और इसे हृदय की मौन भाषा की भी संज्ञा दी है। आज त्रिवेणी का सफर आपने पूरा किया अपने दोस्त राजेश के साथ। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत वैश्विक व्यापार के 75% हिस्से को अपने दायरे में लाने के लिए 8 से 9 और देशों के समूहों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने जेपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। गृहमंत्री अमित शाह आज शाम नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे और कोलंबो में दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत की स्थिति मजबूत, ऋषभ पंत ने भारत के लिए विदेशी धरती पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आने वाले समय में भारत मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से वैश्विक व्यापार के लगभग 75% हिस्से को अपने दायरे में ले आएगा। इससे भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत कम से कम 8 से 9 और देशों के समूहों तथा अलग अलग देशों के साथ बातचीत कर रहा है। इन देशों का संयुक्त रूप से सकल घरेलू उत्पाद 15 ट्रिलियन डॉलर के बराबर है। उन्होंने भारत और जापान के व्यापार प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 4 वर्ष में हस्ताक्षरित 9 मुक्त व्यापार समझौते किए गए हैं। ये 9 समझौते 60 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद वाली अर्थव्यवस्थाओं और 38 विकसित देशों को

0: अपने दायरे में लाते हैं। श्री गोयल ने कहा कि बढ़ते आर्थिक संबंध भारत और जापान के बीच संतुलित व्यापार की दिशा में अग्रसर होंगे। श्री गोयल 200 से अधिक प्रतिनिधियों के एक बड़े व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं।
1: हमारे प्रतिनिधिमंडल में उत्तरी भारत से लगभग 80 कंपनियां हैं, पश्चिमी भारत से 68, दक्षिणी भारत से 34 कंपनियां हैं और पूर्वी भारत से लगभग 28 कंपनियां हैं। ये हमारे प्रतिनिधिमंडल की विविधता को दर्शाती है।
2: ओनली टू रिफ्लेक्ट दैट अ वाइड डाइवर्सिटी जॉइन दिस डेलीगेशन।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने भारत के पहले गैर जीएमओ उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज के विकास को, कृषि में आत्मनिर्भरता और देश में विकसित नवाचार को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले के मुसुनुरु में आगोमे पॉपकॉर्निका परिसर में इस बीज का शुभारंभ करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत लंबे समय से उच्च गुणवत्ता वाले पॉपकॉर्न मक्का के लिए आयातित हाइब्रिड बीज तकनीक पर निर्भर रहा है। उन्होंने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान का उल्लेख करते हुए पीएम किसान, पीएम फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और नमो ड्रोन दीदी जैसी केंद्र सरकार की पहलों की सराहना की।
3: I appreciate both the state and the central governments for their various schemes for safeguarding the interest of farmers, like PM Kisan Samman Nidhi, PM Fasal Bima Yojana, Kishan Credit Card schemes and many others. National Food Security and Nutrition Mission also ensures seed certification, integrated nutrient and pest management, on farm mechanization assistance and field demonstrations for maize farmers.
0: सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागजी और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने केंद्र सरकार, झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। याचिका में निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के लिए मामले की जांच राज्य से सीबीआई को सौंपने की मांग की गई है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 2 दिवसीय यह सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा।
4: 2 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से ज्यादा अधिकारी शामिल होंगे। ये अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मौजूदा मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। यह वार्षिक बैठक देश की खुफिया एजेंसियों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को चर्चा का एक मंच प्रदान करती है, जिसमें आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और उभरते खतरों जैसे अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाता है। साल 2016 में हुई डीजीपी आईजीपी सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा और पुलिस प्रमुखों से हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आयोजित करने का निर्देश दिया था। इसका उद्देश्य देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी बड़ी चुनौतियों का समाधान तलाशना है। इसके अलावा जमीनी स्तर पर काम कर रहे वरिष्ठ अधिकारियों के अनुभव और विशेषज्ञों की राय को शामिल किया जाता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रेलवे ने रेल नेटवर्क में विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को लगातार स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके अंतर्गत पेयजल टैंक और पेयजल को स्वच्छ बनाने की प्रणाली को साफ और कीटाणु मुक्त किया जाएगा।
5: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस अभियान के दौरान जोनल रेलवे जल स्रोतों, जल शोधन और फिल्ट्रेशन संयंत्रों, भूमिगत और ऊपरी टैंकों, पीवीसी टैंकों, वाटर बूथ, नलों और पेयजल वितरण केंद्रों का व्यापक निरीक्षण करेंगे। साथ ही टैंकों के ढक्कन अच्छी तरह बंद रखने और वेंट तथा ओवरफ्लो पाइपों को पक्षियों, जानवरों और शैवाल से सुरक्षित रखने के उपाय किए जाएंगे। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने संत शिरोमणि गुरु रविदास के योगदान को याद करते हुए कहा है कि गुरु रविदास के विचारों और कार्यों ने सामाजिक बुराइयों पर कड़ा प्रहार किया और सामाजिक समरसता की नींव मजबूत की। नई दिल्ली में समरसता संकल्प अभियान को संबोधित करते हुए श्री नवीन ने कहा कि गुरु रविदास जी के आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए भाजपा ने यह समरसता अभियान शुरू किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की भी सराहना की।
6: मुख्यमंत्री रहते हुए, देश के प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने पहले भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया, फिर गुजरात के निर्माण में अपनी ताकत दी और आज हम कह सकते हैं

0: इस देश को नव निर्माण के दिशा में लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। हम सबको ये विश्वास है कि 2047 में भारत विश्व गुरु बनेगा। 2047 में भारत कहीं ना कहीं विकसित भारत के सपने को हम साकार करेंगे।
1: केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना PMFME से अब तक 2 लाख से अधिक व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम लाभान्वित हुए हैं। नई दिल्ली में आज PMFME सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री पासवान ने कहा कि लाभार्थियों में करीब 80% पहली बार उद्यम शुरू करने वाले लोग हैं और इनमें 44% महिलाएं हैं। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों से उत्पादों की गुणवत्ता से कोई समझौता न करने का आग्रह किया।
2: PMFME की हमारी स्कीम

0: पीएमएफएमई से अब तक 2 लाख से अधिक व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम लाभान्वित हुए हैं। नई दिल्ली में आज पीएमएफएमई सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री पासवान ने कहा कि लाभार्थियों में करीब 80% पहली बार उद्यम शुरू करने वाले लोग हैं और इनमें 44% महिलाएं हैं। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों से उत्पादों की गुणवत्ता से कोई समझौता न करने का आग्रह किया।
1: पीएमएफएमई की हमारी स्कीम जिसके माध्यम से हम लोग यंग फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने का काम करते हैं, जो संभवतः अपनी छोटी प्रोड्यूस को प्रोडक्ट में बदलकर उसमें वैल्यू ऐड कर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक उनको हम लोग लेकर जाने में उनकी सहायता करते हैं। पूरी तरीके से टेक्निकल हैंड होल्डिंग प्रोवाइड की जाती है, पैकेजिंग को लेकर उनकी मदद की जाती है, और आज जो हम लोगों ने एमओयू साइन किए हैं अबीडा के साथ, जिसके माध्यम से ग्लोबल मार्केट को कैसे ये एक्सप्लोर कर सकते हैं।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स शेरपा और विदेश मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा है कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता मानवता प्रथम के सिद्धांत पर आधारित जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। लखनऊ में 18वें ब्रिक्स अकादमिक मंच के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री दलेला ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान समायोजन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। ये बैठक लखनऊ में 23 से 25 अगस्त तक आयोजित की जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार भी साझा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: भारत और रूस के बीच दीर्घकालिक और मजबूत साझेदारी है। अक्टूबर 2000 में भारत रूस रणनीतिक साझेदारी पर घोषणा पर हस्ताक्षर के बाद से भारत रूस संबंधों में राजनीतिक, सुरक्षा, रक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति सहित लगभग सभी क्षेत्रों में सहयोग के उच्च स्तर के साथ एक गुणात्मक रूप से नयापन आया है। रणनीतिक साझेदारी के तहत सहयोग गतिविधियों पर नियमित बातचीत के साथ साथ अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक और आधिकारिक दोनों स्तरों पर कई संस्थागत संवाद आयोजित किए जाते हैं। डॉक्टर जयशंकर कल रूस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर मॉस्को पहुंचे थे। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: ईरान ने अपने मित्र देशों के जहाजों को होर्मुज जलडमरु मध्य से गुजरने की अनुमति दे दी है, पर इसके लिए उन्हें शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रजाई ने बताया कि यह शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और लॉजिस्टिक संबंधी कई सेवाओं को सम्मिलित करेगा। इससे पहले ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रजाई ने कहा था कि होर्मुज जलडमरु मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अमरीका की आर्थिक कार्रवाई का समर्थन करने वाले किसी भी देश के कदम को युद्ध माना जाएगा। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरु मध्य को नए अमेरिकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमेरिकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी ने दोनों पक्षों के बीच सहयोग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। सऊदी अरब में भारत के राजदूत विपुल और जीसीसी के महासचिव जासिम मोहम्मद अल बुदैवी के बीच हुई बैठक में मुक्त व्यापार समझौते एफटीए पर बातचीत भी की गई। फरवरी में भारत और खाड़ी सहयोग परिषद ने मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत का मार्गदर्शन करने वाले संदर्भ की शर्तों पर हस्ताक्षर किए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पटना, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से फोन पर बातचीत कर उन्हें स्थिति की गंभीरता से अवगत कराया है। श्री चौधरी ने कहा है कि फरक्का बैराज के सभी गेट खोलने से गंगा के

0: पानी का प्रवाह सुचारू हो सकता है और बिहार में बाढ़ की स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में कल तक अलग अलग स्थानों पर बहुत तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गांगेय, पश्चिम बंगाल, झारखंड, केरल, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंध्र कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के गांव में आज भूमि धंसने और मकानों में दरारें आने के बाद एहतियात के तौर पर 3 परिवारों के 10 सदस्यों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। आकाशवाणी जम्मू संवाददाता ने बताया है कि चेनाब नदी के किनारे तहसील राजगढ़ के कुल्थी चक्का कुंड इलाके में भूमि धंसने से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच बारिश के कारण रोक दिया गया है। खेल रोके जाने तक भारत ने 8 विकेट पर 475 रन बना लिए हैं। ऋषभ पंत ने इतिहास रचते हुए भारत के लिए विदेशी धरती पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाए। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 278 अंक गिरकर 77,263 और निफ्टी 84 अंक गिरकर 24,168 पर कारोबार कर रहा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत 8 से 9 और देशों के समूहों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने जेपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। गृहमंत्री अमित शाह आज शाम नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। और कोलंबो में दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत की स्थिति मजबूत। ऋषभ पंत ने भारत के लिए विदेशी धरती पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: जीता। अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में। नगमा निगार है राजा मेहंदी अली खान, संगीतकार है मदन मोहन, फिल्म का नाम है वो कौन थी।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए मुकेश की आवाज में। गीतकार हैं जावेद अनवर, संगीत है उषा खन्ना का, फिल्म का नाम है शबनम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम है सखी सहेली, बस कुछ पलों का इंतजार कीजिए।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी सखियों सखाओं सभी श्रोताओं को चंचल वर्मा
2: और मंजू द्विवेदी का नमस्कार। चंचल जी कैसी हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ और इस मंच पर बहुत समय के बाद हम मिल रहे हैं और ये मुलाकात भी बहुत अच्छी है।
2: बिल्कुल, मुलाकातें अच्छी होती है तो अच्छा लगता है कि, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मन में कुछ उथल पुथल चल रही होती है, कुछ मुश्किल हालात होते हैं और कई बार बोलने का मन भी नहीं करता है, लेकिन कहते हैं ना कि शो मस्ट गो ऑन। एक जो जीवन एक मंच की तरह होता है, रंगमंच की तरह होता है, तो यहाँ खेल खेलते रहना पड़ता है, चलते रहना पड़ता है। तो मुश्किलें आएंगी जाएंगी, लेकिन उससे डरे नहीं, हारे नहीं, और अपना काम जो है अपने मन को स्थिर रखते हुए करते रहना पड़ता है।
1: कई बार मुश्किल वक्त में हम लगता है कि रुक जाएं या गिव अप कर देते हैं ना, हार मान लेते हैं, तो वहीं वो थम जाता है। और पानी भी जब तक बहता रहता है वो साफ रहता है, जहां वो रुकता है वहां उसमें काई जम जाती है। तो इसी तरह से हमें हमारे मन के अंदर भी वो नकारात्मकता जो है वो घर करने लगती है। इसे डरना नहीं है और एक समय आने के बाद हमें लगेगा कि ये जो मुश्किल वक्त आया था ये हमें बहुत कुछ सिखा कर गया।
2: बिल्कुल, थोड़े से उपाय होते हैं जो हम कर लें तो ये जो मुश्किल समय होता है आसान हो जाता है। अब वो उपाय क्या है, बातें क्या है, वो तो हम बाद में जब विषय पर बात करेंगे तभी आपको बताएंगे। लेकिन
1: और हमारे सुनने वाले भी तो अपने अनुभव बताएंगे, अपनी बातें हमारे साथ साझा करेंगे, बहुत सारे कमेंट्स उनके आएंगे।
2: हाँ बिल्कुल, तो आज जो विषय है उनके बारे में हम आपको बता दें। सबसे पहले तो कथा सुधा की बात करते हैं। कहानी है छह आने का टिकट,
1: इसका पहला भाग।
2: जी हाँ, आज सुनेंगे आप। देखो, अब इस जमाने में अगर हम छह आने के टिकट की बात करें तो क्या हमें कुछ सत्यता लगती है इसमें?
1: नहीं लगती है। हाँ। और आजकल के जमाने के जो बच्चे हैं, जो अभी बढ़ रहे हैं, जिनकी उम्र 15 से 16 साल होगी, उनको तो आने के बारे में पता भी नहीं होगा कि आना कैसा हुआ करता था। लेकिन इन कहानियों का अस्तित्व, इनका जो मर्म है, इन्हें अगर हम समझेंगे ना तो इनकी सीख कहीं भी कोई पुरानी नहीं है। सिर्फ एक आने का उनको समझ नहीं आएगा कि आना क्या होता है। तो हर मुद्रा होती है एक तरह की, रुपया पैसा जो भी है, ये आना भी पहले चला करते, रत्ती आना दो आना, ये सब वही मुद्राएं हैं।
2: बिल्कुल, और दूसरा जो विषय है, मुश्किल तो आएंगी, डरे नहीं, हारे नहीं, ये विषय है जिस पर हमने अभी थोड़ी सी एक छोटी सी चर्चा भी कर ली है।
1: और हम करते हैं सोमवार के दिन प्रादेशिक व्यंजनों की बात। तो अगस्त के महीने में जिस प्रदेश के व्यंजन की चर्चा हम कर रहे हैं, हमारी सखियां हमसे जुड़ रही हैं इनको लेकर, ये हैं पश्चिम बंगाल की, जो भी बहुत चटपटी, मीठी, खट्टी और बहुत ज्यादा जो कहते हैं कि चर्चित रेसिपीज हैं, उनकी बात।
2: तो आज लाबरा और रसगुल्ला, ये जो दो मिठाइयां हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे।
1: देखिए, यहाँ मैं थोड़ा सा करेक्शन करूंगी कि लाबरा जो है वो मिठाई नहीं है। रसगुल्ला तो मीठी चीज है, लेकिन लाबरा एक ऐसा व्यंजन है जो बहुत सारी चीजों का मिश्रण है, यानी कि सब्जियों का मिश्रण है।
2: अच्छा,
1: तो हर जगह सब्जियां बनाई जाती हैं और मिश्रित सब्जी का जो रूप है वहां उसके अलग अलग नाम होते हैं। तो बंगाल में जब भी मिश्रित सब्जी बनाई जाती है तो उसका नाम है लाबरा। और ये कुछ खास अवसर होते हैं, खास तौर पर नवरात्रि में जो पूजा होती है, दुर्गा पूजा, उस समय और ऐसे खास मौकों पर ये बनाई जाती है। तो हमारी जो सखियां इसके बारे में जानती हैं, इसकी रेसिपी के बारे में जानती हैं, इसके बारे में कुछ भी सुना है, और रसगुल्ला भले वो बंगाल का हो, लेकिन सुनते ही पानी तो सबके मुंह में आ जाता है।
2: बड़ा मुलायम मुलायम सा और रुई के जैसा लगता है और स्पॉन्जी होता है, और जब उसको हाथ से निचोड़ो तो बहुत सारा रस उसमें से टपकता है। अब जिसको जितना मीठा पसंद है उतना रस में डूबा हुआ रसगुल्ला वो खा सकते हैं।

0: हैं और आनंद ले सकते हैं। अगर कम मीठा है तो थोड़ा ज्यादा निचोड़ दीजिए उसे और
1: और भाई
0: फिसा
1: आपको
0: लीजिए।
1: मिठास लेनी है, आपको लगता है कि भाई इन इन चीजों से कहीं ना कहीं सेहत पे बुरा असर पड़ेगा, तो संगीत की मिठास अपने जीवन में घोलिए।
0: बिल्कुल।

0: दिन सावन के,
1: जी
0: तो सचमुच सावन का महीना चल रहा है और ये दिन बड़े सुहावने लगते हैं। रिमझिम
1: बिल्कुल
0: बारिश अच्छी लगती है और उसके बाद जो हरियाली छा जाती है उसका तो कहना ही क्या। और कुछ बातें या कुछ कहानियां ऐसी होती हैं, अलग अलग तरह के विषय होते हैं, उससे भी तो हरियाली छाती है। हमारे कार्यक्रम में देख लो या हमारे इस स्टूडियो में, है ना।
1: जी
0: तो आज कथा सुधा के अंतर्गत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कहानी छह आने का टिकट, इसका पहला भाग। आइए सुनते हैं।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: छह आने का टिकट। पारिवारिक विषय से हटकर ये कहानी एक संपादक और लेखक के संबंधों की कहानी है। कहानी के लेखक भगवती चरण वर्मा ने लेखन और पत्रकारिता के क्षेत्र में ही प्रमुख रूप से कार्य किया है। इसकी झलक इस कहानी में दिखाई देती है। मुख्य पात्र संपादक किशोर जी और कवि और लेखक राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह हैं। कहानीकार ने इन दोनों के व्यक्तित्व का सजीव चित्रण बखूबी किया है। कवि राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह की भाषा शैली हास्य प्रधान है। दिल्लगी पसंद कवि अपने व्यवहार से और बिना किसी को नाराज किए हुए अपने मन का और अपने लाभ का काम करवा लेता है। वाक्पटुता के साथ कवि संपादक से हर फायदा लेता है। संपादक चिढ़ता है लेकिन बच नहीं पाता है, बल्कि हर बार खुद फंस जाता है। कहानी में लेखक को विनोदी स्वभाव का चतुर और बेबाक दर्शाया गया है। पैसे की बचत के लिए तरह तरह के उपाय करना और फिर उनका असफल होना कहानी की रोचकता बढ़ाता है। अंत में लेखक ने कहानी को एक अलग मोड़ दिया है। तो आइए सुनते हैं भगवती चरण वर्मा की लिखी कहानी छह आने का टिकट। आइए सुने इस कहानी का पहला भाग।
4: उस दिन जब मैं दफ्तर पहुंचा तो मैंने एक सज्जन को अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ पाया। ये सज्जन अपने पैर मेज पर रखे हुए गुनगुना रहे थे और कभी कभी एक पेंसिल से अपनी जांघों पर रखे हुए मेरे लेटर पैड पर एक आध लाइन भी लिख देते थे। अब यहां ये बतला देना अनुचित न होगा कि मैंने एक लेटर पैड तीन रंगों में छपाया था और हरेक पन्ने की लागत 2.5 पैसे पड़ी थी। वे मझोले कद के मोटे से आदमी थे, चेहरा किसी कदर गोल मटोल, ऊबड़ खाबड़ और भद्दा। उनकी मूंछें आधी और अच्छी तरह से छंटी हुई थी, आंखें बिल्ली की तरह, बिजली के पंखे की हवा में उनके बाल फहरा रहे थे और ये बतला रहे थे कि ये सज्जन काफी मौज में हैं। खादी का कुर्ता और धोती पहने थे। मेज के पास पड़े हुए तख्त पर मैं बैठ गया, ये समझकर कि दफ्तर के किसी कर्मचारी के ये मुलाकाती होंगे, और सुबह आए हुए पत्रों को उलटने पुलटने लगा। एकाएक इनकी निगाह मुझ पर पड़ी। मैं उस समय कुछ सिकुड़ा हुआ, कुछ सहमा हुआ एक पत्रिका के एक विशेष लेख को पढ़ रहा था, जिसमें हिंदी वालों को ये सूचित किया गया था कि मैं घमंडी हूं, मक्कार हूं, मूर्ख हूं। उन्होंने मुझे कुछ देर तक गौर से देखा, शायद मेरी मुद्रा देखकर उन्हें कुछ दया आई। मुस्कुराते हुए उन्होंने मुझसे पूछा,
5: क्या आप इस दफ्तर में काम करते हैं?
4: बहुत विनय पूर्वक मैंने उत्तर दिया, जी हाँ।
5: और संपादक किशोर जी कब आते हैं?
4: कोई समय तो उनका

0: ठीक नहीं है। क्या आप उनसे मिलना चाहते हैं?
1: जी जी जी, मैं उन्हीं से मिलने आया हूँ। अभी हावड़ा स्टेशन से आ रहा हूँ। वो सामने मेरा असबाब रखा है, मेरी उनकी मित्रता है, सोचा कि मिलाऊं और चला आया। वैसे वो रहते कहाँ हैं?
0: और वास्तव में उनका ट्रंक और बिस्तर वहीं रखा था। उनके असबाब को देखकर मैं घबराया, लेकिन जब उन्होंने मेरे मकान का पता पूछा तो मैं मर्माहत सा हो गया। मैंने कहा, जी रहते तो वे यहां से करीब 10 मील की दूरी पर हैं, लेकिन शायद आजकल वे यहां नहीं हैं। एक हफ्ते बाद उनके लौटने की खबर है।
1: अरे वो यहां नहीं है क्या?
0: नहीं नहीं।
1: ओह खैर, दफ्तर तो है, यही रहूंगा। एक हफ्ता कोई बड़ी बात नहीं है, इंतजार कर लूंगा।
0: ये वार खाली गया। मैं सोच ही रहा था कि अब दूसरा वार कौन सा हो कि मेरे सहकारी श्रीराम ने प्रवेश किया। आते ही उन्होंने कहा,
2: नमस्कार किशोर जी, आज जरा देरी हो गई, क्षमा कीजिएगा।
0: मेरे सहकारी की बात सुनते ही उठकर खड़े हो गए। बड़ी भक्ति के साथ हाथ जोड़कर उन्होंने मुझसे कहा,
1: आप ही किशोर जी हैं
0: जी,
1: आपने तो खूब दिल लगी की। आप तो मुझे जानते ही हैं, राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह, वही जिसने आपको 6 कविताएं भेजी थी, जिस पर आपने लिखा था कि खो गई, और जिस पर मैंने 12 कविताएं भेजी तो आपने लिखा था कि आंधी में उड़ गई।
0: अच्छा।
1: और फिर मैंने 18 कविताएं भेजी थी तो आपने लिखा था कि जिस कंपोजिटर को आपने कविताएं कंपोज करने को दी है उस पर इतना प्रभाव पड़ा कि वो साधु बन गया, कविताएं अपने साथ लेता गया। लिहाजा मैं खुद अपनी 24 कविताएं लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ।
0: अच्छा, तो आप ही राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह हैं? हाँ हाँ हाँ, आपका इस कुटिया में स्वागत है, आपके दर्शनों से मैं कृतार्थ हो गया। श्री राम जी, आपके ठहरने का प्रबंध छेदीलाल जी के धर्मशाला में करा दें। सुनिए, कमरा अच्छा होना चाहिए और एक बात का ध्यान
1: जी, जी जी जी जी, धर्मशाले में ठहरना मैं कभी पसंद नहीं करता
0: जी।
1: चोरों और बदमाशों का वहाँ जमघट रहता है।
0: अच्छा।
1: और मैं इसी दफ्तर के अतिथि गृह में ठहर जाऊंगा।
0: क्या?
1: उससे आपकी सेवा करने का मुझे पूरा अवसर प्राप्त होगा।
0: मेरे दफ्तर में अतिथियों के लिए कमरा है, इसे कैसे पता चला? खैर, 4 दिन बाद सुबह के समय जब मैं सोकर उठा तो मुझे ये देखकर महान आश्चर्य हुआ कि श्री राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह बरामदे में एक कुर्सी पर बैठे हैं और उनके सामने उनका बिस्तरा तथा ट्रंक रखा है।
1: कल रात मैंने ये तय किया कि मुझे आपका संपर्क पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो रहा, क्योंकि दफ्तर में दिन भर आप व्यस्त रहते हैं और आपकी अमृतवाणी मैं नहीं सुन पाता। लिहाजा मेरा आपके घर में आपके साथ ही ठहरना उचित होगा।
0: जी?
1: जी जी जी, इसके साथ ही बाजार का भोजन मुझे रुचिकर नहीं होता, यहाँ घर का भोजन मिलेगा।
0: मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि आदमी मैं मुरव्वत वाला हूँ और आसानी से ना नहीं कह सकता हूँ। लिहाजा अब श्री राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह मेरे निजी अतिथि बनकर मेरे घर पर जम गए। रोज सुबह वो मेरे साथ चाय पीते थे, भोजन करते थे, दफ्तर जाते थे। उनका ट्राम का किराया मुझे ही देना पड़ता था क्योंकि कंडक्टर के पास आते ही वे मेरा मुंह देखने लगते थे। एक दिन दफ्तर पहुंचकर उन्होंने मुझसे कहा,
1: किशोर जी।
0: हाँ बोलिए।
1: आज इच्छा होती है कि कलकत्ता घूम आऊं।

0: बड़ी प्रसन्नता की बात है।
1: जरा आप अपना ट्राम का टिकट दे दीजिए।
0: वो तो मेरे नाम है, आप पकड़े जाएंगे।
1: वाह, आपके दफ्तर के सभी आदमी तो उसका उपयोग करते हैं, मैं क्या मूर्ख हूँ जो पकड़ा जाऊंगा।
0: ठीक है। और उस दिन वो मेरा ट्राम का टिकट ले गए। मुझे अपने आदमियों को ट्राम का किराया देकर ट्राम पर भेजना पड़ा और शाम को जो मैंने हिसाब लगाया तो 10 आने का मुझे नुकसान हुआ। दूसरे दिन उन्होंने फिर ट्राम का टिकट मांगा।
1: किशोर जी, वो ट्राम का टिकट दीजिए ना।
0: राम खिलावन जी, मुझे बड़ा दुख है, ट्राम का टिकट मुझसे मेरे एक मित्र लेकर गए हैं।
1: ओह, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, उनके आने पर चला जाऊंगा।
0: और उस दिन अपने झूठ को छिपाने के लिए दिन भर अपने आदमियों को ट्राम के किरायों के पैसे देकर मुझे भेजना पड़ा। उस दिन 12 आने का नुकसान हुआ। तीसरे दिन उन्होंने फिर ट्राम का टिकट मांगा और मैंने फिर वही बहाना बना दिया। पर उस दिन के लिए मैंने एक स्कीम सोच ली थी। जैसे ही दफ्तर का कोई कर्मचारी बाहर जाने लगा तो मैं उसके साथ दफ्तर के बाहर निकला, बाहर निकलकर एकांत में उसे अपना टिकट दिया और उससे कह दिया कि वो मुझे बुलाकर एकांत में ही टिकट वापस करे। लिहाजा रोज का अब मेरा ये दस्तूर हो गया। इतवार के दिन सुबह मेरे साथ चाय पीते हुए श्री राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह ने मुझसे कहा,
1: किशोर जी,
0: जी
1: आज तो आपकी छुट्टी है।
0: हाँ,
1: तो ऐसा कीजिए ना, मुझे कलकत्ता घुमा दीजिए।
0: अरे राम खिलावन जी, मुझे दुख है कि मुझे आपकी सेवा करने से वंचित रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आज कई लोगों से मिलने जाना है।
2: अरे भाई भीखू,
0: देखो बाबूजी को आज शहर घुमा लाओ, और 2 6-6 आने वाले टिकट ले लेना दिन भर के, और ये लो 1 रुपया। ठीक है?
1: नहीं नहीं, एक ही टिकट लाना, एक ही टिकट, मैं अकेले ही घूम लूंगा।
0: अच्छा ठीक है। उस दिन उन्होंने जो चाय पी तो मैं दंग रह गया। 4 टोस्ट और छटाक भर मक्खन के अलावा उन्होंने

0: मक्खन के अलावा उन्होंने पूड़ियों के साथ 4 लंगड़ा आमों का नाश्ता भी किया। इसके बाद वे 6 आने वाला टिकट जेब में रखकर कलकत्ता घूमने के लिए निकल पड़े। चलते हुए उन्होंने मुझसे कहा था,
1: आप मेरे भोजन की प्रतीक्षा ना कीजिएगा, रात में लौटकर भोजन करूंगा।
0: जी ठीक है। दिन भर मैं कामकाज में व्यस्त रहा। रात को मैं करीब 11 बजे घर लौटा, लेकिन एक अजब सा सन्नाटा मुझे मालूम हुआ। नौकर चाकर सभी मौजूद थे, लेकिन न मुझे भक्तिपूर्वक प्रणाम करने वाला मेरा भक्त था और न लगातार प्रश्नों की झड़ी लगाने वाला, अजीब अजीब शंकाएं उठाने वाला और मेरी सूनी जिंदगी की सुख शांति हरने वाला मेरा अतिथि था, यानी श्री राम खिलावन शरण जी अभी तक लौटे नहीं थे। नौकर मेरा खाना ले आया, लेकिन यकीन दिलाता हूं मुझसे खाना न खाया गया। मैं न जाने क्यों अपने अतिथि के लिए चिंतित हो उठा।

छः आने का टिकट। अभी आप सुन रहे थे भगवती चरण वर्मा की लिखी ये कहानी। आज आप सुन रहे थे इस कहानी का पहला भाग, राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह के साथ क्या हुआ, वो रात को घर क्यों नहीं लौटे, क्या संपादक किशोर जी उन्हें सकुशल घर वापस लाने में सफल होते हैं? जानने के लिए सुनिए छः आने का टिकट, इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग अगले सप्ताह। इसमें भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। राम खेलावन के रूप में जी श्याम, किशोर जी यानी सूत्रधार जयंत पात्रीकर, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक, परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी,

अभी आप सुन रहे थे कहानी छह आने के टिकट का पहला भाग, और आपको इस कहानी का अंत क्या होता है जानने के लिए दूसरा भाग सुनना होगा। फिलहाल सुनते हैं ये गीत।

0: भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं लेकर कार्यक्रम सखी सहेली।
2: तो मुश्किल तो आएंगी, डरे नहीं हारे नहीं, ये जो हमारा विषय है। तो मुश्किल समय आता है तो लगता है सब अटक गया है, पर सच तो ये है कि मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें तराशने आती है। जीत बाहर की नहीं होती, पहले अपने अंदर की जीत होती
1: है। ये बात आपने बहुत सही कही कि बाहर की नहीं, पहले अपने अंदर की, जो अपने अंदर जो द्वंद या संघर्ष चलता है सबसे पहले हमें उसी को जीतना होता है। और बुरा समय मंजू जी जब भी आता है तो जो अपने होने का सिर्फ दिखावा करते हैं ना, वो सबसे पहले हमसे दूर होने की, कटने की या बचने की तरह तरह की कोशिश करते हैं। और ऐसे समय में दोस्तों से मिलना, परिवार के लोगों से बात करना, प्रार्थना करना, ये तमाम जो बातें हैं ना, ये फालतू नहीं बल्कि ये हमें ईंधन का काम करती हैं और हमें बहुत सारी ऊर्जा देती हैं।
2: लेकिन जैसा कि तुमने कहा कि मुश्किल समय आता है तो हमारे अपने ही लोग हमसे बचने और कटने की कोशिश करते हैं, तो हम दोस्तों से कैसे मिले फिर, ये भी तो एक सवाल है। तो खैर, लेकिन सब लोग तो वैसे नहीं होते हैं ना। तो जो भी हमारे जीवन में है, जो हमारे प्यारे से दोस्त हैं, जो हमारे हितेशी हैं, उनसे हमें मिलना चाहिए। और अगर हम कभी किसी मुश्किल में फंस जाते हैं तो हमें अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है, किसी की मदद हम मांग सकते हैं, बशर्ते कोई हमारी मदद करे, है ना। ये कोई कोच या मेंटर या दोस्त या प्रोफेशनल काउंसलर भी हो सकते हैं। जो लोग पहले ऐसी किसी मुश्किल से निकल चुके हैं उनसे भी अपनी मुश्किल से उबर

0: करने का रास्ता पूछ सकते हैं। हालांकि ऐसे लोग हमें कम मिलते हैं जो
1: जी
0: रास्ता दिखाए या फिर हमारी मदद करे, लेकिन अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है तो उन्हें संभाल कर रखिए, और जब अगर ऐसा कोई मौका आए तो आप अपनी जो तकलीफ है उन्हें बताइए, और
1: जी
0: हो सकता है कि वो आपकी तकलीफ को प्यार से सुने और उसको उसका कोई हल निकाले।
1: और जैसा भी आपने कहा ना कि अगर आपको लगता है आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है, तो आप खुद जरूर किसी के लिए ऐसा व्यक्ति बनने का प्रयास कीजिए कि आपसे जब कोई मदद मांगे तो आप उस समय किसी तरह की ना नुकुर ना करें, कोई नखरा ना करें, या अपनी जो कहते हैं ना कि प्राथमिकता दिखाने की कोशिश ना करें। आप उनके लिए अगर काम आएंगे तो हो सकता है कि वो भी आपके लिए जरूर किसी दिन काम आ सकते हैं। और किसी भी तरह की जीत अगर हमें हासिल होती है किसी काम में, तो उसका ये मतलब कतई नहीं होता कि हमारे लिए ये समस्या बड़ी नहीं थी या मुश्किल बड़ी नहीं थी या वो हमेशा के लिए गायब हो गई है। जीत का मतलब है कि हम जो भी मुश्किल हमारे सामने थी उसके सामने हम झुके नहीं, डरे नहीं, उससे घबराए नहीं, और हार तो हमने कतई नहीं मानी। हम हर दिन उठें, गिरे और फिर से उठकर एक दिन खड़े हो जाएं, लेकिन जब हम एक दिन मुड़कर पीछे देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि जिस मुश्किल ने हमें हराने की बहुत कोशिश की थी, आज उसी ने हमें बहुत मजबूत बना दिया
0: ये
1: है।
0: सही बात है कि जब हम मुश्किलों में घिरते हैं, उनसे संघर्ष करते हैं, तो वही चीजें हमारी मजबूती बन जाती है।
1: हाँ
0: और जब भी लगे कि मुश्किल ज्यादा भारी हो रही है, तो एक बात हमेशा याद रखना कि एक एक छोटा कदम ही बड़ी जीत बनता
1: हाँ
0: है। तो मुश्किलों का क्या है, ये तो रोज आती है या जीवन में कई बार आती है, पर इनसे घबराना नहीं है, क्योंकि जब हम घबरा जाते हैं तो मुश्किल और भी बड़ी हो जाती है और हम उसके सामने
1: बहुत
0: छोटे
1: छोटे
0: लगने।
1: से हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने
0: यानी कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब
1: जी।
0: आप मन से जीत जाते हैं तो उस मुश्किल से उबरना भी आपके लिए आसान हो जाता है।
1: और कई बार समस्या भले छोटी सी हो, लेकिन हाय हम क्या करें, ये हो गया वो हो गया, ये कह कह कर ही हम उस समस्या को,
0: और
1: मुश्किल
0: बड़ा
1: को
0: बना
1: बहुत
0: लेते
1: बड़ा
0: हैं,
1: बना
0: और
1: देते हैं।
0: बोलने से तो मुश्किलें हल होंगी भी नहीं, उसका कोई हल निकालना पड़ेगा और उस ओर हमें कदम आगे बढ़ाना
1: तो
0: होगा।
1: हम मुश्किल या समस्या की बात करने की बजाय हर बार समाधान की बात करेंगे, हल निकालने की बात करेंगे ना, तो वो चीजें आसान हो जाती हैं हमारे लिए। और मुश्किलें जो आती हैं वो हालातों से सबक लेने के लिए एक सिग्नल की तरह होती हैं, कोई सजा नहीं होती। बहुत सारी मुश्किलें हमारे जीवन में आती हैं, वो हमें बताती हैं कि हमें कहाँ सीखना है, हमारे आसपास जो भी सिस्टम या जो चीजें चल रही हैं उन्हें किस तरह से बदलने की जरूरत है। अगर हर बार रास्ता बंद होगा तो नया रास्ता कैसे है ये भी हमें ढूंढना होगा, और यही गुण बाद में हमारी ताकत बन जाता है।
0: बिल्कुल। और कई बार हमारा दिमाग किसी खतरे को 10 गुना बड़ा करके दिखाता है ताकि हम सुरक्षित रह सकें, इसलिए पहले जो 5-7 मिनट में जो डर लगता है वो अक्सर असली नहीं होता, इसलिए थोड़ा रुक जाओ, गहरी सांस लो और फिर समाधान खोजना भी आसान होगा। यानी सोचे समझे फिर आगे कदम बढ़ाए। कई बार लोग बहुत हड़बड़ी में आ जाते हैं, थोड़ी सी
1: हाँ
0: मुश्किल सामने दिखी घबरा जाते हैं, हौसला पस्त हो जाता है, और कई लोग तो इतने घबरा जाते हैं कि उनकी तबीयत वहीं की वहीं बिगड़ जाती है। अब अगर ऐसे हालात हो गए तो
1: जी
0: आप मुश्किल का सामना करेंगे ही कैसे?
1: बिल्कुल।
0: इसके लिए अपने मन को मजबूत बनाना बहुत जरूरी हो जाता
1: और
0: है।
1: कई बार जब मन बहुत कमजोर हो जाता है तो स्वास्थ्य समस्याएं हमें घेर लेती, क्योंकि हम पूरी पूरी रात उन चिंताओं में घिरे सोते ही नहीं है। तो जरूरी है कि आप भरपूर नींद लीजिए, 20-25 मिनट थोड़ा सा वॉक करिए, एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन अगर कर सकते हैं तो वो भी कीजिए। अपने जो नियर डियर, आपके जो भी जिनसे आपके प्रेम पूर्ण सौहार्द पूर्ण व्यवहार हैं आपके, चाहे वो पड़ोसी हैं, परिवारजन हैं, दोस्त हैं, उनसे अपने दिल की बात कहिए। और ये चीजें हमारे लिए इमोशनल इम्यून सिस्टम का काम करती हैं, और इनके होने पर हमारी मुश्किलें आती भी हैं तो वो तोड़ती नहीं है। क्योंकि अगर एक कोई ऐसा है हमारे जीवन में जो हमें कह दे कोई नहीं, मैं हूं ना साथ में,
0: बिल्कुल।
1: मैं हूं ना, तो ये जो मैं हूं ना जो छोटा सा शब्द है ये बहुत बड़े हौसले का काम करता
0: बिल्कुल,
1: है।
0: हमें संबल देता है और
1: जी
0: हमें लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, अब कोई है हमारे साथ जो हमारी मदद करेगा।
1: जी
0: और घबराने के बजाय थोड़ी सी जगह अगर आप जिज्ञासु बन जाएं और बूझो कि ये मेरे साथ क्यों हुआ और समझो कि ये मुझे क्या सिखा रहा है, हर मुश्किल के बाद 2 चीजें मिलती है, एक घाव और एक हुनर। तो घाव तो भर जाता है, लेकिन हुनर जो होता है वो जिंदगी भर हमारे साथ रहता है। और
1: बिल्कुल।
0: इसके लिए थोड़ा सा हमें पहले से तैयारी कर, जैसे हम खाना बनाते हैं ना चंचल, तो खाना हम भोजन करते हैं 1 बजे, हम बनाना शुरू करते हैं 12 बजे,
1: जी
0: लेकिन उसकी जो तैयारी होती है वो हम पहले से, सब्जी हम एक दिन पहले लाके रख देते हैं, दालें लाके रख देते हैं,
1: हाँ
0: आटा पहले से, और उसको बनाने के लिए तो आटा मलने का काम हम थोड़े समय पहले कर लेते हैं,
1: बिल्कुल
0: सब्जी काट के रख लेते हैं, तो ये एक तैयारी होती है। इसी तरह एक मानसिक तैयारी भी होती है, तो वो तैयारियां अगर हम पहले से करेंगे तो इन चीजों का असर कम होगा।
1: बिल्कुल। कहने का अर्थ यही है मंजू जी कि मुश्किलें खत्म नहीं होंगी, पर हम हर मुश्किल के साथ

0: थोड़े और शांत, थोड़े और तेज, थोड़े और समझदार, इस तरह से होते जाएंगे। और एक दिन जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो जो मुश्किलें किसी समय हमें बहुत बड़ी पहाड़ लग रही थी ना, वो हमारी सीढ़ियां बन जाती हैं, क्योंकि उन्हीं के जरिए हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और एक गीत सुनते हैं, बाद में हम देखेंगे कि हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी जो बातें लिखी हैं वो क्या हैं।

0: तो भाई खता तो होती है किसी ना किसी की, लेकिन हम उन्हें दोष देते रहेंगे तो नहीं चलेगा ना। अपनी जो मुश्किलें हैं उनके हल हमें खुद निकालने।
1: बिल्कुल, हमारे श्रोता भी बड़े सजग हैं और विषय को जैसे ही वो पढ़ते हैं तो अपने बहुत सारी जो बातें हैं, मन की बातें हैं, वो लिख भेजते हैं, या फिर जो जितना नॉलेज या जो ज्ञान उन्हें है उस बारे में तो वो लिखते हैं। एक हमारे साथी लिख रही है कि जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है, मुश्किलें किसी को बताकर नहीं आती और ये हर इंसान के जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। सकारात्मक दृष्टिकोण, यह पंक्ति हमें सिखाती है कि समस्याओं से भागने के बजाय उनके प्रति अपना नजरिया सकारात्मक रखें। डर हमारी आधी ताकत को खत्म कर देता है, निडर रहकर ही हर मुसीबत का हल निकाला जा सकता है।
0: बहुत सही बात लिखी है इन्होंने। और इसी तरह से हमारे एक अन्य श्रोता ने भी बड़ा अच्छा संदेश भेजा है। उनका कहना है कि डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब मुश्किल समय आता है तो अक्सर लोग भविष्य की चिंता में डर जाते हैं। ये पंक्ति हमें सचेत करती है कि डरने से समस्या बड़ी हो जाती है और सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। साहस ही सफलता की पहली सीढ़ी है। हार तब तक नहीं होती जब तक आप खुद घुटने ना टेक दें। इतिहास गवाह है कि महान वही बना है जिसने अंतिम क्षण तक प्रयास करना नहीं छोड़ा। और ये बहुत सारे जो उदाहरण देकर बता रहे हैं, जो सफल व्यक्ति हैं,
1: बिल्कुल महान व्यक्ति जो हुए हैं, उनके
0: उन्होंने सफलताओं के बाद हार नहीं मानी, इस तरह के मंत्र को अपनाया तभी वो सफल हो सके।
1: हाँ, एक हमारी साथी लिख रहे हैं कि जिंदगी में मुश्किलें आनी तय है लेकिन हमें इनसे घबराना नहीं चाहिए। हर मुश्किल हमें मजबूत बनाती है और आगे बढ़ने का नया रास्ता सिखाती है। हौसला रखें और डटकर मुकाबला करें। जीत हमेशा हिम्मत की होती है। मुश्किलों से लड़ने के लिए धैर्य बहुत बड़ा हथियार होता है। कठिन समय में घबराने के बजाय शांत रहें और सोच समझ कर कदम उठाएं। हर मुसीबत अपने साथ एक नया सबक लेकर आती है। मन में पॉजिटिव विचार रखें, लगातार प्रयास करते रहें। परिवार, मित्र, रिश्तेदार से जरूरत पड़ने पर सलाह या सहायता लें।
0: एक अन्य संदेश में कहा गया है कि हर गलती और बाधा से हमें सीख मिलती है। संघर्ष के बाद मिलने वाली सफलता बहुत मीठी होती है। मुश्किलों से घबराएं नहीं, शांत रहकर सोचें। बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता, लेकिन ये विश्वास रखिए और कदम पीछे न हटाएं, लगातार प्रयास करते रहें।
1: और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि मुश्किल तो आएंगी, डरे नहीं, हारे नहीं, राहें कितनी भी कठिन हो, मंजिल के जिद पर अड़े रहना, तूफानों से आंख मिलाकर बस आगे बढ़ते रहना। मुश्किलें तो महज इम्तिहान है, पर यह परखती है कि अपना इरादा, ये हमें परखती है अपना इरादा न छोड़ना। कितनी मतलब मन को संबल देने वाली बातें हैं ना। और मुश्किल समय में ऐसा ही कोई व्यक्ति चाहिए जो इस तरह की बातें कहकर हमारी हौसला अफजाई करे।
0: कुछ कहानियां हमें हौसला देती हैं, लेकिन जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं वो भी हमें हौसला दे जाती हैं। उन्हीं का उदाहरण देकर हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि भगवान राम तक इन चीजों से, मुश्किलों से बची नहीं। 14 साल उन्होंने वनवास के काटे लेकिन दुख में वो विचलित नहीं हुए।
1: बिल्कुल सही बात है। इन जो कहते हैं ना कि हम अपने इतिहास से तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। चलो अब हम थोड़ी खान पान की बातें करते हैं। जैसा कि हमने बोला कि प्रादेशिक व्यंजन के अंतर्गत आज बंगाली व्यंजन की हम बात करेंगे, तो लाबरा ये एक व्यंजन है और दूसरा है रसगुल्ला। तो सबसे पहले लाबरा के बारे में हम बात करते हैं। एक हमारे साथी ने इसकी विधि हमें लिख करके भेजी है कि सब्जियों को तैयार करें, सभी सब्जियों को धोकर मीडियम या बड़े टुकड़ों में काट लें। कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म करें और बैंगन, कद्दू, कच्चा केला, मूली, परवल और गोभी को अलग अलग हल्का सुनहरा होने तक इसको शेलो फ्राई करके बाहर निकाल लें। फिर उसके बाद तड़का लगाएं, बचे हुए तेल में थोड़ा और सरसों का तेल मिलाएं। तेल गर्म होने पर तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च और पंचफोरन डालें। सब्जियां और मसाले पकाएं। अब कढ़ाई में आलू, शकरकंद, पपीता और अन्य कच्ची सब्जियां डालकर कुछ देर भुनें। इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट और स्वाद के अनुसार नमक मिलाएं। पहले से फ्राई की हुई सब्जियां और पिसा हुआ नारियल डालकर अच्छी तरह से मिलाएं और धीमी आंच पर पकाएं। सब्जियों को ढककर धीमी आंच पर 10 मिनट तक पकने दें। इसके बाद आधा गिलास पानी डालें और डालकर दोबारा ढक लें ताकि हरी सब्जियां पूरी तरह नरम हो जाए। जब सब्जियां पक जाए तो नमी को संतुलित करने के लिए एक चुटकी गेहूं का आटा छिड़ककर मिला लें और गैस बंद कर दें। और अंतिम चरण जो इसका है वो ये है कि अब इसमें तैयार किया हुआ खास भाजा मसाला पाउडर और एक चम्मच शुद्ध घी डालकर अच्छी तरह मिला लें।

0: आपका पारंपरिक बंगाली लाबरा बनकर तैयार है। इसे गर्मा गर्म चावल या भोग की खिचड़ी के साथ परोसे।
1: और कोई भी व्यंजन है वो तभी अच्छा बनता है जब वो संतुलित मात्रा में सारे मसाले डाले जाते हैं, और कार्यक्रम का संतुलन बनाए रखने के लिए गीत जरूरी है।

0: तो हम लबरा और रसगुल्ला के बारे में बात कर रहे थे। रसगुल्ला के बारे में हमारे एक साथी ने ये बात लिखी कि ये भारत की सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय स्पंजी मीठी मिठाई है, जिसकी उत्पत्ति बंगाल और ओडिशा क्षेत्र से मानी जाती है। और इसके इतिहास की अगर बात करें तो आधुनिक स्पंजी रसगुल्ले को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जो है एक जिन व्यक्ति जिन्होंने बनाई सबसे पहले उसके उनका जिक्र उन्होंने किया। और ये भी लिखा है कि इसे ताजे छेने यानी कि जो फाड़ा हुआ जो दूध होता है उससे जो
1: जी
0: पनीर बनाया जाता है उससे ये बनाई जाती है, और चीनी की चाशनी से तैयार किया जाता है। ये गोल हल्के और स्पंजी टेक्सचर वाला तथा रस से भरा होता है और मुंह में जाते ही ये घुल जाता है।
1: हमारे एक अन्य श्रोता ने भी यही बताया कि ताजे दूध को फाड़ कर छेना तैयार किया जाता है, उसे हल्की सी चाशनी में उबाल कर ये बनाया जाता है। स्पंजी नरम और रस से भरपूर होता है। पश्चिम बंगाल के साथ साथ ओडिशा में भी इसका मूल स्थान है ऐसा कहा जाता है। ये
0: हाँ
1: बात हमारे साथी ने लिखकर भेजी है। तो बात हुई ये रसगुल्ले की, और ऐसा ही मीठा मीठा सा एक गाना सुन लेते हैं चलते चलते।

0: ये गीत हमने सुना चंचल, और देखिए चले जाना किसी का दम निकलता है,
1: जरा
0: अभी
1: ठहरो, लेकिन ठहरने का समय नहीं है
0: नहीं
1: ना।
0: है, जाना है लेकिन किसी का दम निकाल के नहीं जाना है हमें। तो आप सब खुश रहिए, मस्त रहिए, और इसी तरह से जो हमारे प्रोग्राम है उसमें रेसिपी वो बताई जाती है वो सुनिए और बनाइए, खाइए और मस्त रहिए। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से हम विदा लेते हैं आप सभी को। मंजू द्विवेदी
1: और चंचल वर्मा का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
1: सखी सहेली।

0: श्रोताओं, प्रत्येक सोमवार सेहतनामा कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं सेहत से जुड़ी समस्याएं और उनके उपचार पर बातचीत। आजकल बालों की समस्याएं आमतौर पर नजर आती हैं। इसी विषय को लेकर आज हमने विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर रचिता धूरत को। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने, तो आइए सुनते हैं बालों की समस्या और देखभाल इस विषय पर डॉक्टर रचिता धूरत से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग।
1: दोस्तों नमस्कार, सेहत नवा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अमूमन हम अपनी त्वचा को लेकर बहुत ज्यादा सजग रहते हैं, बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कई बार अगर कोई समस्याएं हो जाती हैं। और इसी तरह से एक बड़ा हमारा कंसर्न होता है अपने बालों को लेकर। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रचिता धूरत जो डर्मेटोलॉजिस्ट और ट्राइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत विविध भारती के स्टूडियो में।
2: धन्यवाद
1: डॉक्टर साहब। ये इतने से काम नहीं चलता कि मैं आपको डर्मेटोलॉजिस्ट और ट्राइकोलॉजिस्ट बोल दूं। थोड़ा अपने बारे में, अपनी विशेषज्ञता के बारे में जानकारी दीजिए।
2: मेरी बेसिक विशेषज्ञता यह है कि मैं प्रोफेसर हूं और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूं स्किन डिपार्टमेंट एट LTMG मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, और साथ में मेरा प्राइवेट क्लिनिक भी है। और बेसिक डर्मेटोलॉजिस्ट होने के साथ हमारा हेयर और हेयर भी साथ में आता है, जिसमें मैंने बहुत सारे संशोधन किए हैं। और अभी मेरा ग्लोबली नाम हुआ है कि मैं संशोधन करती हूं, पब्लिकेशन करती हूं, तो कुछ नए नए तरीके हम हेयर में स्टडीज करते हैं, तो ग्लोबल कोलैबोरेशन बहुत सारा मैंने किया हुआ है
1: क्या
2: ये माध्यम से।
1: तो ये जो बालों को लेके आपकी रिसर्च है ना, ये हमारे लिए बड़ी उपयोगी है और हम इसी पर बात करते हैं, है ना। जो इस समय में सोशल मीडिया के जमाने में आप ये देखेंगी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्वालिफाइड नहीं है लेकिन सलाह देने की

0: फैक्ट्री बन गए हैं, वो रील्स बनाते हैं और तरह तरह की सलाहें देते हैं कि ये ऐसा कोई मिश्रण बना के बाल में लगा लो, ये तेल इसमें ये चीजें डाल दो, ये कितना खतरनाक लग रहा है, यहां से बातचीत शुरू करते हैं।
1: बहुत ऑफेंसिव क्वेश्चन पूछा है
0: लेकिन बतौर विशेषज्ञ ये आपका हक है कि आप लोगों को जागरूक बनाएं और सावधान करें।
1: अगर पूरे भारत में देखेंगे तो हम डर्मेटोलॉजिस्ट सिर्फ 20 से 22 हजार है, पर ऑनलाइन सोशल मीडिया पर डर्मेटोलॉजिस्ट 1 लाख के ऊपर है तो उस पर से आप समझ
0: ज्यादा है।
1: यस
0: जी जी,
1: तो हर अपने अपने तरीके से सलाह देता है। आप जो सलाह लेता है और अमल करता है उसने सोचना चाहिए कि ये सलाह सही है या गलत है, कि बहुत बार फर्क नहीं समझता है कॉमन लोगों को, तो देने वाला कौन है वो देख के आप वो सलाह को अमल कीजिए। कि बहुत बार जैसे जमाल गोटा का बहुत सारा वायरल वीडियो आया था, एक पूरे एक हॉल में 100 लोग बैठे हैं जो एलोपेशिया के एरियाटिक के शिकार है और जमाल गोटा लगाने के लिए, पर वो नहीं देखते एक पेशेंट को अगर रिस्पांस आया लेकिन 99% पेशेंट को साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो इन्फ्लुएंसर वो आपको 99% के साइड इफेक्ट्स नहीं बताएगा, वो 1% वाला रिजल्ट आ जाएगा वो दिखाएगा। जमाल गोटा एक इरिटेंट है, इरिटेंट के वजह से कभी हेयर ग्रोथ हो सकती है, पर इसका जरूरी नहीं कि सेफ्टी हम लोग कॉम्प्रोमाइज करें,
0: उसको जनरलाइज नहीं कर सकते,
1: उसको जनरलाइज नहीं कर सकते।
0: तो इसमें बॉटम लाइन ये है कि इस तरह की रील्स आप देखते जरूर हैं,
1: हाँ,
0: पर थोड़ा संभाल के।
1: बिल्कुल, थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा
0: संभाल बहुत संभाल के बिल्कुल, क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि वो जो आप स्क्रॉलिंग करते चले जाते हो तो हाँ, आपका ध्यान आता है अच्छा विटामिन D3 कम है तो ये खाना चाहिए, ठीक है वो ऑर्डर कर लेते हैं, ये खा लेते हैं।
1: सिंपल एग्जांपल अगर बोलेंगे तो मुहासे जब होते हैं
0: जी,
1: आप रील्स में दिखाएंगे कि गार्लिक लगाइए, वो गार्लिक बहुत इरिटेंट है, तो ये इरिटेंट के वजह से स्किन डैमेज परमानेंटली हो सकती है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है।
0: परमानेंटली डैमेज होने का मतलब है नुकसान जो बहुत बड़ा हो जाएगा।
1: यस, काफी बड़ा हो जाएगा
0: जी। आज हम बातें जो हैं वो बालों के बारे में करने वाले हैं, लेकिन आपने कहा ना कि ये जरा थोड़ा खतरनाक सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि विविध भारती जो है वो मनोरंजन के साथ साथ जागरूकता का काम जरूरी तौर पर करता है, तो हमारा ये फर्ज है कि हम लोगों को बताएं कि इस तरह के नुस्खे और टोटके नहीं आजमाएं, ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। यहां हम एक गाने के लिए रुकते हैं और चूंकि बात बालों की हो रही है तो यहां जाहिर है कि आपको ऐसे गानों की बात करनी है जो बालों से जुड़े हैं, तो वो काम आप करेंगी और थोड़ा थोड़ा मैं भी कर दूंगा।
1: बिल्कुल
0: ना, तो बताइए कि पहला गाना कौन सा होना चाहिए, मैं कर दूं?
1: आप कर दीजिए
0: हम सब उस्ताद हैं, फिल्म का गाना है क्या तेरी जुल्फे हैं।
1: हाँ।
0: इस गाने से शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम।

0: अच्छा बताइए कि इतनी सालों की प्रैक्टिस के बाद अब आज के जमाने में बालों की जो सबसे बड़ी समस्या आप क्या देख रही हैं?
1: हेयर फॉल, हेयर शेडिंग। आजकल की जो जनरेशन है उनका पूरा लाइफस्टाइल ही चेंज है। मतलब देर रात खाना, देर रात सोना, नेटफ्लिक्स बहुत अच्छे से मूवी दिखाता है, लोग रात को 2 बजे सोते हैं, सब लाइफस्टाइल में गड़बड़ है। और हेयर फॉल इतनी होती है ना, वो इतने बिजी रहते हैं कि बहुत टाइम तक डॉक्टर के पास जाना उनको मुमकिन नहीं होता है। और जब बाल में टक्कल बालनेस दिखाई देता है तभी उनको लगता है अभी डॉक्टर के पास जाना है।
0: जब एकदम
1: यस
0: एक्सट्रीम हो जाता है
1: तो बालनेस कभी दिखाई देता है। 50% ऑफ आपके हेयर जब शेड हो जाते हैं तभी बालनेस दिखाई देता है।
0: ओहो, यानी आधी ट्रेन गुजर गई।
1: बिल्कुल। और इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब ये आपको बालनेस जब दिखाई देता है तो मेडिकल लाइन थेरेपी से 100% रिकवरी की चांसेस कम हो जाते हैं। तो जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट करें उतना जल्दी बेहतर रहता है।
0: आपने नई पीढ़ी की बात की है सबसे पहले, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जिसे मैंने नोट किया। मुझे ये बताइए कि ये जो आपने कहा कि जितनी जल्दी हो सके, अमूमन नॉर्मली भी हेयर फॉल होता है तो ये जो अलार्मिंग हेयर फॉल है उसकी पहचान क्या है?
1: तो अलार्मिंग हेयर फॉल औरत में बताती हूँ तो रफली 30-40-50 हेयर्स अगर रोज जाते हैं, एवरेजली ओकेशनली जाना चाहिए, रोज नहीं बोल सकती हूँ, ओकेशनली जाते हैं तो ठीक है। लेकिन उससे ज्यादा अगर जा रहे हैं, अभी आप टेक्स्ट बुक में देखोगे और एडवर्टाइजमेंट में देखोगे तो 100 अप टू 100 हेयर इज नॉर्मल कहा जाता है। मैं नहीं मानती हूँ
0: जी,
1: क्योंकि 100 हेयर आप रोज अगर जा रहे हैं आपके तो महीने के कितने हो गए? काफी हो गए।
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल।
0: गणित की परीक्षा मत लीजिए मेरी।

0: के कितने हो गए, तो 100 हेयर नहीं पकड़ के चलिए,
1: 40-50
0: लगातार जा रहे हैं और उससे ज्यादा जा रहे हैं, तो फिर अब नॉर्मल समझना चाहिए, आपका स्काल्प का एनालिसिस करवा के लेना चाहिए कि क्यों जा रहा है।
1: और पुरुषों में,
0: पुरुषों में हेयर काउंट नहीं समझ में आता क्योंकि वो बाल छोटे होते हैं, पर जब आप हाथों में शैम्पू करते हो तभी लगता है आपके हाथों में 10-12 बाल आ गए जो पहले नहीं आते थे, कुछ दिन तक आ रहे हैं और महीनों तक आ रहे हैं, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, आ ही रहे हाथों में शैम्पू करने के टाइम पर, तो एबनॉर्मल है, इसको नॉर्मल नहीं कहा जाता है
1: जी।
0: तो ये पहली कुछ साइंस है कि जो आपको बताता है कि आपका हेयर में कुछ एनर्जी कम है या आपको कोई बीमारी है, जैसे एंड्रोजेनिक एलोपेशिया वेरी बहुत कॉमन चीज है, ये है या नहीं वो हम स्कोप के माध्यम से देखते हैं।
1: जिसको आपने टर्म यूज की,
0: हाँ,
1: ये क्या है?
0: ये ट्राइकोस्कोप करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हेयर के एनालिसिस करता है, मैग्नीफाई करता है कि उसमें थिन हेयर परसेंटेज कितने हैं, वो देखा जाता है
1: ब्लू कलर की रोशनी में।
0: नहीं, ब्लू कलर की रोशनी नहीं है, पोलराइज लाइट होती है उसमें, तो उसमें थिन हेयर परसेंटेज कितने हैं वो देखे जाते हैं, उससे अनुमान लगाते हैं कि ये आपके जो बालों की पोत है, मोटाई है, इंडिविजुअल बालों की मोटाई, वो घटते जा रही है या नहीं जा रही है। दैट इज वन ऑफ द साइंस ऑफ एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। तो ये जो इनिशियल साइन होता है, बहुत बार बहुत सारे क्लिनिशियन भी मिस कर पाते हैं, और इसके वजह से हेयर फॉल कंटिन्यू। सिंपल चीज है, एक आपने को बकेट दिया है, पानी भरने को बोला है और बकेट में मैंने होल किया है, बकेट कभी भरेंगे नहीं,
1: बिल्कुल,
0: तो वैसे ही आपके बाल शेड होते रहेंगे, होते रहेंगे, आपका आहिस्ता आहिस्ता गंजापन आना है, तो वो आहिस्ता जो आना है वो प्रमाण 1 महीना 2 महीना 6 महीना साल, डिपेंड्स अपन आपका शेडिंग कितना है।
1: जी बिल्कुल,
0: जितना शेडिंग फास्ट उतना जल्दी गंजापन।
1: ये समझने की बात है,
0: ये समझने की बात है, तो इसके लिए वो रोकना जरूरी है। और ये हमेशा मैं पेशेंट्स को बोलती हूं कि आपका शेडिंग जो है, हेयर शेडिंग, वो रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है।
1: अब आपने शुरुआत में एक बात बोली कि एक होते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट और एक होते हैं ट्राइकोलॉजिस्ट, तो वो इस तरह के बाल झड़ रहे हैं तो ट्राइकोलॉजिस्ट के पास जाना है ढूंढ के।
0: डर्मेटोलॉजिस्ट को एक सब स्पेशलिटी है ट्राइकोलॉजिस्ट,
1: ओके,
0: एक डिग्री नहीं है।
1: जी जी,
0: हाँ। अभी क्या होता है कि बाकी के एलोपैथीज लोग भी खुद को ट्राइकोलॉजिस्ट मानते हैं,
1: ओके,
0: तो उस पर मैं भाष्य नहीं करना चाहती हूं, लेकिन डर्मेटोलॉजिस्ट को पूरा नॉलेज होता है हेयर के बारे में, हेयर के रूट्स के बारे में, हेयर के जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल नॉलेज होता है। तो ट्राइकोलॉजिस्ट बोलोगे, प्योर ट्राइकोलॉजिस्ट मे नॉट बी द आइडियल डॉक्टर फॉर योर हेयर, यू हैव टू सी दैट उनको बैकग्राउंड डर्मेटोलॉजिस्ट का है या नहीं, बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट है या नहीं।
1: जी जी जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली है। यहां हम एक गाने के लिए रुकते हैं।

0: मजेदार ये है कि हम बातें बालों की कर रहे हैं डॉक्टर साहब, और गाने भी जो हैं वो बालों से जुड़े सुनवाते चले जा रहे हैं। आपने कहा कि ये प्रमाण अगर है बालों के झड़ने का तो ये खतरे की घंटी है, लेकिन हमने बात न्यू जनरेशन से शुरू की तो मुझे लगता है कि एक रेखा और खींचते हैं 40 से ऊपर और 40 के नीचे।
1: बिल्कुल।
0: तो 40 से ऊपर वालों के लिए क्या दायरा है, यही चीज लागू होती है या कुछ और मामला है?
1: वो उसमें उनका जेनेटिक मेकअप लागू होता है, जो 40 के ऊपर के जो बाल झड़ते हैं या बाल्डनेस आता है उनमें जेनेटिक एक पोर्शन है कि जीन्स के वजह से ये कॉमन चीजें, बाल्डनेस कॉमन चीजें होती है। दूसरे बहुत सारे कारण होते हैं कि उनमें हेयर फॉल क्यों होता है। तो 40 के बाद हम बीपी मेडिसिन लेते हैं, डायबिटीज मेडिसिन लेते हैं, या कुछ अलग बीमारी आ जाती है तो बीमारी के वजह से हेयर फॉल होता है, या अंडरलाइन आपको मैलिग्नेंसी हो रही है तभी भी बाल झड़ना चालू हो जाता है। तो बहुत सारे अलग अलग कारण के विश्लेषण करने पड़ते हैं कि क्यों बाल झड़ रहे हैं।
0: और अगर आप विशेषज्ञ के पास जाते हैं तो वो आपके तरह तरह के टेस्ट करवा के वो पता लगाते हैं किसी विटामिन की कमी है, मतलब पोषण की कमी भी हो सकती है।
1: बहुत कम लोगों में पोषण की कमी दिखाई देती है, खास करके महिलाओं में।
0: जी,
1: आयरन की कमी होती है, हीमोग्लोबिन कम होता है, बी12 कम

0: में होता है, उनको थायराइड के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ये सारी चीजें महिलाओं में ज्यादा दिखाई देती है। पुरुषों में अगर आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है या गट का कुछ इश्यू है तो विटामिन डिफिशियंसी के चांस लग
1: और उसका असर बालों पर जाता है।
0: बिल्कुल
1: जी, महिलाओं की बात आपने की तो महिलाओं में हार्मोन्स एक बड़ी भूमिका अलग अलग उम्र में निभाते हैं, और एक उम्र

0: उम्र में निभाते हैं, और एक उम्र में जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और बाल उसके वजह से भी झड़ते हैं, ये क्या मामला है ये बताएं।
1: सो महिलाओं में पीसीओडी नाम सुना है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कॉमन है, साथ में ओबेसिटी भी कॉमन है, तो यहाँ हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। अभी तो 20-30 इयर्स को भी पीसीओडी हो जाता है, ओबेसिटी तो कॉमन हो गई है
0: जी,
1: क्योंकि चलना नहीं है, गाड़ी में बैठो, रिक्शा करो, मोटरसाइकिल जो भी है। पहले के जमाने में हम लोग स्टेशन को जाने के चल के जाते थे, रिक्शा के पैसे बचाते थे।
0: बढ़िया
1: तो हमारा चलना हो जाता था, बात बात पर रिक्शा मंगा लिया और चले गए। वो सब चीजें अभी बहुत बदल गई है। तो पीसीओडी और ओबेसिटी हैंड इन हैंड होता है, और इसके वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो के उसका असर हेयर बालों पर गिरता है और हेयर फॉल होता है। तो ये सारी चीजें पूरी देखनी होती है कि पीसीओडी है, ओबेसिटी है, इंसुलिन रेजिस्टेंट नाम भी आपने सुना होगा।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल,
1: है ना?
0: बिल्कुल।
1: पहले के जमाने में था क्या इंसुलिन रेजिस्टेंस?
0: नहीं,
1: 40 साल के 50 साल के लोगों को होता था, अभी उसके कम उम्र वाले लोगों को भी इंसुलिन रेजिस्टेंट आपने देखा होगा। ये पेशेंट को इंसुलिन रेजिस्टेंट डायग्नोस किया, मेरे दोस्त को इंसुलिन रेजिस्टेंट डायग्नोस किया।
0: जी ये बहुत आज के जमाने की चीज।
1: यस, और ऑनलाइन खाना, घर का खाना नहीं है, क्या पता है आप ऑनलाइन जो खा रहे हो वो कितनी बार तेल, वो ही गरम किया हुआ तेल है या नहीं है, पता नहीं।
0: जी,
1: जो स्वाद में चटपटा है पर पोषक नहीं है।
0: एक तरह से आप जो हैं वो खानपान को लेकर भी लोगों को सजग बना रही हैं कि भाई अगर खानपान ठीक नहीं किया तो इसका
1: सभी
0: असर।
1: चीजें, हर एक का रोल है आपके हेयर ग्रोथ करने में और हेयर फॉल करने में।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। एक गाने के लिए रुकते हैं।

0: जो लड़कियां एक उम्र पर पहुंच रही हैं और युवावस्था की तरफ बढ़ रही हैं, उनके बाल झड़ने की समस्या बहुत होती है, तो वो क्या रीठा शीका काई पता नहीं क्या क्या करती हैं, या फिर एक उम्र तक महिलाएं पहुंचती हैं मेनोपॉज के दौरान, उसके बाद बाल झड़ते हैं, हाँ। और वो तरह तरह की चीजों दादी नानी के नुस्खे अपनाने लगती हैं।
1: दोनों चीजें अलग अलग है। एक तो मेनोपॉज के टाइम पर जो हार्मोनल डिक्लाइन होता है, हमारा एस्ट्रोजन कम हो जाता है, बॉडी में एस्ट्रोजन कम हो जाता है, तो प्रोटेक्शन रहता है अपने हेयर के लिए, वो कम हो जाता है, वहां हेयर फॉल होता है।
0: उसको कैसे टाला जा सकता है?
1: उसके लिए मेडिसिन होते हैं अलग टाइप के।
0: ओके,
1: मतलब वो मेडिसिन अलग है, आप हार्मोन थेरेपी तो नहीं ले सकते बिकॉज इट्स नॉट एडवाइजेबल टू टेक हार्मोन थेरेपी। आप एस्ट्रोजन कंटेनिंग सप्लीमेंट्स नहीं बोलो, खाना फूड जो होते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन उससे हेयर फॉल नहीं रोकेगा।
0: ओके,
1: तो उसके लिए न्यूट्रास्यूटिकल्स अलग से है, पर जो यंग जो होते हैं, जो युवा अवस्था में जा रहे हैं और वहां उनको सडनली हेयर फॉल शुरू होता है, ये बहुत कॉमन है, क्योंकि ये हार्मोनल चेंज हो गया सडन। अगर ये हार्मोनल चेंज की वजह से हेयर फॉल होता है और बॉडी नॉर्मली स्टेबिलाइज नहीं करती है हेयर फॉल, तो आपको जरूरी है कि आपको ट्रीटमेंट चाहिए, वो समझना जरूरी है। बहुत बार क्या होता है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि ये तो हाँ नॉर्मल है,
0: इस उम्र में तो सबका होता, सबका, हमारा भी हुआ था,
1: बिल्कुल यही डायलॉग होता है।
0: जी जी जी, तो इसको कैजुअली नहीं,
1: हाँ, इसको कैजुअली नहीं लेना, आपको असेस करना है आपका हेयर शेडिंग कैसा है। वही जो मैंने पहले बताया,
0: एक बार फिर बता दीजिए, किसी ने अभी ज्वाइन किया हो तो उसको पता चल जाए, महिलाओं में 30 से 40 बाल,
1: या 30 से 40 के ऊपर नहीं होने चाहिए। अगर रोज हो रहे हैं 30 40 के ऊपर, रोज एक हाथ बार हुआ तो ठीक है, पर रोज हो रहे हैं तो ये अलार्मिंग साइन है कि आपको दिखाना जरूर है डॉक्टर को।
0: बिल्कुल। अच्छा, ये जो घरेलू नुस्खे की बात हुई जो दादी नानी के जमाने से चले आ रहे हैं, इनमें से कौन से नुस्खे जो हैं वो ठीक ठाक हैं और कौन से गड़बड़ हैं? ये जो मेहंदी रीठा शीका काई चाय पत्ती जाने क्या क्या, ये चलता रहता है ना घरों में?
1: मेहंदी रीठा शीका काई ये हेयर के टेक्सचर को थोड़ा बहुत इम्प्रूव करेगा, हेयर फॉल को नहीं रुकाएगा। ना आपका अनियन जूस, प्याज का जूस, लोग सुनते हैं अनियन जूस लगाने से इम्प्रूवमेंट होती है, अनियन जूस के वजह से इरिटेशन होके इनफैक्ट बाल ज्यादा गिरना चालू हो सकते हैं,
0: उल्टा हो जाएगा।
1: इसमें एक मैं बताती हूँ, जो विटामिन ई भी लगाते हैं डाल के और उनका इम्प्रूवमेंट होता है। बहुत बार ये प्लेसिबो जैसे भी काम करते हैं। अगर मैंने आपको ये बॉटल दी और आपको बताया कि ये पानी है ना, ये पानी पीने से आपके बाल एकदम घने हो जाएंगे और आप मुझमें बहुत बिलीव कर रहे हो, ओके, आपको इफेक्ट आना, क्योंकि आपकी बॉडी चाहती है आपके बाल रोके, आपकी बॉडी की कैपेसिटी रहती है कि कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल करे।
0: तो ये प्लेसिबो रिस्पॉन्स क्या लगेगा?
1: यस, सो आपको देखना है कि साइंटिफिक बैकग्राउंड क्या है हर मॉलिक्यूल का।
0: बिल्कुल।
1: तो ये तो हम नहीं देखते, हम देखते हैं कि मल्टीविटामिन्स मैंने चालू किया या विटामिन ई लगाना चालू किया, अनियन जूस लगाना चालू किया, एंड माय माइंड सेज दैट आई एम गोइंग टू इम्प्रूव, ऑल इज वेल।
0: जी,
1: यू विल इम्प्रूव फॉर टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम।
0: ओके, उसके बाद सच्चाई उजागर होने लगी। मुझे लगता है यहाँ पर एक गाने की बारी है।

0: मुझे लगता है कि महिलाओं के हेयर फॉल की जो बात है उसके एक बड़े हिस्से को कवर किया हमने, लेकिन आपको क्या लगता है कि महिलाओं के बालों की देखभाल को लेकर और कौन सी बातें आप कहना चाहती हैं?
1: बहुत सारी चीजें जो होती हैं जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया कि क्या कारण होते हैं हेयर फॉल के, बहुत सारे कारण होते हैं। दूसरी कॉमन चीज जो राउंड राउंड पैचेस गिरते हैं बालों में, जिसको एलोपेशिया एरियाटा कहा जाता है, वो एक ऑटोइम्यून बीमारी है, उसकी ट्रीटमेंट टोटली अलग है।
0: ओके, तो वो पहचानना जरूरी है कि बाल गोल गोल होके गिर रहे हैं।
1: तो वो गोल गोल होके गिरते हैं, कभी सडनली हेयर शेडिंग हो जाता है, कभी गोली खाने से इतना शेडिंग हो जाता है पता ही नहीं चलता कि आपको इतना जल्दी ज्यादा शेडिंग क्यों हुआ है।
0: कई बार कुछ लोगों को बुखार उखार होता है और वो दवाएं खाने के बाद,
1: तो वो अभी तक हमने जो डिस्कशन किया है वो बालनेस से अलग है।
0: यस,
1: तो हिस्ट्री में हमको देखना है कि 2 महीने पहले 3 महीने पहले डेंगू हुआ है, टाइफाइड हुआ है, या कोई भी वायरल बीमारी हुई है। पेशेंट भूल जाते हैं, कॉमन लोग हैं, हम भी कॉमन हैं, हम लोग को याद नहीं रहता कि 2 महीने पहले क्या हुआ था। हेयर पर उसका असर 2-3 महीने के बाद आता है और हेयर शेडिंग होती है।
0: ओहो हो, यानी आपको बुखार हुआ 2 महीने बाद बाल झड़ेंगे?
1: यस, आपको याद रहेगा 2 महीने पहले क्या हुआ था, 2 महीने पहले आपने 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी टैबलेट्स खाई थी, याद नहीं रहता है।
0: जी जी जी,
1: तो वो याद करवा करवा के हमको हिस्ट्री लेनी होती है।
0: ओहो, ये तो बड़ा पेचीदा मामला है।
1: यस, तो अगर जब एक साइन नहीं दिखता है तो दूसरे साइंस की तरफ हमको बढ़ना पड़ता है कि क्या हो सकता है, क्या रीजन है।
0: तो ये केवल बुखार में जो एंटीबायोटिक या एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं खाने से होता है, या अलग अलग बीमारियों की दवाएं इस पर असर करती हैं? और
1: सभी बीमारी का नहीं करती है, लेकिन मेन जो है फीवर हुआ है, फीवर की वजह से भी हेयर शेडिंग हो सकती होती है। एंटीबायोटिक भले ही आपने 5 ही दिन लिए, लेकिन फीवर हुआ है उसका असर आपका मेटाबॉलिक जो होता है असर, वो बालों पर गिरता है। इसमें 2 चीज मैं कहना चाहूंगी, कुछ लोगों को थोड़ा हेयर फॉल होता है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है। जब बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है आप समझ सकते हैं कि आपकी पोनी छोटी होती जाने वाली है। और वो पोनी जब वॉल्यूम कम हो जाती है, जरूरी नहीं कि आपके वॉल्यूम वापस रिगेन हुए। सिंपल लॉजिक ये है, आपके जब नए बाल आएंगे उनकी ग्रोथ की रेट है 1 सेंटीमीटर पर मंथ।
0: ओहो,

0: तो मुझे शोल्डर लेंथ के लिए आने के लिए कितने साल लगेंगे, आप काउंट करेंगे?
1: बिल्कुल नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा। एक महीने में 30 सेंटीमीटर, इसके आगे काउंट नहीं करना मुझे।
0: नहीं नहीं, 1 सेंटीमीटर इन अ मंथ।
1: इन अ मंथ है?
0: इन मंथ।
1: ओहो हो,
0: इन अ मंथ।
1: तो ये 12 सेंटीमीटर हो गए एक साल।
0: 12 सेंटीमीटर साल में।
1: हाँ तो 10 साल में
0: तो आप करिए। तो
1: नहीं नहीं, ये हिसाब लगाइए तो मतलब बढ़ेंगे ही नहीं ये बाल।
0: हाँ, तो वॉल्यूम नहीं बढ़ती है।
1: ओहो हो,
0: आपका टकलापन ढक जाएगा क्योंकि बाल नए आ रहे हैं।
1: लेकिन वो थिन रहेंगे।
0: वो थिन, थिकनेस बढ़ने के लिए 7-8 साल लग जाएंगे। तो जितना बाल आपके गए हैं, मतलब आपकी वॉल्यूम एकदम 50% हो गई है, आपकी वॉल्यूम वो 50% से 100 और 80% में होने में कितने साल लगेंगे?
1: जी
0: तो वही कहना है वापस, शेडिंग को पहले रोकिए।
1: हाँ, मतलब समय पर सावधान हो जाइए।
0: यस, बिल्कुल,
1: बहुत सही बात है। मैं भी सावधान हो गया। यहाँ पर एक गाने की बारी है, नौनिहाल फिल्म का गाना सुनते हैं, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा।
0: यस,
1: बढ़िया गाना कैफी आजमी का है। तो
0: जुल्फ अच्छी होनी चाहिए।
1: हाँ, जुल्फ अच्छी होनी चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है।

0: धुरत, और आप बता रही हैं कि कैसे अलग अलग चीजों पर ध्यान देना होता है कि दो महीने पहले बुखार तो नहीं आया था, हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है, उम्र का कौन सा मुकाम चल रहा है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं इसमें, टेंशन, मॉडर्न लाइफस्टाइल, वो सब भी काम करते हैं।
1: डेली जो टेंशन होती है सभी को होती है
0: जी,
1: अभी डेली टेंशन से आप कितने डिस्टर्ब हो वो जरूरी है। आप डेली टेंशन ले रहे हो और यू आर एंजॉइंग योर वर्क,
0: मानसिक अवस्था क्या है?
1: हाँ, आपकी मानसिक अवस्था बिगड़ रही है डेली टेंशन से तो उसका असर आपके बालों पर भी होगा। अभी सभी डॉक्टर्स को टेंशन होती है पर सभी डॉक्टर गंजे नहीं है ना।
0: नहीं, आपके बाल तो कितने अच्छे हैं। जी,
1: तो ये देखना जरूरी है कि आपको डेली टेंशन से आप मानसिक अवस्था कितनी बिगड़ रही है, उसके साथ आपका खान पीन, मतलब आप खाना स्किप कर रहे हैं कि नहीं। बहुत सारे लोग, इतना काम रहता है, इतने कॉल्स पर रहते हैं, सुबह का नाश्ता खाना भूल जाते हैं, दोपहर का खाना नहीं खाते हैं और सीधा रात को ही खाते हैं। जो हम बोलते हैं रात को कम खाइए
0: और यहाँ तो
1: उल्टा
0: दिन भर का खाना रात को हो रहा है।
1: तो ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये कितने सालों से चलने वाला प्रोसेस है जो आपके गट को खराब करता है। फिर आप बीच में क्या एसिडिटी होती है तो आप एक तो एसिडिटी के टैबलेट ले लेते हो, एसिडिटी के वजह से गट का इंटरनल फ्लोरा जो होता है लाइनिंग वो खराब होने चालू हो जाती है।
0: यस यस बिल्कुल।
1: हमारे टाइम पर या जो हमारे परदादा ने सुबह में ब्रेकफास्ट, दोपहर में लंच और शाम को 6-7 बजे डिनर कर लिया, 10 बजे या 9 बजे सो गए, ये जो रिदम है जो हमारी बॉडी है और जो पृथ्वी घूम रही है इसके साथ, जब ये रिसर्च किया हुआ है इसके साथ हमारी बॉडी और अर्थ के जो रिवोल्यूशन के साथ जब मैच होती है, जिसको हम सर्कैडियन रिदम बोलते हैं, उसके अनुसार हमारे बॉडी में हार्मोन रिलीज होते हैं। जो कॉर्टिसोल लेवल सुबह में रिलीज होगा, दूसरा हार्मोन ये टाइम पर रिलीज होगा, अगर हम उसको संतुलन ही बिगाड़ दे तो क्या होगा।
0: बिल्कुल।
1: और ये समस्या पहले हम बड़े लोगों में देखते थे 30 या 35 सालों के ऊपर, पर कम उम्र में अभी देखना मिल रहा है। 20 साल के नीचे के बच्चों को कॉमन बाल्डनेस, टकलापन आ रहा है।
0: चिंता की बात है।
1: चिंता की बात, बहुत चिंता की बात है। मतलब अगर मैं सोचूं कि आज 20 साल का ये लड़का है जिसको बाल्डनेस आया है, मॉडरेट ग्रेड है, 10 साल में क्या होगा उसका?
0: जी
1: सोचिए, पूरा गंजा हो सकता है।
0: अब मुझे लगता है एक गाना करते हैं।

0: अच्छा, कुछ बुरी आदतें लाइफस्टाइल की, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, इन सब का असर बालों पर पड़ता है?
1: या स्मोकिंग का काफी असर गिरता है
0: जी, और आजकल ये एक तरह से स्टेटस सिंबल जैसा युवाओं के बीच बनता चला जा रहा है, तो उसका असर आपने देखा, किस हद तक देखा है?
1: बहुत, मतलब सिर्फ बालों पर ही नहीं, पूरे शरीर पर असर गिरता है। स्मोकिंग ऑलवेज इज अच्छी नहीं है, कौन से स्टेट में अच्छी रहेगी वो तो
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: किसी कारण से अच्छी नहीं है, ना इवन पैसिव स्मोकिंग। कोई मुझे बोलता है हाँ मैं स्मोकिंग नहीं करता, लेकिन उसके पूरे फ्रेंड सर्कल स्मोकिंग करते रहते हैं, तो पैसिव स्मोकर एज बैड एज योर एक्टिव स्मोकर।
0: बिल्कुल, अभी हाल की एक रिसर्च है जो बताती है कि 30% या कुछ, वो मेरे एक साइंस वाले कार्यक्रम में हमने ये रिपोर्ट शामिल की थी कि पैसिव स्मोकिंग इज टू डेंजरस, है ना, तो उससे भी बचना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: अच्छा, अब ये बताइए कि विज्ञापनों में कई बार अखबारों में या टेलीविजन पर हम या सोशल मीडिया पर जो विज्ञापन देखते हैं उसमें ये कहा जाता है कि गारंटी है, एक जगह एक गंजा आदमी दिखाते हैं, दूसरी तरफ बाल एकदम पूरे, ये जो गारंटी है ये एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा करती है कि कोई टेंशन नहीं है, बाल तो वापस आ ही जाते हैं, मतलब कोई ना कोई इलाज तो मिल ही जाता है, ये कितना बड़ा भ्रम है?
1: बहुत बड़ा भ्रम है
0: जी।
1: आपकी लाइफ की गारंटी कोई नहीं दे सकता है
0: जी,
1: तो बालों की गारंटी कैसे दे सकता है? हर एक आदमी अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं। अगर एग्जाम्पल देना चाहूं तो आप कोरोना टाइम में, पैंडेमिक में देखिए, वायरस वही था, सेम वायरस था, जिसके कैरेक्टरिस्टिक सेम थे। एक फैमिली में एक की डेथ होती है, दूसरे को थोड़े माइल्ड सिम्टम्स होते हैं और तीसरे को कुछ भी नहीं होता है। क्यों?
0: बिल्कुल, क्योंकि हर व्यक्ति अलग है,
1: पर सेम जीन से बंधे हुए हैं
0: जी,
1: फिर भी अलग अलग बिहेव कर रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो यही है, हर एक की बॉडी अलग अलग होती है, भले ही आपके जीन सेम है, पेरेंट्स से है, एक पेरेंट्स को काफी तकलीफ हुई है, एक भाई को कुछ भी नहीं हुआ, तीसरा भाई हॉस्पिटल में एडमिट है।
0: तो ये समझने की जरूरत है।
1: तो इसके लिए गारंटी, हम साइंस में गारंटी वर्ड नहीं है, नॉन साइंस में गारंटी वर्ड है।
0: तो जैसे गारंटी आए सावधान हो जाना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: है ना।
1: यस,
0: बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली है। यहां हम एक गाने के लिए रुकते हैं।

श्रोताओ, बालों का स्वस्थ होना और सुंदर दिखना न सिर्फ सुंदरता बल्कि कहीं न कहीं ये हमारे व्यक्तित्व और स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। इन्हीं बातों पर प्रकाश डाल रही थी डॉक्टर रचिता धूरत। इनसे बातचीत की थी यूनुस खान ने। आज इस बातचीत का पहला भाग हमने आपको सुनवाया। इस बातचीत का दूसरा भाग आप सुनेंगे आज ही के दिन इसी समय। इस कार्यक्रम का संपादन किया मनीषा सिंह ने, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है किशोरदन, एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी। इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
3: मेरा साया साथ होगा।
0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
4: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। छाया गीत आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। छाया गीत में आज ऐसे गाने हैं जिनके दो संस्करण हैं, एक मेल वर्जन और एक फीमेल वर्जन। सुनने के आनंद के लिए हमने किसी दिलचस्प मोड़ पर इन गानों को आपस में जोड़ दिया है। कुछ अल्फाज कहना कितना मुश्किल होता है, जब कहना इतना मुश्किल है तो लिखना और भी ज्यादा मुश्किल होता होगा ना। फिर कैसे कहें अपने दिल की बात, कैसे कहें जिसे कहने के लिए बेकरार है दिल, लरसते हैं होंठ, कांपता है बदन और मिलते नहीं अल्फाज अपनी बात कहने के लिए।

कहते हैं कि आंखें दिल का आईना होती हैं। खुशी की चमक, दुख की झलक, सब कुछ आंखों में तैर जाता है। आंखों में समाया है हमारे दुखों का नमक और खुशियों की चहक। किसी की आंखें रोशनी हैं, उम्मीद हैं, इन आंखों से रोशन है हमारा संसार। आंखें आंखों से करती हैं बातें, आंखों

0: गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद जब हम आएंगे आपके लिए लाएंगे ये नगमा।
1: से नाराज नहीं जिंदगी,
0: हैरान हूं मैं। हम अभी हाजिर हुए

जिंदगी आसान भी है और दुश्वार भी। जिंदगी कितना कुछ सिखाती है हमें। सांप सीढ़ी का खेल है ये जिंदगी। यूं लगता है कि सामने है मंजिल और पल भर में मंजिल कोसों दूर होती है। जिंदगी कभी एक कविता है, कभी एक अफसाना और कभी एक महागाथा। चलो जिंदगी की उंगली पकड़ें और बातें करें इससे, कह दें इससे अपने सारे गिले शिकवे।

बारिश कुदरत की एक कविता है, बारिश संगीत है प्रकृति का, बारिश एक वरदान है, ये जज्बात जगाती है और हमें बेहतर इंसान बनाती है। ऐसी बारिश में घर के अंदर बंद रहना एक गलती है। बारिश तो बाहर निकलने के लिए होती है, सराबोर होने के लिए होती है, गाना गाने के लिए होती है, जिंदगी जीने के लिए होती है बारिश।

0: गीत में आज ऐसे गाने थे जिनके दो संस्करण हैं, एक पुरुष और एक महिला संस्करण। सुनने के आनंद के लिए हमने इन दोनों गानों को किसी दिलचस्प मोड़ पर आपस में जोड़ दिया था। फिल्मों के नाम, फिल्म जंगली।
1: एहसान तेरा
2: होगा मुझ पर।
0: फिल्म चिराग।
1: तेरी आँखों के सिवा
2: दुनिया में रखा क्या।
0: फिल्म मासूम।
3: तुझसे नाराज नहीं जिंदगी
2: हैरान हूँ मैं।
0: और फिल्म मंजिल। आज का छाया गीत इतना ही। इजाजत दीजिए यूनुस खान को। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने नए पुराने। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं जगजीत सिंह की आवाज में सरफरोश फिल्म के गाने के साथ। निदा फाजली के हैं बोल और तर्ज जतिन ललित की।

श्रोताओं, अगला गाना हमने लिया है उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में, डुप्लीकेट फिल्म से। जावेद अख्तर के हैं बोल और अनु मलिक की है तर्ज़।

0: ये है विविध भारती।
1: विविध भारती देश का रेडियो।
2: ओ मेरे पिया गए रंगून, पिया है वहां से टेली फोन।
3: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर।
1: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
5: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप

0: होकर आ गई और जी मैंने भरी धर्मेंद्र सिंह देओल तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब और नरगिस जी।
1: विविध भारती पर हर पल है खास।
2: आज के मेहमान
3: और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
4: आज के फनकार।
1: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
4: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
3: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
5: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
6: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली कलियां।
5: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
7: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
5: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
6: याद सताते हैं।
5: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
8: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने। लीजिए अब सुनिए जावेद अख्तर का लिखा और जतिन ललित का संगीतबद्ध किया गाना। आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की फिल्म का नाम यस बॉस।
9: हर रोज सुबह 7 बजे सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, जिसके प्रायोजक है वीको वज्रदंती। मजेदार नहीं असरदार, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे,
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम तराने नए पुराने। लीजिए अब सुनिए उदित नारायण, अभिजीत, सुदेश भोसले और पूर्णिमा और साथियों की आवाजों में देव कोहली का लिखा और अनु मलिक का संगीतबद्ध किया गाना। फिल्म का नाम इश्क।
4: सेहत आपकी, सुरक्षा हमारी। अब नहीं रहेगी मच्छरों से परेशानी, क्योंकि एक मच्छर इंसान को सोने नहीं देता है। नई टेक्नोलॉजी की मच्छर जाली के लिए संपर्क करें 45 वर्ष से आपकी सेवा में उपस्थित आरके ब्लाइंड्स दांडिया बाजार 9825027525। सेहत आपकी, सुरक्षा हमारी। यह है आरके ब्लाइंड्स की जिम्मेदारी।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। श्रोताओं, तराने नए पुराने कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे संध्या 6:05 से।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। शाम के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: آج ماسکو میں روس کے راشٹرپتی ولادیمیر پوتن سے ملاقات کی. اس دوران دونوں دیشوں کے بیچ دویپکشیہ ویاپار، آرتھک سہیوگ اور آگامی اچھ استریہ بیٹھکوں پر چرچہ ہوئی. ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ دونوں دیشوں کے بیچ سمبندھ لگاتار سدھڑ ہوئے ہیں.
1: इकोनॉमिक कोऑपरेशन,
2: हमारा आर्थिक सहयोग व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है. मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं. दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं.
1: स्ट्रॉन्ग पिक्चर ऑफ कोऑपरेशन टू प्रेजेंट.
0: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राष्ट्रपति पुतिन को शुभकामनाएं दी और उनका व्यक्तिगत संदेश सौंपा. इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मदुरोफ के साथ भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आने वाले समय में भारत मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से वैश्विक व्यापार के लगभग 75% हिस्से तक पहुंच बना लेगा. उन्होंने कहा कि भारत कम से कम 8 से 9 और देशों के समूह तथा अलग अलग देशों के साथ बातचीत कर रहा है. श्री गोयल ने भारत और जापान के व्यापार प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए गए हैं. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचेंगे. वे कल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे. श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे. भारतीय एजेंसियां मलेशिया में पकड़े गए बम्बीहा गिरोह से जुड़े 3 फरार गैंगस्टर को भारत ले आई हैं. गृह मंत्रालय ने बताया है कि जसप्रीत सिंह, अजय सिंह और पवनदीप सिंह को भारत लाकर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है. इन आरोपियों पर जबरन वसूली, सीमा पार हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी समेत कई अपराधों में शामिल होने का आरोप है. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एजेंसियों ने वर्ष 2026 में अब तक 51 कुख्यात अपराधियों को भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है. पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर नई राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन करने जा रही है. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये बल सितंबर में काम करना शुरू करेगा. अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया गया है. प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में डिजिटल अरेस्ट के एक मामले से जुड़े धन शोधन की जांच के सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि 2025 में एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर 2,60,00,000 रुपए से अधिक की रकम अलग अलग बैंक खातों में जमा करने के लिए मजबूर किया गया था. मेघालय की सत्तारूढ़ नेशनल पीपल्स पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के पूर्व सांसद W.R. खारलुखी ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया. डॉ. खारलुखी वर्ष 2020 से 2026 तक राज्यसभा सांसद रहे. मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 172 अंक गिरकर 77,369 पर बंद हुआ. निफ्टी 33 अंक कम होकर 24,219 पर पहुंच गया. कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी में 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित कर दी है. जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए हैं. ध्रुव जुरेल ने नाबाद 115 रन की पारी खेली. भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है. हॉकी विश्व कप में कुछ देर बाद भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला

0: अर्जेंटीना से होगा। भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए इस मुकाबले को बड़े अंतर से जीतना होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। तराने नए पुराने कार्यक्रम में आपका फिर स्वागत है। श्रोताओ, अब आपको तराने नए पुराने कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में पत्थर के फूल, इस फिल्म का गाना।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को वो भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर, हर रविवार शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।
2: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
3: मिलो जो तुम्हें बताए।
2: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
4: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
2: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
5: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम तराने नए पुराने। लीजिए अब सुनिए सुदेश भोसले और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया गाना, फिल्म का नाम हम।
6: विविध भारती नु आ वडोदरा केंद्र छे 93.9 दशम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन झरोखा के अंतर्गत सुनिए आज दिन भर के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। आज के शेष कार्यक्रम इस प्रकार है। थोड़ी देर में संध्या 6:35 से सुनेगा कार्यक्रम संध्या रंजन, 6:45 से संगीत सरिता। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ताल प्रवाह, आज इसकी 8वीं कड़ी सुनिएगा। कलाकार हैं सुप्रसिद्ध तबला वादक पंडित कालीनाथ मिश्र। शाम 7 से फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला सुनिएगा। शाम 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत आपको सुनवाएंगे एक ही फिल्म से, इसके अंतर्गत आज की फिल्म है आई मिलन की रात। रात 8 से हवा महल के अंतर्गत सुनेगा नाटिका महाकवि तुक्कड़ की सगाई, लेखन शारदा प्रसाद मुरशुंडी का, निर्देशन जयदेव शर्मा कमल का। रात्रि 8:15 से चित्रलोक, रात 9 से आपके लिए, रात 9:30 से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के कल्याण जी पर। रात 10 से छाया गीत, आलेख हमसर सलमा सैयद का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। रात 10:30 से ढलती जाए रात, और रात 11 से सुनिएगा रंग तरंग।

0: इस गाने के साथ ही आज का तराने नए पुराने कार्यक्रम संपन्न हुआ। नमस्कार।
1: तराने नए पुराने।

कल 25 अगस्त के कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा इस प्रकार है। सुबह 6:05 से सुनेगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार। सुबह 6:35 से आपको सुनवाएंगे श्री रामचरित मानस गान, इसका 291वां भाग आप सुनिएगा। सुबह 6:45 और संध्या 6:45 से संगीत सरिता, इन दिनों आप सुन रहे श्रृंखला ताल प्रवाह। कल सुनिएगा 9वीं कड़ी, कलाकार हैं तबला वादक पंडित कालीनाथ मिश्र। सुबह 7 से भूले बिसरे गीत, 7:30 से हम है राही प्यार के, सुबह 8:15 से सुनवाएंगे त्रिवेणी, आलेखों सर मंजू द्विवेदी का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सुबह 8:30 से चित्रलोक, सुबह 9:30 और रात्रि 9:30 से आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री पार्श्व गायिका विजेता पंडित पर, आलेखों सर कमल शर्मा का, प्रस्तुति रमेश गोखले। कल सुबह 10 से पिटारा के अंतर्गत सुनेगा सेहतनामा, इसके अंतर्गत बालों की समस्या और देखभाल, इस विषय पर डॉक्टर रचिता धुरत एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग सुनेगा, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। सुबह 11 रात्रि 11 से रंग तरंग यादों की महफिल, यह कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे दिन में 12:05 से। दोपहर 1 से सुरीला सफर, दोपहर 2 से सुनेगा त्रिवेणी। सदाबहार नगमे, यह कार्यक्रम सुनेगा दोपहर 2:30 से। सखी सहेली कार्यक्रम का वक्त होता है दोपहर 3 से। कल के विषय हैं घर या पुराने सामान का गोदाम, सखी विशेष के अंतर्गत हेमलता अन्नामलाई सह संस्थापक एम्पियर व्हीकल्स के बारे में, और हल्की फुल्की बातें, इसके अंतर्गत पुरुष और साग भाजी की खरीददारी, मुहावरों की दुनिया के अंतर्गत घाव पर नमक छिड़कना, संवादक सोनाली पाठक और आरती श्रीवास्तव, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। शाम 4 से पिटारा के अंतर्गत सुनेगा सेलुलॉयड के सितारे, अभिनेता यशपाल शर्मा और अभिनेत्री प्रतिभा शर्मा से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा भाग सुनेगा, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। छायागीत का पुनर्प्रसारण आप सुनते हैं शाम 5 से, तराने नए पुराने शाम 5:30 से। संध्या रंजन सुनेगा 6:35 शाम में, शाम 7 से फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला, शाम 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस, रात 8 से सुनवाएंगे हवा महल के अंतर्गत नाटिका जीवन भय, मूल तमिल लेखक अनिल सेठी सुब्बाराव, हिंदी रूपांतरण एम सूरी, प्रस्तुतकर्ता पुरुषोत्तम दावेकर। रात 8:15 से चित्रलोक आपके लिए सुनेगा रात 9 से। छायागी सुनेगा रात 10 से, आलेखन सर ममता सिंह का, प्रस्तुत

पर राघवेंद्र सिंह नेगी, ढलती जाए रात, रात 10:30 से। अभी आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत कार्यक्रम विवरण। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम संध्या रंजन। लीजिए सुनिए अमर प्रेम का ये गाना, लता मंगेशकर की आवाज, आनंद बख्शी की बोल और आर डी बर्मन की है तर्ज।

0: संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ताल प्रवाह। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध तबला वादक कालीनाथ मिश्र। आपसे बातचीत की है रामकृष्ण दास ने। आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की 8वीं कड़ी।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार दास बाबू।
1: मिश्रा जी, आज फिर हम उपस्थित हुए हैं इस ताल प्रवाह में। ताल प्रवाह में चौताल, तीन ताल, आड़ा चौताल, एक ताल, बहुत ताल हैं,
2: अनगिनत ताल हैं।
1: तो आप हमें बताएं, आज हमारे श्रोताओं को कौन सा ताल आप सुनाएंगे?
2: आज मेरी इच्छा हुई कि मैं एक ताल 12 मात्रे का होता है, हम उसकी चर्चा करें।
1: और बहुत अच्छी बात है
2: जी दास बाबू। एक ताल एक ऐसा ताल है जो बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, तराना, इसके साथ बड़ा उपयोग किया जाता है
1: जी।
2: एक ताल, तीन ताल भी बजाते हैं, बट ये जो ताल है एक ताल, तराना के साथ, विलंबित ख्याल के साथ।
1: तो मैंने तो एक बार पंडित रविशंकर जी को एक ताल में झाला भी बजाते हुए।
2: हाँ जी, हाँ जी, करते हैं, हम सोलो भी बजाते हैं एक ताल में। उसके लिए हमें कम से कम अच्छा टाइम चाहिए। तो श्रोताओं को आज हम एक ताल के बारे में बात करते हैं। और एक ताल जब हम संगत करते हैं गायक के साथ, तो इसमें बहुत ठहराव होना चाहिए। पहले तो मैं बता दूं आपको कि तबला वादक एक ऐसा साधक होना चाहिए कि उसको चारों पट का तबला आना चाहिए। गाने के साथ बैठा दीजिए तो गाने के साथ संगत होना चाहिए। किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ बैठाई तो इंस्ट्रूमेंट का तबला बोलना चाहिए। नाच के साथ बजाए तो नाच वाला तबला होना चाहिए। और अगर वो सोलो बजा रहा है तबला वादक, तो फिर सोलो वाला तबला होना चाहिए। तो चारों पट का तबला आना चाहिए। तो आज हम एक ताल की चर्चा करते हैं जो 12 मात्रे का होता है, उसमें 6 विभाग होते हैं।
1: इसी सिलसिले में एक बात मैं ये पूछना चाहूंगा, कुछ कुछ ऐसी बंदिशें भी मिलती हैं जिसमें एक ताल 3 के छंद में जाता है
2: जी,
1: उसके बारे में थोड़ा बताइए
2: जी। उसका जो अंदाज है ना, अगर इंस्ट्रूमेंट में बज रहा है कि धिन धिन धागे टिट डा, तो वो 3-3 का छंद आता है। वो है वही एक ताल बजाएगा, लेकिन छंद जरा चाल उसकी दादरा की चलन हो जाती है
1: जी। हाँ,
2: क्योंकि दादरा और 12 मात्रा आपस में संपर्क
1: का दूना।
2: हाँ, तो हम एक ताल में 12 मात्रा होता है, उसमें 6 विभाग होते हैं, 4 ताली और 2 खाली। दूसरी बात, 12 मात्रे का एक ताल और है जिसका नाम है चार ताल, जिसे हमें चौताला कहते हैं
1: जी।
2: धा धा दिन ता कीट धा दिन ता टेटे का ता गदी गन धा धा,
1: पखावज में बस
2: पखावज कांग है ये
1: जी।
2: ये पखावज, हाँ जी, हाँ जी, ये पखावज कांग है। और धन्यवाद देता हूँ मैं अपने गुरु जनों का जिन्होंने तबले को पखावज के अंदाज से भी बजाया है। तो प्रस्तुत करता हूँ एक ताल, चढ़ी हुई गति।
1: वाह।

0: श्रोताओं को भी कहना चाहूंगा और तार प्रवाह और आप, ये बनारस का जो एक अंदाज है ना दास बाबू
1: जी,
0: उसमें कवित परन, बोल परन, गज परन, कविताओं की जो रचना जो हम पढ़ते हैं कविता, वो तबले से बजा के दिखाते हैं जैसे एक नर्तक भाव से दिखाता है
1: जी।
0: उसी हिसाब से ये हमें पूरा छूट है। तो एक पठन करता हूँ, नीर तत नंद नंद छोम छ नोम तोम तत्धा दिग दिग थी लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग।

गगत त्रिभंग था, खेलत भुज मेलत लपक झपक राधा, ललिता चंद्रावली दियो बोर रंग बोर बो सर बोर बोर बनवारी हारी धाति धाति तबला तबला

0: बा जाता डामरू शिव शंकर, ये पठंत भी है। बा जाता डामरू शिव शंकर की शोभित अंग में भभूति, गले सर्प मुंड मान तीन नत जटागंग है। चक्रदार अब ये शिव तांडव का एक अंदाज है
1: जी,
0: तो मैं इसको दो अंग से कोशिश करूंगा कि इसे अगर पार्वती करेंगे तो कैसे करेंगे और शिव करेंगे तो कैसे
1: क्या
0: करेंगे?
1: बात है,
0: तो पार्वती ये बड़ा बेस, ये तबला हो जाएगा
1: जी।
0: और बेस सुनिए श्रोता,

0: हमेशा गुरुजी बोलते थे हमारे
1: जी
0: थाप। तो एक मैंने एक अपना अपना एक अंदाज है, कत का बोल कैसे निकलेगा
1: जी।
0: मेरे गुरुजी मदन मिश्रा और हमारे शंभुनाथ मिश्रा जी ने बताया कि कत

बड़ा सुंदर अंदाज है, कैसे बोल निकलेगा?

0: ये एक तार हो गया
1: जी,
0: इसको पखावज के अंदाज से कैसे लेंगे
1: जी?
0: क्योंकि कुछ कलाकार भारत में ऐसे हुए हैं जिनके साथ हमने बहुत अच्छा काम किया है, पंडित अर्जुन सहजवाल
1: जी,
0: पखावज, पंडित रामदास जी पखावज, पंडित भवानी शंकर
1: जी,
0: तो ऐसे लोगों के साथ मुझे काम करने

0: एक ताल बजाते बजाते मुझे बड़ा सुंदर गाना याद आ गया।
1: क्या बात?
0: आपको खुद पता है, वाह वाह फारूक भाई, कि फिल्मी जो गाने पहले बजाए जाते थे, अभी तो काफी चेंज हो गया, वरना हमेशा क्लासिकल बेस को लेके गाना बजाना ये सब होता था। तो मुझे एक गाना याद आया, लता दीदी गाई है उसमें, खास एक ताल उसमें बजा है
1: जी,
0: आपको याद है, शंकर जय किशन जी का म्यूजिक है उसमें, मन मोहना बड़े झूठे।
1: क्या कहने है?

ताल प्रवाह इस श्रृंखला की ये थी 8वीं कड़ी। जाने माने तबला वादक कालीनाथ मिश्र से बातचीत की रामकृष्ण दास ने। इस श्रृंखला में कालीनाथ मिश्रा जी को सारंगी पर लहरा दे रहे हैं उस्ताद फारूख लतीफ खान और हारमोनियम पर हैं विनोद पड़गे जी। तकनीकी सहयोग वंदना ठाकुर और निखिल धामापुरकर। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जी।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला लेकर हाजिर होंगे बस थोड़ी ही देर में।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम जयमाला। सभी फौजी साथियों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं एक देशभक्ति गीत के साथ, जिसे हमने लिया है लक्ष्य फिल्म से।

फौजी साथियों लीजिए अब सुनिए आशा भोसले और विनोद राठौर की आवाजों में बाजीगर फिल्म का गाना। रानी मलिक ने लिखा इसे और संगीत से संवारा है अनु मलिक ने।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था। और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: तिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: फौजी साथियों, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जयमाला। लीजिए अब सुनिए बंटी और बबली फिल्म का गाना। इसे गाया है उदित नारायण, सुनिधि चौहान और नेहरा जोशी ने, लिखा है गुलजार ने और संगीत से संवारा है शंकर एहसान लॉय ने।
4: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सारी जिंदगी एक ही काम करते रहते हैं और दूसरे जो एक ही जिंदगी में सारे काम कर देते हैं। ये मैं नहीं, ये वो दोनों कहते थे। और कहते क्या थे, करते थे, और ऐसा करते थे जैसा ना किसी ने किया और ना शायद कोई कर पाएगा।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है जयमाला। फौजी साथियों लीजिए आपकी सेवा में प्रस्तुत है पार्टनर फिल्म का गाना। श्वेता पंडित सुजी क्यू और शान ने गाया इसे। गीतकार हैं शब्बीर अहमद और संगीतकार हैं साजिद वाजिद।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध, बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
4: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
5: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
3: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
6: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे कार्यक्रम जयमाला। फौजी साथियों, आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश कल हो ना हो इस फिल्म से आवाजें हैं वसुंधरा दास, के शान और लॉय मेंडोसा की, गीतकार हैं जावेद अख्तर और धुन बनाई है शंकर एहसान लॉय ने।

फौजी साथियों, इस गाने के साथ ही आज का जयमाला कार्यक्रम संपन्न होता है। अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए, जय हिंद।

श्रोताओ, हवा महल में आइए आज सुनते हैं नाटिका महाकवि तुक्कड़ की सगाई, लेखक शारदा प्रसाद मुरशुंडी, निर्देशक जयदेव शर्मा कमल।

0: अरे मैंने कहा सदाबहार नौटंकी जी, आज कुछ सुधाओगी नहीं क्या?
1: चुक्कड़ जी घर से चले लेकर दिव्य विचार, बड़े प्रेम के साथ में पहुँचे टुक्कड़ द्वार। पहुँचे टुक्कड़ द्वार, लपक आवाज लगाई, दरवाजे को पीट काल बेल पुनः बजाई। सुनकर काफी शोर बिगड़ वे बाहर आए, लेकिन लखकर दोस्त रह गए निज मुंह बाए। देख साथी को आगे क्रोध के टूटे सब तागे, बाद में वे मुस्काए अति आदर के साथ इन्हें घर अंदर ले आए।
2: आइए आइए चीनी महान जी, बैठिए। याद करता था मैं भी अभी आपकी, आप किंचित यहाँ पर नहीं लेट हैं। बैठिए पीजिए चाय गर्मा गर्म, साथ में पकौड़ी भरी प्लेट है।
3: अजी भाई साहब, चाय पकौड़ी तो बाद में चलेगी, पहले मेरी प्रार्थना तो सुनिए। रात जाड़े सी बढ़ती सुता की उम्र, इससे मुझको नहीं कुछ भी आराम है। आप मुझको बताएं अभी तक यहाँ इसके बारे में कितना किया काम है।
2: अरे भाई साहब, आपका काम 15 के पहाड़े की तरह मुझे याद है। मैंने कल जब कई लड़कों की बुद्ध की खाक छानी है, तब कहीं जाकर एक लड़का मेरी पकड़ में आया है।
3: अच्छा,
2: मैं तो तुमसे क्या करूं उसकी शुभ तारीफ। पैसा वाला साथ में है वो बड़ा शरीफ,
3: हाँ?
2: है वो बड़ा शरीफ, नहीं है किंचित तदा। उसके आगे नाथ ना उसके पीछे, करके मेहनत सदा वो अपने आप कमाता,
3: हाँ?
2: भूखा रहता नहीं, चकाचक माल उड़ाता।
3: हाँ,
2: यही उसकी हर धर्मी,
3: हाँ?
2: यार वो कविता कर्मी, अगर तुम उसको अपनाओ,
3: हाँ?
2: चलकर मेरे साथ उसे दामाद बनाओ।
3: अरे वो तो चाहे आम हो अथवा हो वो खास, उसको राजी कीजिए चलकर उसके पास।
2: अगर ऐसी बात है तो आओ उसके यहाँ चलें।
1: चुक्कड़ जी तथा टुक्कड़ जी दोनों मिलकर टुक्कड़ जी के यहाँ जाते हैं। वे टुक्कड़ जी को देखकर कहते हैं,
4: आइए आइए आइए टुक्कड़ जी, आजकल तो आप असली घी हो गए, न जाने चिलगोजे से किस बोरे में छिपे रहते हैं। आज हमारे द्वार पर आए छप्पर फाड़, आज हमारे द्वार पर आए छप्पर फाड़, अभी तलक किस खो में झोंक रहे थे बाहर।
2: अब आप लल्लो चप्पो छोड़े और हमारे मित्र को कोई नई छौकी बघारी कविता सुनाने की कृपा करें, क्योंकि हम आपको सुनने के लिए आए हैं।
4: सच सच तो मुझे ऐसा मालूम होता है कि आप चाय के बदले कविता पीना चाहते हैं।
5: सुनाए, सुनिए,
2: सुनिए।
4: हमने पाला प्लेट में शहरी गिन्नी पेट,
2: अच्छा
4: हंडिया जैसी खोपड़ी और पेट बड़ा सा डेग, पेट बड़ा सा डेग, दांत लंबे हैं आरा, करे 420 पढ़े 36 पहारा। कहे तो कड़ तुर्राए, नाक है बनी चिलमची
2: चिलमची,
4: चमचा चमची, जीभ आंख है उसकी चमची।
2: अरे भाई, भाषा के भंडार कर, शब्द पहाड़ा है कि पहाड़ा, जरा समझाइए तो सही।
4: आपसे निवेदन है कि हमको अहाड़ा पहाड़ा से क्या लेना देना।
2: जी जी,
4: अरे आप बताइए कि तुक फिट है कि नहीं।
2: अरे तुक तो अपनी जगह पर चूल से चूल भिड़ा है, मगर यहाँ पर वही बात हुई ना।
6: टाट रे टाट, तेरे सिर पे खाट
2: है, कुछ और मेहरबानी कीजिए ना।
5: सुनाइए ना
4: भाई साहब, आप मुझे कांटे पर घसीट रहे हैं।
2: क्या कह रहे हैं,
4: ध्यान से सुनिए।
2: हाँ सुनाइए,
4: टुक्कड़ जी की

0: चोंच में,
1: तो कड़ जी की चोंच में,
0: कड़ जी की चोंच में है आलू का साग।
2: क्या चीज रखी है आपने भाई?
0: भीतर से चूहिया लगे, ऊपर से बुलडाग। टुक्कर जी आए यहाँ अपना चोला जा, दाढ़ी बरगद की जटा, लंबी मूछे।
2: क्या दृश्य है, क्या दृश्य है कवि महोदय, क्या दृश्य! आपने तो कमाल कर दिया। यानी कि सद्भावना के रूप में ऊंचाई और लंबाई को समानांतर बना दिया।
0: श्रीमान जी, ये ऊंची उड़ाने हैं।
2: क्यों नहीं, क्यों
0: बौना श्रोता के पल्ले नहीं पड़ती।
2: क्यों नहीं, क्यों नहीं।
0: अब जरा दूसरी रचना सुनने की कृपा करें।
1: हाँ सुनाइए।
0: हाँ सुनिए। कवियों में कवि और छवियों में छवि धन, भैंस के बहाने हम श्रोता को चराते हैं। हमको गरज नहीं कहीं आने जाने की है, अरे कविता के गर्जी हमारे घर आते हैं। दिल को जलाने फूल कलियों का पास बैठो, दिन में प्रचंड हम दीपक जलाते हैं। कोई तो नचाते आंख चश्मे की आड़ लेके, हम तो उंगलियों में शब्दों को नचाते हैं।
2: वाह टुक्कर जी, वाह टुक्कर जी, वाह! मीठी कविता आपकी, सरस शहद की धार बरबस घुसकर कान में करने लगती प्यार।
0: अरे भाई टुकड़ जी, आपकी बात क्या कहें?
1: क्यों?
0: हाँ अब तो काट के उल्लू है
1: जी,
0: है? अभी तक गुणग्राही महापुरुष से परिचय नहीं कराया।
1: क्षमा करें, क्षमा करें, ये मेरे मित्र, ये तो गांव के रईस हैं। रेडियो, टीवी, अखबार, कवि सम्मेलन, मुंडन तथा कंछेदन में आपकी पढ़ी गई कविताओं से प्रभावित होकर ये पुरस्कार स्वरूप आपको अपनी कन्या देना चाहिए।
0: देखो भाई टुकड़, समझ लो मैं कोई भूखा भिखारी नहीं हूँ जो बासी बात पर चढ़ बैठूं।
1: क्या
0: जी? मैं तो सोच समझ कर ही अपने गले में फंदा डालूंगा।
2: क्यों
1: जी?
0: मगर फिर भी
1: जी,
0: यदि कन्या में है नहीं दंद फंद छल छंद
1: जी,
0: यदि कन्या में है नहीं दंद फंद छल छंद, शकर कंद की जगह पर तब तो वो गुलकंद।
1: कुंडली,
0: कुंडली दिखाइए। कुंडली, कुंडली, कुंडली, कुंडली से मेरा कोई सरोकार नहीं है। लड़की सहयोग में फॉरवर्ड होनी चाहिए।
1: अरे ये देखिए लड़की की फोटो, ये बीए पास और कवित्री भी है। इसका नाम कुमारी तुकहीना है।
2: तुकहीना,
1: तुकहीना।
3: फोटो देखकर वे हंस पड़ते हैं और कहते हैं,

0: तो कड़ जी न खासी मगर सूरत है खासी। तो इसी पर सुनिए।
1: हाँ हाँ सुनाइए।
0: भालू जैसे बाल हैं, मुंह है नागर मोटा,
1: अरे
0: हाँ, लाल चुकंदर गाल हैं, तिल भैंसे का चौथा।
1: क्या क्या,
0: यदि इनकी कोई कविता हो तो सुनाइए।
1: अरे चुक्कर सुना दो चुक्कर।
2: वो मुझे वो उसकी एक शनिका याद है,
0: याद है?
1: सुना,
2: उसे सुनिए। मैं वो
1: सुनाओ सुनाओ
2: वो मर्द की मूंछ,
1: मर्द की मूंछ, कुत्ते की पूंछ,
2: इसलिए काट दी जाती है,
1: इसलिए काट दी जाती है
2: कि इनकी डींग गधे की सींग होती
0: है। क्या बात है, कविता क्या है, अघोर मंत्र है। इसको सुनकर मेरा दिल देहरादून से नैनीताल हो गया।
1: नैनीताल हो
0: भाई,
2: वाह
0: भाई, लड़की मुझे पसंद है।
2: यदि यदि आपको लड़की पसंद है तो आप फिर वो खुलकर बात कीजिए ना।
1: बधाई हो, बधाई हो,
2: खुलकर बात कीजिए आप।
0: देखिए कहने में मुझको होता है परहेज।
1: अरे नहीं नहीं आप कहिए, आप कहिए।
0: लड़की को ही दीजिए जो हो उचित दहेज।
1: अच्छा,
0: मगर उस दहेज के साथ

0: इतना और जोड़ दीजिए।
1: क्या क्या?
0: पेरिस के फैशन का एक सूट चक्का चक, लंदन के रात और औंधी सांझ दीजिए, चित्र खजूरा हो के हो यक्षिणी के शानदार, कागज में खाका खींच हीरे रांझा दीजिए, ठेला भर बेला और तबला मृदंग चंग, साथ में नगाड़ा ढोल ताशा झांझ दीजिए।
1: क्या क्या? ये क्या करेंगे?
0: मेज से जिपाल की पलंग फ्रिज दिव्यकार,
1: अच्छा,
0: बंगला रंगीन टीवी, बीवी बीवी बांझ दीजिए।
2: वो भाई आपने सब चीजें तो उचित मांगी, मगर बाजों का क्या? अचार डालेंगे
0: तो कर जी।
2: हाँ जी,
0: आप पूरे जी बसंत रहे।
2: हाँ, वो तो है।
0: क्या है जी बसंत, समझे?
2: जी घोंघा बसंत।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, मैं इन बाजों की ध्वनि से प्रेरणा लूंगा, समझे?
1: वाह वाह वाह वाह। देखिए देखिए तो कर जी, चीजें मांगी है जितनी वो दूंगा सभी, इसमें मुझको नहीं कुछ भी इनकार है। आए संग में बराती के दूल्हा बने, इनसे बिनती ये मेरी भरी चाह।

0: ये भाई, अरे वो कह दू? नहीं कहता, नहीं कहता। ये किस सिर्फ हीरे की बारात है जो दो दिन में, मतलब दिन में आतिशबाजी की, कलाबाजी और भांगड़ा डांस के साथ खुशियां उछाल रही है।
1: अरे यार, तुम पूरे डपोट शंखी रहे। ये तो महाकवि तुक्कड़ जी की बारात है।
0: अच्छा,
1: मालूम होता है कि अंधे के हाथ बटे
0: तुम्हारी तरह। तब आओ हम लोग भी इसी बारात में मिल पड़े और गुलछर्रे उड़ाए।
1: अरे डबोरसन, तुमने देखा तुखी नाका हो गया तुक्कड़ जी से ब्याह।
0: अच्छा,
1: तुखी नाका हो गया तुक्कड़ जी से ब्याह। सब लोगों के दिलों में चल बैठा उत्साह
0: तुम्हारी तरह।
1: घर वालों ने प्रेम से रखकर बड़ी तमीज।
0: अच्छा,
1: मुंह मांगी दी सुकवि को सभी प्लास्टिक चीज।
0: प्लास्टिक चीज,
1: सभी खिलौने के बने सुंदर बौने रूप। वायुयान, फ्रिज, रेडियो, कुर्सी, मेज स्वरूप।
0: वाह वाह वाह वाह, देखो देखो देखो देखो, दहेज की तो दादाजी उड़ गई।
1: अरे चूंकि लड़की लड़के को बहुत पसंद है।
0: अच्छा,
1: इसलिए दहेज का गुरेज प्यार का शरबत बन गया है।
0: अच्छा, अच्छा।
1: और इसलिए वर दुल्हन को मिलेगा अब घर में आनंद। ये सुख बंदी पढ़ेंगे, ये लिखे छुआ छंद।

महाकवि तुक्कड़ की सगाई, शारदा प्रसाद मुरशुंडे की लिखी ये नाटिका अभी आप सुन रहे थे। निर्देशक थे जयदेव शर्मा कमल। आकाशवाणी लखनऊ की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन चित्रलोक। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: श्रोता मित्रों 93.9 मेगाहर्ट्ज पर आप ट्यून कर्यु छे विविध भारती नू वडोदरा केन्द्र। सवारे 8:30 लोकप्रिय हिंदी फिल्मी गीतों कार्यक्रम चित्रलोक, जेना प्रायोजक छे
2: अशोका द ग्रेट एक्सक्लूसिव एथनिक एंड दुल्हा कलेक्शन, वडोदरा नो आधुनिक शोरूम, नवरंग सिनेमा रोड, रावपुरा, वडोदरा।
1: एम के

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं प्रिया पांचाल की आवाज में खूबसूरत फिल्म के गाने के साथ। अमिताभ वर्मा और स्नेहा खनवलकर हैं गीतकार और संगीतकार हैं स्नेहा खनवलकर।

0: किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए सिद्धांत माधव और पावनी पांडे की आवाजों में वेलकम बैक फिल्म का गाना। अराफत महमूद हैं गीतकार और संगीतकार हैं सिद्धांत माधव।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। चित्रलोक कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से अंतराल का, तुरंत हाजिर होते हैं।

कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए लुका छुपी फिल्म का गाना। इसे गाया है करण शेम्बी ने, निर्माण ने लिखा है इसे और तनिष्क बागची गोल्ड बॉय ने संगीतबद्ध किया है।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
3: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहां, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
2: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
4: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे 25

0: अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: श्रोताओं, अगला गाना हमने लिया है बागी फिल्म से, रफ्तार, नेहा कक्कर और मंज की आवाजें। रफ्तार और शबीर खान ने इसे लिखा है और मंज म्यूजिक की तर्ज है।

0: एली।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
0: मिलो जो तुम्हें बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश बजरंगी भाईजान फिल्म से विशाल ददलानी, नकश अजीज और प्रीतम की आवाजें। मयूरपुरी ने लिखा इसे, संगीत से संवारा है प्रीतम ने।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति पुतिन ने उर्वरक आपूर्ति बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 25वीं भारत चीन सीमा वार्ता के लिए पेइचिंग पहुंचे। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखा प्रबंधन के लिए पर्याप्त और विविध अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता का आह्वान किया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। उड़ीसा में लगातार बारिश से जलभराव और नदियों का जलस्तर बढ़ा। और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट में मेजबान श्रीलंका के साथ भारत ने ध्रुव जुरेल और देवदत्त पड्डिकल के शतकों की बदौलत पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की।

0: अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
1: इकोनॉमिक कोऑपरेशन,
2: हमारा आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
1: स्ट्रॉन्ग पिक्चर ऑफ कोऑपरेशन टू प्रेजेंट।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि रूस भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र में सहायता के लिए कदम उठा रहा है। इससे पहले डॉ. जयशंकर ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतोरोव के साथ भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई।
1: प्रोग्रेस ऑन मार्केट एक्सेस,
2: बाजार तक बेहतर पहुंच, शुल्क और गैर शुल्क बाधाओं को हटाना, भुगतान व्यवस्था को मजबूत करना और दोनों देशों के कारोबारियों के बीच सहयोग बढ़ाना इस असंतुलन को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। इससे वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुँचाने के साझा लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की समस्याओं के समाधान के लिए अगले 2 महीनों में वर्तमान नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम बनाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो में कार्यक्रम में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने 2 बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। इनमें से एक कंपनी भारत में सेमीकंडक्टर उपकरण का विनिर्माण शुरू करना चाहती है और दूसरी ऑटोमोबाइल कलपुर्जा क्षेत्र में काम करती है। भारत जापान आर्थिक संबंधों पर श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
3: We are a young country.
4: भारत एक युवा देश है। आज हमारी अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की है और 2047 तक इसके $30 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। जापान के पास बेहतरीन तकनीक और कारोबारी अनुभव है, लेकिन वहाँ पर्याप्त लोग और बड़ा बाजार नहीं है। ऐसे में भारत एक बेहतर साझेदार बन सकता है, क्योंकि हमारे पास बड़ा घरेलू बाजार और बड़े स्तर पर उत्पादन की क्षमता है।
1: With a large domestic market.
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं।
4: भारत को $70 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाले बाजारों में आसानी से कारोबार करने की सुविधा मिली है। पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौतों के तहत 38 विकसित देशों को इसमें जोड़ा गया है। मैं आप सभी को इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत के युवाओं के कौशल, बड़े घरेलू बाजार और वैश्विक बाजारों का लाभ उठाकर बड़े स्तर पर किफायती और प्रतिस्पर्धी विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा सकता है।
0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी पेचिंग पहुंचे। वे कल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा वार्ता तंत्र के लिए नियुक्त विशेष प्रतिनिधि हैं। ये तंत्र वर्ष 2003 में भारत चीन के बीच 3400 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा से जुड़े विवाद का व्यापक समाधान निकालने के लिए बनाया गया था। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखे से निपटने की क्षमता को मजबूत करने के लिए विविध और पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता की जरूरत पर बल दिया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगोलिया में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के 17वें सम्मेलन COP17 के दौरान उर्वर भूमि और सूखे से निपटने की क्षमता के लिए नए वित्तीय तरीके पर मंत्री स्तरीय वार्ता में ये बात कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से विदेशों में नियुक्ति पर जमीनी स्तर पर मजबूत संपर्क

0: स्थापित करने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के रिश्तों को मजबूत करने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज भारतीय विदेश सेवा के 2025 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से पारंपरिक राजनयिक दायरों से आगे बढ़कर अपने नेटवर्क का विस्तार करने और लोगों के साथ संपर्क को गहरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 9वां राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। 2 दिन के सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इस वार्षिक सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और उभरते खतरों से निपटने के लिए खुफिया अर्धसैनिक और पुलिस नेतृत्व के बीच बेहतर समन्वय पर चर्चा होती है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में संशोधित डाक सेवा ऐप और डाक मित्र ऐप शुरू किए। इस दौरान उन्होंने 10 राज्यों के 14 डाकघरों के नवीनीकृत भवनों का भी उद्घाटन किया। श्री सिंधिया ने कहा कि इन पहलों से भारतीय डाक को अधिक आधुनिक, सुलभ और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा है।
1: डाक मित्र ऐप हमारे ग्रामीण डाक सेवकों के लिए, ताकि जो सेवाएं उपभोक्ताओं को हमें देना हो वो सुगमता के साथ और सुरक्षित वातावरण में हम लोग दे पाए। पहले अनेक सेवाओं के लिए अलग अलग सिस्टम्स को फॉलो करना पड़ता था, अब सारे प्रोसेसेस को एक ही ऐप में केंद्रित कर हमारे उपभोक्ताओं के लिए सुगमता देने के लिए ये ग्रामीण डाक सेवकों के हाथों में ये ऐप दिया गया है।
0: रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि भारत को वर्ष 2040 तक रासायनिक क्षेत्र को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य पर काम करना होगा। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इसके लिए लगातार निवेश, तकनीकी विकास और घरेलू विनिर्माण क्षमता को मजबूत करना जरूरी है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री जोशी ने बताया कि बैठक में CBSE की शैक्षणिक परीक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की प्राथमिकताओं की समीक्षा की गई। भारतीय चीनी और जैव ऊर्जा उत्पादक संघ के महानिदेशक दीपक बल्लानी ने आज कहा कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि घबराहट और सट्टेबाजी में कमी के साथ ही चीनी की कीमतों में कमी आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 दिनों में चीनी की कीमतों में वृद्धि सट्टेबाजी और घबराहट के कारण हुई थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे और मध्य महाराष्ट्र में कल अत्यधिक वर्षा का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने कल दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में तेज बारिश की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली NCR के कई इलाकों में आज मध्यम से तेज बारिश हुई। गुरुग्राम में मौजूदा मौसम की स्थिति को देखते हुए सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों को कल ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने की सलाह दी गई है। साथ ही कॉरपोरेट और निजी कार्यालयों को भी अपने कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित करने की सलाह दी गई है। भारी बारिश के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ान परिचालन भी प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कल राष्ट्रीय राजधानी में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच ओडिशा में लगातार बारिश के कारण कई जिलों में जलभराव, नदियों का जलस्तर बढ़ने और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
3: उड़ीसा में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश से कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कोरापुट में जलभराव, घरों को नुकसान और नदियों व नालों में जलस्तर बढ़ने की खबर है, जबकि नवरंगपुर में नदी किनारे बसे गांव में बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं। केंदुझर में NH 520 पर बाराबंका घाट में भूस्खलन से सड़क संपर्क भी प्रभावित हुआ है। हीराकुद बांध से अभी 12 गेटों के जरिए पानी छोड़ा जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कई जगहों पर 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिसमें जोड़ा में राज्य में सबसे ज्यादा 169.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। IMD ने उड़ीसा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया है।

0: प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: भारतीय एजेंसियां मलेशिया में पकड़े गए बम्बीहा गिरोह से जुड़े तीन फरार गैंगस्टर को भारत ले आई हैं। गृह मंत्रालय ने बताया है कि जसप्रीत सिंह, अजय सिंह और पवनदीप सिंह को भारत लाकर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इन आरोपियों पर जबरन वसूली, सीमापार हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी समेत कई अपराधों में शामिल होने का आरोप है। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एजेंसियों ने वर्ष 2026 में अब तक 51 कुख्यात अपराधियों को भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में डिजिटल अरेस्ट के एक मामले से जुड़े धन शोधन की जांच के सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 2025 में एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर 2,60,00,000 रुपए से अधिक की रकम अलग अलग बैंक खातों में जमा करने के लिए मजबूर किया गया था। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर नया आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये बल सितंबर में काम करना शुरू करेगा। अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 172 अंक नीचे आकर 77,369 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 33 अंक की सुस्ती के साथ 24,219 पर पहुंच गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 3 पैसे की गिरावट के साथ 95.74 रुपए पर बंद हुआ।
1: कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए हैं। भारत की ओर से ध्रुव जुरेल ने नाबाद 115 रन की पारी खेली। भारत श्रीलंका श्रृंखला में 1-0 से आगे है। एम्स्टरडैम में खेले गए हॉकी विश्व कप के मैच में भारतीय पुरुष टीम को अर्जेंटीना से 3-5 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही भारत सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया है। अब भारत की टीम 7वें स्थान के लिए प्लेऑफ में 28 अगस्त को बेल्जियम से खेलेगी। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने 2026-27 के शैक्षणिक सत्र में आयुर्वेद पर आधारित प्रसूति देखभाल को बेहतर बनाने के लिए गर्भिणी मित्र नाम से एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया है। आयुष मंत्रालय के अनुसार 6 महीने का यह पाठ्यक्रम गर्भावस्था और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान महिलाओं को उचित स्वास्थ्य शिक्षा, जीवन शैली, मार्गदर्शन और सामुदायिक स्तर पर सहायता प्रदान करते हुए प्रशिक्षित कर्मियों को तैयार करने के लिए बनाया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति पुतिन ने उर्वरक आपूर्ति बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 25वीं भारत चीन सीमा वार्ता के लिए पेइचिंग पहुंचे। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखा प्रबंधन के लिए पर्याप्त तथा विविध अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता का आह्वान किया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। ओडिशा में लगातार बारिश से जल भराव और नदियों का जल स्तर बढ़ा। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म के गाने के साथ। हसरत जयपुरी हैं गीतकार और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

श्रोताओ, हमारी अगली पेशकश बहारें फिर भी आएंगी इस फिल्म से मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ें हैं। अजीज़ कश्मीरी ने लिखा इसे और संगीतबद्ध किया है ओपी नैयर ने।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।

0: मूर्तियाँ।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किस्से होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। लीजिए अब सुनिए आशा भोसले, मोहम्मद रफी और शमशाद बेगम की आवाजों में CID फिल्म का गाना। गीतकार हैं जान निसार अख्तर और संगीतकार हैं OP नैयर।
4: हर रोज शाम सुनिए सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम छाया गीत, जिसके प्रायोजक है विको वज्रदंती, मजेदार नहीं असरदार, भारत का गम एक्सपर्ट।

अगला गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं मुकेश की आवाज में, साथ में वैजयंती माला की आवाज भी है, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन की तर्ज। फिल्म का नाम आप जान ही गए होंगे, संगम।

और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में शागिर्द फिल्म से। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

हीला ढाला लिबास क्यों, रेशम पहनो कपास क्यों, फन ये जादूगरी का है, अरमा तुमको परी का है, तो किपला मा

तू में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा जा, जा।

लेकिन कल्याण जी और आनंद जी की जोड़ी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में ज्यादा जिक्र तो कल्याण जी का होगा, लेकिन कुल मिलाकर ये बात कल्याण जी और आनंद जी पर केंद्रित रहेगी, यानी जोड़ी कल्याण जी आनंद जी की बातें होंगी आज के इस प्रोग्राम में।

0: कल्याण जी भाई दोनों भाइयों में सबसे बड़े हैं। 1929 में उनका जन्म हुआ था, जबकि आनंद जी का जन्म कच्छ में सन 1933 में हुआ था। मजे की बात यह है कि आनंद जी तो बचपन में कच्छ गुजरात में रहे, लेकिन कल्याण जी मुंबई में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने चले आए।
1: बड़ी दूर से

आगे चलकर इनका परिवार मुंबई आ गया। दोनों भाई चाल के अपने घर में पड़ोसियों के घरों में रेडियो सुना करते थे, क्योंकि रेडियो तब एक लग्जरी हुआ करता था और सबके घरों में रेडियो नहीं होता था। जब घर में ग्रामोफोन आया तो दोनों भाई मिलकर सुरेंद्र, शांता आप्टे, कुंदनलाल सहगल और पंकज मलिक के गीतों को बड़े चाव से सुना करते थे। सन 1954 अचानक कल्याण जी वीर जी शाह शोहरत की ऊंचाई पर पहुंच गए। दरअसल शशधर मुखर्जी की फिल्म नागिन में उन्होंने संगीतकार हेमंत कुमार के निर्देशन में क्ले वॉयलिन पर बीन की आवाज निकाली थी। ये अपने आप में एक करिश्मा था, क्योंकि इससे पहले फिल्म संगीत में जब भी बीन के सुर सुनाई पड़ते थे तो वो असली बीन होते थे, लेकिन इस बार वाद्य बदल गया था और सुर कुछ तरोताजा हो गए थे।

इस गाने के वादक, जी हाँ वादक यानी म्यूजिशियन कल्याण जी को बड़ी प्रसिद्धि मिली। कल्याण जी वीरजी शाह ने बतौर अकेले संगीतकार फिल्म सट्टा बाजार में भी संगीत दिया था। अभी तक आनंद जी उनके साथ नहीं आए थे।

0: भी हमको भी तुमसे है प्यार, रुमाल हमें दे के जाना।
1: सन 1958 में निर्माता निर्देशक कीकू भाई देसाई ने दोनों भाइयों को सम्राट चंद्रगुप्त नामक फिल्म में बतौर स्वतंत्र जोड़ी पहला मौका दिया। हम आपको बता दें कि कीकू भाई मनमोहन देसाई के पिता थे।

दिलचस्प बात यह है कि मनमोहन देसाई ने सन 1960 में जब छलिया फिल्म बनाई तो भी कल्याण जी आनंद जी को मौका दिया। छलिया का संगीत बड़ा ही लोकप्रिय हुआ।

सन 1964 की बात है। मनोज कुमार फिल्म उपकार बना रहे थे। उनकी इच्छा थी कि इसका संगीत शंकर जयकिशन दें, लेकिन इस जानी मानी जोड़ी के बीच तनाव चल रहा था, इसलिए बात कुछ बनी नहीं। लेकिन जयकिशन ने कल्याण जी आनंद जी के नाम की सिफारिश मनोज कुमार से की।

उपकार वो फिल्म है जिसने कल्याण जी आनंद जी को शंकर जयकिशन के प्रभाव से मुक्त किया। यहाँ से वो संगीत आया जिसमें रिदम का अनूठा पैटर्न था।

सिने संगीत के कद्रदान केवल रिदम और अरेंजमेंट को सुनकर कल्याण जी आनंद जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी का फर्क समझ लेते हैं।

ढोल, ताशे और बांसुरी और साथ में ग्रुप वायलिन, सब कुछ कल्याण जी आनंद जी के संगीत में अनूठा और निराला है।

कस्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। ये गाना मेरे छोटे भाई आनंद जी ने कई सालों पहले इंदिओ जी का लिखा हुआ वो तैयार करके रखा हुआ था। तो मनोज जी नए नए डायरेक्टर हुए थे, उपकार पिक्चर बना रहे थे, तो उनको ये गाना बहुत पसंद आ गया। उन्होंने बोला कि कल्याण जी भाई ये गाना मेरे लिए रख लीजिए, मैं उपकार फिल्म में प्राण जी के पास गाऊंगा। तो हमने सोचा कि ये उसको उस टाइम प्राण जी फिल्मों में गाया नहीं करते थे, तो हमने सोचा कि ये बिल्कुल नए डायरेक्टर हैं और शायद हमें भी नए कर देंगे। लेकिन मनोज जी ने उपकार फिल्म में वो गाना प्राण जी से इतना अच्छा गवाया और प्राण जी ने भी इतना अच्छा गाया है कि जब अपन फिल्म देखते हैं तो लगता नहीं है कि किसी प्लेबैक सिंगर ने यह गाना गाया होगा। बिल्कुल प्राण जी ऐसी इसी तरह गा रहे हैं कि जैसे वो ही गा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली गाना मन्ना डी जी ने गाया हुआ है।

मुकेश और कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने कुछ बड़े अद्भुत नगमे दिए हैं। दरअसल शंकर जयकिशन के बाद अगर मुकेश की प्रतिभा को किसी ने पहचाना तो वो कल्याण जी आनंद जी ही थे।

तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। आपको शायद मालूम होगा कि ये गाने के लिए हम लोगों को सिने म्यूजिक डायरेक्टर का फर्स्ट टाइम अवार्ड मिला था। और मुझे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कोई भी गाना मैं जब अनाउंस करता हूँ तो सब लोग चाहते हैं कि इसके साथ कोई हंसी मजाक जरूर होनी चाहिए। तो इसमें तो सही वाकया हो गया था, वो मैं आपको सुनाता हूँ। क्योंकि मुझे एक दिन एक ये गाना रिकॉर्ड होने के बाद किसी एक लड़की का फोन आया कि भाई हमें आपका मैं तो एक ख्वाब हूँ ये गाना बहुत पसंद आया और मैं चाहूंगी कि आपके मुंह से ये गाना सुनूं। तो हमने उनको म्यूजिक हॉल पे बुला लिया, तो एक दफे सुनाया। उसके बाद फिर वो दो चार दिन के बाद आई कि मुझे हमें ये फिर गाना सुनाइए। तो तीन चार दफे उन्होंने जब हमसे सुना तो मैं उनके सामने देख रहा था। तो बाद में चौथी दफे जब मैंने ये गाना सुनाया तो मैंने ये गाना बोला कि मैं तो एक बाप हूँ, इस बाप से तो प्यार न कर, क्योंकि उसकी निगाहों से लग रहा था कि इसमें और कुछ चक्कर है।

कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत और पाश्चात्य संगीत को मिला दिया। वे प्रगतिशील संगीतकार थे। प्रगतिशील इस मायने में कि उन्होंने संगीत के बने बनाए ढर्रे को तोड़ा, लगातार नए प्रयोग किए, नई ध्वनियां अपने संगीत में पिरोई और बनाया अद्भुत संगीत। ढोल बजा

0: फिल्म समझौता।
1: समझौता गमों से कर लो जिंदगी में।
2: समझौता गमों से कर लो जिंदगी में गम भी मिलते हैं। ये गाना मेरे एक डॉक्टर दोस्त हैं, उन्होंने एक दिन मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन दिया। मैं बोला किस बात की कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं आप? बोले भाई आपका मैं गाना लेके गया था और उससे मेरा एक पेशेंट बहुत अच्छा हो गया। मतलब गाने से पेशेंट अच्छा हो गया? बोले आपके गाने के कुछ वर्ड्स ऐसे थे कि उसकी लाइफ में कुछ चेंज आ गया। तो अरे सही वाक्य है कि अगर इस गाने को करेक्ट कोई मीनिंग समझे तो जिंदगी की काफी उलझने कम हो जाती है।

आपको ये जानकर अचरज होगा कि कल्याण जी आनंद जी की इस सदाबहार और सुपरहिट जोड़ी को जीवन में केवल एक बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 1974 में ये फिल्म थी कोरा कागज।

कल्याण जी, आनंद जी की संगीत यात्रा इतनी लंबी है कि आधे घंटे के सीमित समय में हम सिर्फ ऊपर ऊपर से उनके सफर पर नजर डाल सकते हैं। कुल मिलाकर ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ये जोड़ी लगातार हिट संगीत देती रही, लगातार लोगों के दिलों पर राज करती रही।

कल्याण जी आनंद जी की ये जोड़ी टूट गई है। टूटना शायद आपको सही शब्द ना लगे, ये जोड़ी एक दूसरे से बिछड़ गई है। आज कल्याण जी नहीं है लेकिन आनंद जी हैं, और है इस जोड़ी का अनूठा संगीत।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के कल्याण जी पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

जरूरी तो नहीं? ऐ सितमगर, जरा झांक कर मेरी आंखों में देख, जुबां से हो प्यार का इजहार, ये जरूरी तो नहीं? मुझे था इश्क तेरी रूह से और अब भी है, जिस्म से हो कोई सरोकार, ये जरूरी तो नहीं?

तुम्हारी खातिर चलो ये माना, मैं सब करूंगी, तुम्हारे सारे हुक्म सुनूंगी, मगर बताओ ना तुम ये कर सकोगे? किसी हसीना को राह चलते नहीं तकोगे, कोई पुरानी पड़ोसन मिले कहीं तो नहीं रुकोगे? मेरी सांसें, मेरी नींदे, मेरे इरादे सब तुम्हारे, मगर बताओ तुम्हारे दिन रात की लगन में मैं किस कदर हिस्सेदार ठहरी? तुम्हारी सांसें, तुम्हारे जज्बे, तुम्हारी ख्वाहिश में मैं कहाँ हूँ? ये जिंदगी में जो अबतरी है, ये तुम्हारा काम सारा जो दफ्तरी है, जो महीना चाहत का फरवरी है, क्या मुझको इन सब पे बरतरी है? या सारे जज्बात, ये प्यार तुम्हारा है सब हकीकत या सरसरी है?

बारिश की बरसती बूंदों ने जब दस्तक दी दरवाजे पर, महसूस हुआ तुम आए हो। अंदाज तुम्हारे जैसा था। हवा के हल्के झोंके की जब आहट पाई खिड़की पर, महसूस हुआ तुम गुजरे हो। एहसास तुम्हारे जैसा था। मैंने गिरती बूंदों को रोकना चाहा हाथों पर, एक सर्द सा एहसास हुआ, वो एहसास तुम्हारे जैसा था। तन्हा मैं चली फिर बारिश में, तब एक झोंके ने साथ दिया, मैं समझी तुम हो साथ मेरे, वो साथ तुम्हारे जैसा था। फिर रुक गई वो बारिश भी, रही ना बाकी आहट भी, मैं समझी तुम मुझे छोड़ गए, अंदाज तुम्हारे जैसा था।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं छाया गीत। आओ हम तुमको बताएं मोहब्बत किसको कहते हैं। किसी को देखते ही धड़कनों में सुर बिखर जाएं, चमक आंखों की बढ़ जाए, किसी की याद में शामो सहर का फर्क मिट जाए, सुलगती रात कट जाए, तसव्वुर से किसी की चांदनी रातें महक उठे, किसी के बिन जब सब कुछ अधूरा हो, न सूरज में तपिश बाकी रहे न चांद पूरा हो, ठहर जाए जो उस रुखे रोशन पर, पलट ना भूल जाए दिल, किसी की दीद की खातिर जबी सजदे में झुक जाए, नजर जब आए तो बेसाख्ता कह दे जुबान,

0: किसी से मोहब्बत ना हो जाए।
1: कोई खुशबू हो, गुल हो या कोई रंगे हिना हो, तो कड़कती धूप में कोई अब्र या साया घना हो, तो किसी का साथ अपनी इब्तिदा वो इंतहा हो, तो कोई खुद दर्द हो, हम दर्द हो और खुद दवा भी हो, किसी का हाथ जब अपने लिए दस्ते शिफा भी हो, फिर ऐसे में ये सब एहसास सारी कैफियतें और सिलसिले मिलकर अनोखी शय बनाते हैं, जिसे कहते भी हैं, सुनते भी हैं और सब सुनाते हैं, मोहब्बत जिसको कहते हैं।

सुनो जाने जा, अगस्त में तुम्हारी यादें दिल को चीर जाती हैं। ठंडी हवा से ना आशना शामें, सितारों से भरी रातें के जिनमें नींद की देवी भी उकताई सी लगती है। इसी बेकैफ मंजर में अचानक नीला आसमां बादलों की चादर ओढ़ लेता है। फिर ऐसे सावन बरसता है कि मंजर झूम उठता है। वही मौसम, वही रुत ओढ़े हुए दिन की बरसती शाम में जब हम तुम फिजा की गुनगुनाहट रूह में महसूस करते थे। कभी बूंदे पकड़ते, कभी यूं मुस्कुराते थे कि जैसे कानों में बरसात ने कोई बात कह दी हो। वही मौसम, वही रुत, वही दिन रात है, फिजा भी गुनगुनाती है। न जाने तुम कहां पर हो, अब चले भी आओ, तुम्हें ये बारिश बुलाती है।

साथियों, अब वक्त आ गया है छाया गीत कार्यक्रम से रुखसत हो जाने का। आज की मुलाकात बस इतनी। अब दीजिए सलमा को इजाजत। शुक्रिया, नमस्कार।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी

0: संगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर। कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
3: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
4: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

0: ये
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
2: इकोनॉमिक कोऑपरेशन,
3: हमारा आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
2: स्ट्रॉन्ग पिक्चर ऑफ कोऑपरेशन टू प्रेजेंट।
1: राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि रूस भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र में सहायता के लिए कदम उठा रहा है। इससे पहले डॉ जयशंकर ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ भारत रूस अंतर सरकारी सह आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की समस्या के समाधान के लिए अगले दो महीनों में वर्तमान नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम बनाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने दो बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। इनमें से एक कंपनी भारत में सेमीकंडक्टर उपकरण का विनिर्माण शुरू करना चाहती है और दूसरी ऑटोमोबाइल कलपुर्जा क्षेत्र में काम करती है। भारत जापान आर्थिक संबंधों पर श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
4: We are a young country.
5: भारत एक युवा देश है। आज हमारी अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की है और 2047 तक इसके $30 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। जापान के पास बेहतरीन तकनीक और कारोबारी अनुभव है, लेकिन वहाँ पर्याप्त लोग और बड़ा बाजार नहीं है। ऐसे में भारत एक बेहतर साझेदार बन सकता है, क्योंकि हमारे पास बड़ा घरेलू बाजार

0: बाजार और बड़े स्तर पर उत्पादन की क्षमता है।
1: विद अ लार्ज डोमेस्टिक मार्केट।
2: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी पेचिंग पहुंचे। वे कल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखे से निपटने की क्षमता को मजबूत करने के लिए विविध और पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय वित्त सहायता की जरूरत पर बल दिया है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगोलिया में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र 17वें सम्मेलन COP17 के दौरान उर्वर भूमि और सूखे से निपटने की क्षमता के लिए नए वित्तीय तरीके पर मंत्री स्तरीय वार्ता में ये बात कही। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 9वां राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। दो दिन के सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में संशोधित डाक सेवा ऐप और डाक मित्र ऐप शुरू किए। इस दौरान उन्होंने 10 राज्यों के 14 डाकघरों के नवीनीकृत भवनों का भी उद्घाटन किया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। भारतीय चीनी और जैव ऊर्जा उत्पादक संघ के महानिदेशक दीपक बल्लानी ने कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि घबराहट और सट्टेबाजी में कमी के साथ ही चीनी की कीमतों में कमी आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 दिनों में चीनी की कीमतों में वृद्धि सट्टेबाजी और घबराहट के कारण हुई। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Aparajita Nair. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar called on Russian President Vladimir Putin at Kremlin today. The meeting focused on bilateral trade, economic cooperation and upcoming high-level summits. Indian Ambassador to Russia Vinay Kumar and Joint Secretary ERS Mayank Singh were also part of the delegation. During the meeting, Dr. S. Jaishankar highlighted the strong and growing India-Russia partnership, particularly in economic cooperation, trade and energy. He conveyed Prime Minister Narendra Modi's greetings and handed over Prime Minister Modi's personal message to Mr. Putin. Dr. Jaishankar described the outcome of the Intergovernmental Commission meeting as positive.
4: Our economic cooperation, trade, energy, fertilizers, nuclear, other dimensions as well. Overall, I think our economic cooperation has grown very significantly. Prime Minister Modi looks forward to meeting you at the SCO summit, then welcoming you in India for the BRICS summit, and in due course, as per your mutual convenience, having the annual summit. So we have a very strong picture of cooperation to present.
3: The External Affairs Minister conveyed to Mr. Putin that Prime Minister Modi looks forward to meeting him at the SCO summit and to welcoming him to India for the BRICS summit. Speaking during a meeting, Russian President Putin offered to increase fertilizer supplies to India, saying Moscow is taking steps to support Indian farmers and the country's agricultural sector. He also highlighted the growth in trade between Russia and India this year. National Security Advisor Ajit Doval arrived in Beijing on a two-day visit to China. He will take part in the 25th round of special representative talks between the two countries on the boundary issue with his Chinese counterpart and Foreign Minister Wang Yi scheduled tomorrow. Announcing the special representative talks at a media briefing today, Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jia said Mr. Doval and Mr. Wang will have an in-depth discussion on the boundary issue as well as other bilateral, regional and international relations. इंडिया